0: केड़ा नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच वॉक शो में। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग्स, अमेजिंग बातें और अमेजिंग गपशप होने वाली यहाँ पे। तो यस, आप कहीं मत जाइएगा, आप अभी से लेके 3 बजे तक मेरे साथ मेरे साथी बन के रहिए और यहाँ पे मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताने वाला हूँ। सो यस, स्टार्ट करेंगे हम होम सिक रेमेडीज में, जहाँ पे आप मुझे मैसेजेस भेजेंगे। ट्राई टू सेंड एज मैनी एज पॉसिबल 5599 पे आप भेज सकते हैं। उसके बाद आप ऑफिस शाउट आउट के लिए भी मुझे गाने मैसेजेस भेज सकते हैं। इफ़ एनी सॉन्ग यू वांट टू डेडिकेट समवन आप मुझे भेज दीजिए एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हैव, अगर वो गाना है हमारे पास अवेलेबल तो डेफिनेटली वी विल गोइंग टू प्ले दैट। बट यस, उसके साथ ही कुछ फटाफट से खबरें भी लेके आऊँगा चटनी शॉर्ट्स में और उसके साथ और भी बातें होती रहेगी। बट यस, आज के लिए बस बने रहिए। वैसे यस, वी आर इन द मिडवे, यानी कि वेडनेसडे के दिन हम यहाँ पे हैं। दैट मीन्स वी आर बैक टू नॉर्मल सिचुएशन, कि जब वीकेंड खत्म करके यू कम बैक टू वर्क एंड देन यू नो फील लाइक, बट अगेन बस कल और परसों और काम आना है एंड देन फिर से वीकेंड है। सो एनी प्लान फॉर दिस वीकेंड आप बताइए मुझे 5599 पे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज। एक सवाल भी किया था मैंने कल, जिसका सवाल जो है मैं आज फिर से दोहराने वाला हूँ जो सवाल, तो आप बस मुझे उसका भी जवाब दे सकते हैं 5599 पे। बट अभी के लिए बने रहिए, एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना जिसका नाम है विसल बजा, विसल बजा।
1: बजाओ क्या

0: What a song, what a song. फिर मिलेंगे चलते चलते सोनू निगम की आवाज में. आपने गाना सुना, मेरे को वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग लगता है इनका, और गाते वक्त भी बहुत मजा आता है बिकॉज गाने पुराने हैं, एक से बढ़कर एक गाने दमदार, और जिस लहजे से इन्होंने गाया है नो डाउट यार बहुत ही चार चांद लगा इन गाने का जो मैशअप. एक्चुअली मैं कहूँगा तो मूवी के अंदर पहला मैशअप था ये, किसी मूवी के अंदर कोई भी गानों का मैशअप जो है वो पहला था. दैट्स वॉट आई वुड से. और काफ़ी पुराना भी हो चुका है वैसे गाना, मैं शायद कॉलेज में हुआ करता तब का ये गाना है. पर यस, होम सिक रेमेडीज के लिए मैसेज पढ़ लेते हैं. संदीप भाई कहते हैं, आई मिस गोइंग टू द एयरपोर्ट टू पिकअप रिलेटिव्स, द एक्साइटमेंट स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर दे इवन अराइव. ये यहाँ पे भी तो होता है. ओके, हो सकता है आपका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा दूसरा हो कहने का, बट द सेम थिंग हैपन हियर एज वेल. मीना कहती है, माई होम स्टिक रेमेडी इज मेकिंग अ फैमिली रेसिपी विदाउट लुकिंग एट एनी मेजरमेंट्स. दैट्स हाउ माई मम ऑलवेज कुक्ड. क्या बात है, वेरी नाइस. अर्जुन कहते हैं, आई मिस दोज फैमिली फोन कॉल्स ओवर वे वन पर्सन से गुड बाय बट द कन्वर्सेशन सम हाउ कंटिन्यूज फॉर अनदर 20 मिनट्स. दैट इज सो ट्रू. उसके बाद अखिल का भी मैसेज आया है टिमरू से. वो कहते हैं, प्लीज प्ले ए दिल नादान तू, वो वाला राइट. फॉर श्योर अगर हमारी लिस्ट में है, लाइब्रेरी में है तो आपके लिए डेफिनेटली हम चलाएंगे ऑफिस शार्ट आउट के बाद. जी हाँ, सो यस, आप बस ट्यून इन रहिए और सुनते रहिए. बट यस, उन्होंने ये भी कहा है कि कोल्ड के लिए बेसन वाला दूध एट नाइट ही मिस अलॉट. ये चीज़ तो है, बहुत ही ज़्यादा हमें लाइक हमेशा दिया जाता है बाय मॉम या फिर डैड बैक इन इंडिया. आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं शोभना का. वो कहती है, इन फीजी एवरी नेबर्स फेल्ट लाइक एक्सटेंडेड फैमिली. आई मिस बीइंग एबल टू वॉक नेक्स्ट डोर फॉर अ चैट एंड अ कप ऑफ टी एनी टाइम. सो नाइस ऑफ यू. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस. आप बस बने रहिए ऑफिस शाउट आउट में, एक से बढ़कर एक मैसेज भेजिए एंड देन वी विल रीड आउट ओवर देयर एज वेल. ऑफिस शाउट आउट बोले तो ऐसे मैसेजेस जो आप अभी हाल फिलहाल क्या खा रहे हैं, कहाँ से ऑर्डर किया है, एंड येस ऑफकोर्स आप किन के साथ खा रहे हैं, नॉट गा रहे हैं, किन के साथ खा रहे हैं. एंड इफ यू वांट टू डेडिकेट एनी सॉन्ग टू एनी कलीग, वैसे मेरे पास एक डेडिकेशन तो आ चुका है जिसे मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे प्ले करने की. बट येस, एंजॉय करिए एंड डू सेंड मी ऑफिस शाउट आउट के लिए मैसेजेस ऑन 5599. लंच बॉक्स विद केतन.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या हम.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.

0: Air Plus. Get game ready at No Leeming.
1: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
2: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
3: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
4: Lunchbox with Ketan.
5: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
4: Office shout out.
6: ऑफिस शारोर के सेगमेंट में स्वागत करते हैं। हम इट इज 104.2 एफएम के जरिए आप मुझे सुनते हैं। 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे हूँ। पहला मैसेज पढ़ते हैं दीपक का। वो कहते हैं लंच ब्रेक जस्ट स्टार्टेड एंड आई एम स्टिल डिसाइडिंग वेदर टू ईट माय होममेड लंच और सेव इट एंड बाय अ पाई इंस्टेड। अरे भाई घर का खाना खाओ भाई, वो ज्यादा हेल्दी भी है प्लस सेव पैसा सेव करो, नॉट लंच सेव करो। माय डॉटर मेड माय लंच बॉक्स टुडे एंड पैक 3 चॉकलेट्स विद अ नोट सेइंग फॉर इमरजेंसी आई हैव ऑलरेडी ईटन ऑल 3। ये सही था, कविता कहती है ये। नेक्स्ट इज राजन, वो कहते हैं बुला केतन, एवरीवन ऑन आवर वर्क साइट इज ईटिंग क्वाइटली टुडे बिकॉज वी आर ऑल टू बिजी enjoying the homemade curry one of the boys brought for the team. Very nice, yeah, very nice. But thank you so much. थोड़े कम messages मिले हैं, but again, thank you so much. एक और message आया है. Working out at gym during lunch break and will have homemade dal chawal afterwards. Wow, that's cool, यार. मतलब full on. अभी physical health पे ध्यान दे रहे हो, फिर बाद में internal health पे भी ध्यान दोगे. Very nice of you, very nice of you. आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है, but कोई बात नहीं. Thank you so much. वैसे yes, इस office shout out में जैसे कि मैंने कहा था कि गाना मैं dedicate करूँगा, तो yes, there's one more song, not now, but yes, the third song will be playing for अखिल भाई जिन्होंने टिमरू से मैसेज भेजा है. सो यस, दिल नादान उनके लिए हमारी तरफ से. बट बिफोर दैट एन्जॉय दिस चुनरी चुनरी एंड देन तुझ संग लागी के एमएम करीम की आवाज में.
3: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

Well, चलिए बात करते हैं आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की। वायराओ इंसिडेंट 1843 आज के दिन हुआ था, जब न्यूजीलैंड का पहला बड़ा वायलेंट क्लैश था माओरी और यूरोपियन के बीच ट्रीटी ऑफ वाइटांगी साइन होने के बाद। ये फाइट वायराओ वैली के लैंड को लेकर हुआ था, जब न्यूजीलैंड कंपनी बोल रही थी कि उन्होंने जमीन खरीदी है, लेकिन नाती तोआ ट्राइब के लीडर्स स्पेशली टे राव पारा और टे रांगी हायाता इस बात से एग्री नहीं करते थे। जब यूरोपियन सर्वे करने आए तब माओरी ने उनको रोक दिया और हट्स डिस्ट्रॉय भी कर दी। इसके बाद ब्रिटिश सेटलर्स ने माओरी चीफ्स को अरेस्ट करने की कोशिश की। दोनों ग्रुप्स के बीच ताओ मरीना में कन्फ्रंटेशन हुई और फायरिंग भी स्टार्ट हुई, और इस फाइट में 22 यूरोपियंस और 4 माओरी मारे गए। बाद में गवर्नर रॉबर्ट फिट्ज़रॉय ने कहा कि यूरोपियंस ने सिचुएशन को प्रोवोक किया था और वायरो इंसिडेंट्स ने माओरी और ब्रिटिश सेटलर्स के रिलेशन को लेकर और ज़्यादा टेंस बना दिया और फ्यूचर में न्यूजीलैंड वॉर्स के वार्निंग को भी साइन बना दिया था।

0: चेतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम।
3: Keep calm because Punjabi swag is on.
4: Hey, hey, मोमबत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते अख रखिए तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दिल मंगिए तेरे।

0: of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: वेलकम बैक, आपका स्वागत करते हैं आज के इस सेगमेंट में. वेल, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है. बट यस, एक सवाल मैंने आपको कल किया था मैंने, जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ. इस आर में आपसे पूछूंगा कि वंस यू रीच होम, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू. आप इसका जवाब मुझे 5599 पे बताइए. और जैसे कि मैंने कहा था कि यू नो, वंस आई गो होम, देन सबसे पहला जो मेरी एक्साइटमेंट होती है वो ये होती है, फटाफट से हाथ वाथ धो लूँ, एकदम सैनिटाइज हो जाऊँ प्रॉपर तरीके से, उसके बाद मैं इहान के साथ खेलना शुरू करता हूँ. या वो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट होता है. एंड देन ऑफकोर्स थोड़ा टाइम निकालता हूँ खुशबू के साथ बिफोर आई गेट बैक टू वर्क. ये मेरा होता है आफ्टर दिस रेडियो. आप मुझे बताइए 5599 पे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करना पसंद करते हैं वंस. एज एन इट कैन बी एनी थिंग यार. अगर आप थोड़ा लेजी फील करते हो, जैसे कुछ लोग करते हैं कि लाइक, मैं भी उनमें से हूँ कि मैं जैसे घर जाता हूँ तो एकदम से रिलैक्स हो जाता हूँ, लेट जाता हूँ एकदम फट से, फिर मोबाइल निकाल के जो जितने भी स्टोरीज नोटिफिकेशन आते हैं पूरे दिन भर वो मैं एक्सप्लोर करता हूँ. सो यस, आप भी मुझे बताइए कि 5599 पे कि वॉट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू एज सून एज यू रीच एट होम. एक लेटेस्ट खबर भी है कि कोरोमंडल पेनिनसुला के एक हस्बैंड वाइफ कपल ने जून 2026 में $4.5 million जो है वो लॉटो जैकपॉट जीत लिया है. हस्बैंड ने थीम्स के पेपर पावर स्टोर से टिकट खरीदा क्योंकि उसने वहां पहले की विनिंग ट्रॉफीज देखी थी. जब उन्होंने टिकट चेक किया, स्टोर वर्कर्स भी शॉक्ड हो गए कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे मिला है. वेल, प्राइस में 4 मिलियन पावर बॉल और 500,000 लॉटो फर्स्ट डिवीजन का था, यानी कि 4.5 मिलियन टोटल हो गया. और कपल ने यह भी बताया कि उनकी लाइफ अब कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और हस्बैंड अब रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं. क्या बात है. दोनों ने कहा है कि विन के बाद उन्हें रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अब मल्टी मिलियनर हो गए. क्या बात है यार, क्या बात है. That's very nice of them. But yes, आपका अभी हाल फिलहाल ये काम है, जल्दी से मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे रिगार्डिंग व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू एज सून एज यू रीच एट होम. जी हाँ, जल्दी से फ़ोन उठाइए और मुझे भेज दीजिए. तो और भी बातें होगी नेक्स्ट आवर में, जैसे कि लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी आप मुझे सेगमेंट के लिए भी मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं. और यू नो, कुछ और लेटेस्ट बातें भी आई हैं. फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसके ऊपर भी बात होगी. तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यू स्टिक विद हम 3 बजे तक. एंड उसके बाद आपको सैंडी भी जुड़ेगी इन द कॉफ़ी ब्रेक. तो उसके बाद ड्राइव शो में रुजबे भी होंगे.

0: क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बुला आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। कैसे हैं आप सभी, आपका दिन कैसा जा रहा है आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। दिन तो खैर अभी शुरू हुआ है, ज्यादा दूर हुई नहीं है, बट मॉर्निंग कैसा रहा आपका 5599 पे आप मुझे बता सकते हैं। बट यस, अभी आप बने रहिए बिकॉज इस आर में आपको लंच टाइम रेंट लाइन से लेके बॉलीवुड की खबरें, प्लस हमारे देश में क्या हो रहा है, प्लस बाहर क्या हो रहा है, और कौन कौन से कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाले, कौन कौन से सितारे हमारे शहर में आ रहे हैं, ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो आप कहीं मत जाइए, एंजॉय करिए। सबसे पहले मैं तेरा, सलमान खान की, सलमान खान ने खुद ने गाया है गाने, क्या बात है, एंजॉय करो। और मिलते हैं उदित नारायण के एक और गाने के बाद।
1: बचाओ क्या,

0: काका बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

इठलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है, वो मृगनैनी है, वो रूपवती है।

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग लंच बॉक्स। वेल, आप बने रहिए बिकॉज जल्दी से फोन उठा के मुझे भेज दीजिए लंच टाइम रेंट लाइन के लिए, यानी कि आप ऐसी चीजें मुझे भेजिए जिससे काफी आप इरिटेट होते हो। दैट मींस यू नो समथिंग, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले काफी लोगों ने रिप्लाई किया था, मैसेज किया था रिगार्डिंग इंडिकेशन, रोड पे इंडिकेशन सही नहीं देते हैं, या फिर ऑफिस में यू नो लास्ट मिनट पे मिनट कॉल मीटिंग आ जाती है जस्ट राइट बिफोर द लंच टाइम। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि फिश माइक्रोवेव में हो रही है ऑफिस में हीट अप और उससे स्मेल जो है हर जगह हो गई है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आप मुझे 5599 पे भेज सकते हैं और बताइए मुझे कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच यू फील सो इरिटेटेड अबाउट बट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो यस, फोन उठाइए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि हम थोड़ी देर में उसे भी सुने, आपके मैसेज रीड आउट करूंगा यहाँ पे। आप अपने नाम के साथ मुझे मैसेज भेजना।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम। लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.in से।
6: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: गेम रेडी एट नोली मिंग।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.govt.nz/floods।
5: मुझे पसंद है लड़का।
6: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
7: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे बातों पे जो आपने भेजे मुझे, जहाँ पे आप इरिटेट फील होते हैं, बट ऑफ कोर्स यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो यस, हियर आर फ्यू मैसेजेस। हरप्रीत भाई का सबसे पहला मैसेज है, वो कहते हैं, किरण भाई, why do Indian dad ask for directions and then completely ignore them? है? समझा नहीं मैं। थोड़ा विस्तार से बताइए हरप्रीत भाई, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ कि इंडियन डैड्स जो हैं वो डायरेक्शन पूछते हैं लेकिन फिर इग्नोर करते हैं, क्या क्या मतलब है? लाइक डू लेट मी नो, बताना आप एक बार। रोशनी कहती हैं, हे केतन, एवरी ऑफिस हैज दैट वन पर्सन हु सेज स्मॉल क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट अ 20-मिनट कन्वर्सेशन। या आई जस्ट नीड 2 मिनट्स, हाँ, दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन, बट देन वन क्वेश्चन डजंट एंड देयर। That is so true. Bula Ketan Naresh from Mangere. Fiji Indian families don't serve dinner. They launch a food festival. Oh, kya baat hai. Ye to sahi hai. Do invite me as well, yaar. I want to be a part of one of your food festival. Ketan bhai, this is Aarti from Papakura. Why do parents call us from another room when they are holding the phone in their hand? Hey?
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: आज तो ऐसे ही सीन हो गया। Why do parents call us from another room when they are holding the phone in their hand? भाई हाथ में फोन है but you are there, तो it's better to अब समझा मैं। ओके पता नहीं मैं समझा नहीं समझा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट यहाँ पे कोई है जो समझ गया हो ये आखिरी मैसेज क्या है? I'm so sorry आरती, but yes, अभी फोन आ रहा है, फोन पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। Let's pick up the call. Hello. Hello.
9: Hello.
10: Hello.
7: Hello. Hi, hello. Shelvin.
10: Hello. Hi.
7: How are you?
10: Good.
7: Nice. Do you have something to say over here?
10: So what's the question about? What are you talking about?
7: Sorry?
10: What's the question?
7: Oh, what is the question you asked, right? No, do you have anything for lunchtime rent line?
10: Second?
7: Do you have anything for lunchtime rent line? Like, did you notice anything which you feel so irritated about, but you may or may not be able to do anything?
10: Cooking.
7: Oh, you don't like cooking, is it?
10: Yeah.
7: You don't like or you like cooking?
10: I don't like cooking.
7: No worries.
10: Cooking.
7: So, do you like anyone's cooking? Like someone cook in your house which you love the most?
10: My mom cook.
7: Oh, nice. Nice. And what is your favorite food?
10: Curry.
7: Curry? What curry?
10: Yeah. Chicken curry.
7: Oh, nice. One of my favorite as well. But thank you so much, Shelvin, aapke call ke liye. You have a wonderful and lovely day.
10: Can you play music?
7: music. Yes, right after that we'll play the music. Do you have any special request?
10: Yes.
7: Mm-hmm. Which one is that?
10: S-A-I-Y-A-R-A.
7: Sorry, say it again, please.
10: Can you play Bollywood song?
7: Bulia.
10: Bollywood song.
7: Bull song.
10: No, Bollywood.
7: How do you spell that?
10: You want me to send it to you?
7: Yeah, you can text me on the 5599 and then I'll try to find out in our library, right?
10: Okay.
7: Perfect. Thank you, Selvin. I'll wait for your message. Thank you. You have a lovely day.
6: Lunch ke munch pe. Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Non-stop Bollywood.
1: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: वेलकम बैक. अभी के लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं. न्यूजीलैंड के ACC रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग आधे से ज़्यादा इंजरी क्लेम्स घर पर होने वाले एक्सीडेंट से रिलेटेड हैं. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हर साल अराउंड 1.4 मिलियन इंजरीज होम्स और कम्युनिटीज़ में होती हैं. सबसे कॉमन एक्सीडेंट स्लिप्स, ट्रिप्स, फॉल्स और हैवी चीज़ें उठाते वक्त तो स्ट्रेन होती है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं. वैसे ACC का कहना है कि अगर एक्चुअली रोड या वर्क

प्लेस से भी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि लोग डेली एक्टिविटीज में सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं। और एक्सपर्ट्स ने ये भी एडवाइस किया है कि सिंपल प्रिकॉशंस जैसे फ्लोर्स ड्राई रखना, प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स यूज करना और हैजर्ड रिमूव करना इंजरीज को काफी कम कर सकता है। सो यस, जो भी काम आप कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोटोकॉल्स। आई नो दैट इट माइट नॉट बी वेरी ऑब्वियस टू फॉलो द सेम थिंग अगेन एंड अगेन हर दिन, क्योंकि ऑब्वियसली जब हर चीज एक चीज बार बार रिपीट होती है तो यू फील लाइक उसमें थोड़ा लूप होल ढूंढना शुरू हो जाता है। बट यस, ये आप ही की हेल्थ के लिए अगर थोड़ा सा और ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा। और साथ में आप जैसे कुछ तीखे जो चीज़ें होती है, टेबल्स हो गई, ये सब वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बट इनफैक्ट बड़ों के लिए भी होता है। मुझे लगता है हम ईहान को छोड़ो, यू नो, खुशबू को ज़्यादा हिट कर जाता चलते चलते। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट रियली नीड टू सी कि इसको कैसे अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट इट्स अ ग्रेट आर्टिकल और ग्रेट पॉइंट आउट एज वेल। 1.4 मिलियन इंजरीज घर में हो रही है मैक्सिमम।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। हम और भी बातें करेंगे, आप बस बने रहिए, बिकॉज यहाँ पे बॉलीवुड की खबर भी हमको आपके लिए लेके आनी है, जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, और साथ में एक डेडिकेशन भी आई है शेल्विन भाई से। सो यस शेल्विन भाई, इफ़ यू आर लिसनिंग टू द रेडियो, आपका गाना मुझे मिल गया है अपनी लाइब्रेरी से, तो बहुत ही जल्द वो गाना भी मैं चलाने वाला हूँ। सो बस आप स्टे ट्यून रहे हैं और सुनते रहिए हम रेडियो को आज के इस लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है एंड हियर इज द नेक्स्ट वन।
1: Lunchbox with Ketan.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
5: कौन है?
6: Hunua और Waitakere।
5: अच्छा Hunua west में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: TradeDepot.co.nz. Get $299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, $299. Washing machines, $299. Dishwashers, $299. Ovens, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
3: TradeDepot.co.nz.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code Big Switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
12: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner, free chicken dinner. Yeah! Foursquare, what'll it be today? T's and C's apply.
3: Lunchbox with Ketan.
13: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे?
3: Lunch के मंच पे।
0: Welcome back. चलिए बात करते हैं अभी बॉलीवुड पे। बॉलीवुड से नज़र खबर लेके आया हूँ। आपको याद होगा 2001 के टाइम पे दो ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज़ हुई थी जो सचमुच बॉलीवुड में तहलका लेके आई थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लगान और गदर एक प्रेम कथा। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हिट रहे, लेकिन एक सवाल सभी का था कि दोनों में से ज़्यादा कलेक्शन किसने अच्छा किया, लाइक किसका बेहतर कलेक्शन था। दोनों एक से बढ़कर एक फिल्में थी, लेकिन क्या रीज़न हो सकता है। बट यस, गदर जो है एक प्रेम कथा, उसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगान से डबल से भी ज़्यादा कलेक्शन जनरेट किया था। और ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि गदर का एक स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्ट, देशभक्ति थीम और सनी देओल के मास अपील उनका ह्यूज सक्सेस का मेन रीज़न बना। स्पेशली नॉर्थ इंडिया और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया। वाओ। वैसे दूसरी तरफ लगान की अगर बात करें तो क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी और अर्बन ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आई। क्रिकेट और पीरियड ड्रामा का यूनिक कॉन्सेप्ट होने के बावजूद उसका रन टाइम काफ़ी लंबा था, जिस वजह से मास ऑडियंस थोड़ा लिमिटेड रही। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि गदर का म्यूजिक, पावरफुल डायलॉग्स और पार्टीशंस बैकड्रॉप उस टाइम के ऑडियंस के इमोशंस से काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट की, क्योंकि ऑफकोर्स 2001 वॉज नॉट दैट मच ऑफ गैप जब आज़ादी मिली थी या फिर जो पार्टीशन हुआ था। आज भी दोनों फिल्म आइकॉनिक मानी जाती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स में गदर क्लियरली ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी। एनी गेसेस, तब के टाइम पे कितना कमाई थी गदर ने? मुझे 5599 पे आप मुझे बता सकते हैं।

0: क्या हाल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं फिर से आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, एक लाइव मैच भी चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो, अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया। उसके लिए आप बस हमें फॉलो करते रहें यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हम अपडेट देते रहेंगे। अभी वैसे अर्जेंटीना 1-0 से आगे है एंड लेट्स सी यार क्या अपडेट रहता है थोड़ी देर में, आप कहीं मत जाइए। उसके साथ ही और भी मैचेस की बात करेंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है वुमेन्स T20 का, वो भी उस पर भी थोड़ी नजर डालेंगे एंड साथ में और भी चटपटी खबरें आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए। शुरुआत करते हैं DJ सुनील चौहान और अमित त्रिवेदी की आवाज़ में, ये गाना एंजॉय करिए।
1: बचाओ क्या

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने.

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलो ये फोकस करते हैं अभी की हाल फिलहाल लेटेस्ट खबर का। वेल, BNZ जो बैंक है उसमें उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने लगभग 10 साल तक अपने नॉन प्रॉफिट अकाउंट कस्टमर्स को सही इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिए और इस वजह से 23,000 से ज्यादा कस्टमर्स को टोटल $5.39 मिलियन कम इंटरेस्ट मिला है। फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी FMA के अकॉर्डिंग जो बैंक है उसने करीबन 2014 में बोला था कि इंटरेस्ट डेली कैलकुलेट होगा, लेकिन एक्चुअल बैंक लोएस्ट मंथली बैलेंस के बेसिस पर कैलकुलेशन कर रही है और ये प्रॉब्लम 2023 में एक कस्टमर क्वेरी के बाद भी सामने आया था। वैसे इस बैंक ने अफेक्टेड कस्टमर को अराउंड 5.44 मिलियन वापस दे दिए और एक्स्ट्रा 2.6 मिलियन क्राउन को पे करना एग्री किया और उस बैंक के CEO डैन हगिंस ने कस्टमर्स से माफ़ी भी मांगी है और कहा कि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक जो है दोबारा ना हो, इसके लिए सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि ये सारी चीज़ें हो रही है एंड ऑफकोर्स उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, विच इज़ गुड, बट लेट्स सी अभी आने वाले 5 सालों में क्या होना है, बिकॉज ऑफ कोर्स फ्यूचर ऑल्सो मैटर्स कि कितना इंटरेस्ट में इजाफा होने वाला है, कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी टाइम में अपडेट लेते रहेंगे एंड देन ऑफ कोर्स वी विल बी प्रोवाइडिंग टू आवर लिसनर्स एज वेल।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: हाँ।

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip your replay.
3: वेलकम बैक. चलिए फोकस करते हैं अब पॉडकास्ट के. यहाँ पे आपने होपफुली रोवा ऐप डाउनलोड कर लिया हो. अगर नहीं किया हो तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यार. हम इतने महीनों से या फिर कहें तो इतने सालों से प्रमोशन कर रहे हैं. हर बार आपको बताते हैं दैट आप डाउनलोड कर लीजिए. और अगर आपके जहन में ये होता है कि यार रोवा डेटा बहुत खाता है, आपको हमने बताया भी था, क्लेरिफाई भी किया था कि हमारी IT टीम ने एक्चुअली ये चीज़ फिगर आउट की है दैट आप एक स्टोरी डालते हैं 20 सेकंड की, जितना डेटा उसमें यूज होता है इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ लिसनिंग टू अस थ्रू रोवा ऐप. यानी कि ऑलमोस्ट बहुत ही मिनिमलिस्टिक आपका डेटा यूज होता है अगर आप एक घंटा भी सुनते हैं हमें रोवा के थ्रू. बट यस, सिर्फ सुनना ही नहीं, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम प्लेलिस्ट हम रेडी करते हैं वहाँ पे, साथ में आपके लिए पॉडकास्ट भी रेडी करते हैं. लेटेस्ट पॉडकास्ट में निवेदिता विज ये आई थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से थैलेसीमिया के बारे में बताया था और ये साउथ एशियन कम्युनिटी को क्यों होता है सबसे ज़्यादा, तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी दिल खोल के अच्छे से बात की और काफ़ी सीखने को भी मिला है. अभी हाल फिलहाल तो ऑडियो रेडी हो चुका है उसका, तो आप डेफिनेटली उसे सुन सकते हैं. 5599 पे हमें ड्राइव लिखिए और भेज दीजिए ताकि आपको ये लिंक डायरेक्टली मिल जाए. और वाइल ड्राइविंग और वाइल इवन वर्किंग एनीथिंग जहां पे डिस्टर्बेंस ना हो तो यू कैन लिसन टू द ऑडियो एज वेल. एंड साथ में अगर आपको ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा के भी कुछ बिट्स एंड कन्वर्सेशन सुनने हैं जो हम प्रमोशन में भी डालते हैं, तो उसे भी सुनने के लिए आप हमें BF लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए. बट यस, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक कंपटीशन अभी होने वाला है, एक्चुअली शुरू हो चुका है, FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप, जो कि 15 जून से लेके 21 जून तक चलने वाला है. दो दिन हो चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग जा रहा है. सो यस, इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू विटनेस योर होम टीम टू डिफेंड इन डिफेंडिंग देयर टाइटल इन होम सॉइल. जी हाँ, 8 कंट्रीज हैं, वर्ल्ड क्लास हॉकी और एक इंटरनेशनल सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप देखिए जो न्यूजीलैंड में काफ़ी सालों बाद आ रहा है. सो यस, अगर आप डबल पास जीतना चाहते हैं इस शो के लिए, इस मैच के लिए या फिर इस टूर्नामेंट के लिए, तो आप हमें हॉकी लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाए. बट यस, मेक श्योर दैट आप टिकट भी खरीद लीजिए. hockeynz.flicket.co.nz पे जाके आप ये चीज़ एंजॉय कर सकते हैं. बट यस, लेट्स गो बैक टू द लेट्स चेक आउट क्या अभी मैचेस का क्या अपडेट है. काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है. 13 जून आज है 17. वेल आई थिंक अर्जेंटीना स्टिल लीडिंग. 56 मिनट हो चुके हैं. अल्जीरिया के अगेंस्ट है फर्स्ट जो ग्रुप जी का ये मैच है, कैंसस सिटी स्टेडियम में हो रहा है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है. लेट्स सी, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा आज का मैच. और एक्चुअली ये गोल जो है यू नो वन ऑफ द लेजेंड ने ही किया है, मेसी. जी हाँ, मेसी ने किया है ये गोल. सो लेट्स सी कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं. 5599 पे आप मुझे भेजिए नंबर.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

ऑन 3rd of July एक बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग विद लाफ्टर एंड अमेजिंग कॉमेडी. जी हाँ, आप जाइए विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर 7:30 बजे के बाद 3rd July को. premierticket.co.nz पे आप टिकट ले सकते हैं. एक अमेजिंग अमेजिंग सा कॉमेडी शो है ये. गुज्जू भाई फाइंड्स हिमसेल्फ जहाँ पे एक अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में फंस जाते हैं और कैसे वहाँ से हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी क्रिएट होते हैं. तो ये सारी चीज़ें सुनने के लिए आपको, मुझे तो सुनना ही है यहाँ पे, लेकिन ये शो को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे आप एक्चुअल देखेंगे. याद रखिए premierticket.co.nz पे जाइए और वहाँ पे टिकट ले लीजिए. और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, दैट सिद्धार्थ रंडेरिया का काफ़ी रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है, दैट वो जब भी शो करते हैं वो हाउसफुल ही जाता है. तो यस, इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला. सो मेक श्योर आप टाइम से जाएं एंड ऑफ कोर्स यू नो कुछ हो और चीज़ें हो उससे पहले आप ये खरीद लीजिए. साथ में यस एक अमेजिंग सा अमेजिंग आर्टिस्ट, लेजेंडरी आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे जिनके बारे में थोड़ी देर में बात होगी. कौन है? एनी गेसेस? पी पॉप कल्चर वर्ल्ड के लेजेंड आ रहे हैं यहाँ पे. मैं थोड़ी देर में उनके लिए भी उनकी बात करूँगा. वैसे बस ये गाना मैं ढूंढ लेता हूँ कि उनकी जो जब उनकी बातें करूँगा तो किस तरह का गाना चलना चाहिए बैकग्राउंड में. तब तक ये एंजॉय करिए.

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, चलिए और भी चीजों की बात करते हैं, जैसे कि एक great comedy night show होने जा रहा है यहाँ पे Auckland. आप ready हो जाइए, because of course you have seen a couple of them on a bigger stage. In fact, इनमें से actually दोनों को आपने बड़े पर्दे पे भी देखा है. Like yeah, they have been part of many films as well in the Bollywood. But yes, मैं बात कर रहा हूँ Trivision Events की, जिसमें of course कृष्णा, अभिषेक और राजीव ठाकुर आ रहे हैं यहाँ पे live perform करने for the very first time. The Great Comedy Night, Krishna, Abhishek and Rajiv Thakur live होने जा रहा है on 18th July, Victory Convention Center. आप टिकट अभी ले लीजिए bookmyevent.co.nz से जाके. Just to give you a quick update, आप अगर miss out कर चुके हैं तो VIP seats हो चुकी है sold out completely. So if you're planning, आप एक बार call कर लीजिए. अगर आपका luck चल जाता तो never know, but yes, it has been completely sold out. 021-043-2720 पे आप call करके पता कर सकते हैं. But yes, अभी भी बाकी की जो seats हैं उसे भी ले लीजिए, because इतना तेजी से fill out हो रहा है because of this huge name from industry, Bollywood industry. तो definitely आप जल्दी से टिकट इसके खरीद लीजिए. एंड ऑफ कोर्स एक और थिएटर भी हो रहा है यहाँ पे, बलून डॉग, जो कि रिटर्न बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लेविस. जस्टिन लेविस ने ही इसे डायरेक्ट भी किया है और वो इंस्पायर्ड हैं एक बी लव्ड स्टोरी काबुली वाला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के नॉवल से ली गई है. 21st सेंचुरी में कैसे एक छोटी सी बच्ची की दोस्ती होती है एक लोनली माइग्रेंट से, और कैसे आगे अनएक्सेप्टेबल या फिर अनकंफर्टेबल वाले ट्रूथ सामने आते हैं. तो सारी बहुत ही अच्छी तरीके से इसे डायरेक्ट किया है, इसे स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया किया है. आप इसे देखिए जाके क्यू थिएटर इन ऑकलैंड. कुछ ही दिन बाकी, यानी कि आपके पास सिर्फ 4 दिन ही है. लास्ट शो होने जा रहा है ऑन 20th of June. सो बिफोर दैट आप मौका ढूंढिए और जल्दी से पहुंच जाइए. टिकट के लिए iticket.co.nz पे जाइए, जहां पे आप टिकट खरीद के पहुंच सकते हैं क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में. जी हाँ,
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का.
1: हम
3: driving you home.
4: The drive show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
7: वो भी आई लव यू वाला.
6: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
7: अच्छा आप दिलजीत हो?
6: आए आए बताओगे यार.
4: Drive show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
8: TradeDepot.co.nz. Get $299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers $299. Washing machines $299. Dishwashers $299. Ovens $299. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
1: TradeDepot.co.nz.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: Nissan Big Deals सिर्फ 22nd June तक. Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत plus accessories भी. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8 backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
12: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
13: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके

तौबा तौबा। Well, yes, ये गाना चला है तो you all know that yes, ये शो होने जा रहा है यहाँ पे, यानी करण औजला आने वाले हैं यहाँ पे परफॉर्म करने इन ऑकलैंड। Well, yes, पंजाबी म्यूजिक सुपरस्टार करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर ऑकलैंड आ रहे हैं और ये कॉन्सर्ट काफी मैसिव होने वाला है। शो जो है वो 25 अगस्त को स्पार्क एरिना में होने वाला है। फैंस उनके बिगेस्ट चार्ट टॉपिंग हिट्स और पॉपुलर एंथम के लिए एंजॉय करेंगे लाइव। और स्पेशल गेस्ट के तौर पर प्रोड्यूसर और हिट मेकर इक्के भी परफॉर्म करेंगे, जिससे कॉन्सर्ट और भी एक्साइटिंग बन जाएगा। वेल यस, मेरा सवाल यहाँ पे पता है क्या है? ये सवाल का अगर आपने जवाब दिया तो आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं और ड्रॉ के जरिए आप जीत सकते हैं डबल पास। विनर का ड्रॉ होगा 22 जून को। जी हाँ, तो फेसबुक पर भी एक और चांस है। करण औजला की जो हमने पोस्ट डाली हमारे फेसबुक पेज पे, वहाँ पे जाइए और अपने उस फ्रेंड को टैग करिए जिसके साथ आप ये शो देखना चाहते हैं। जितने फ्रेंड्स को टैग करिए, जितने लोगों के साथ जाना है सबको करिए अलग अलग कमेंट में। यू नेवर नो किसके साथ आपकी किस्मत चल जाए। बट यस, मेरा सवाल पता है यहाँ पे क्या है? मेरा सवाल ये है कि जो गाना चल रहा है पीछे, ये किसके ऊपर फिल्माया गया है? वो दो आर्टिस्ट के नाम बताइए, एक सिंगर है और एक एक्टर है। सो यस, 5599 इज अ नंबर, बट मेक श्योर आप के ए लिखना जरूर भूलिएगा, जरूर लिखिएगा, ना भूलिएगा, बिकॉज के ए जो है वो करण औजला का इनिशियल है, वो लिखना ना भूलिए अपने नाम के साथ। और जो मैंने सवाल किया था इसमें कौन है दो आर्टिस्ट, उसका आप मुझे भेज दीजिए। टिकट्स जो है आप hum.roa.nz और लाइव नेशन nz विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।

चलिए अभी मैं निकलता हूँ और आप एंजॉय करिए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई आए जरा ढूंढ लाए। उदित नारायण और अनुराधा पोर्णवाल की आवाज में। सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक, बट आई विल लीव नाउ एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: SF Rova Pan.
1: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
2: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5pm with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket Thursday, 25th June, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
3: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods.
4: You already share a group chat, now you can share a discount too. Get 50% off Spark group plans for 6 months when you sign up to an eligible pay-monthly leader plan. New Spark Mobile customers only. T's and C's apply.
5: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Police have reiterated their plea for the partner of a missing Christchurch woman to talk to them about her disappearance. Today is Rowena Walker's 40th birthday, marking 10 months since she vanished. Detective Senior Sergeant Joe Carolyn says they've approached her partner multiple times.
7: As the last person known to have seen Rowena alive, his assistance is crucial to our investigation, and it's disappointing and frustrating for the team that he has declined.
6: A major police bust has shut down an offshore criminal network linked to an alleged Auckland meth ring, Suzette Howe reports.
8: 11 men, mostly Chinese and Taiwanese nationals, have been arrested following search warrants across Auckland yesterday. It's part of a major investigation into an alleged group linked to a transnational organised crime network and responsible for the manufacturing and supply of meth in the city. A lab, 10 kilos of meth, drug manufacturing equipment and $200,000 in cash have been seized.
6: Businesses are being reminded any fuel surcharges they charge customers must reflect falling global prices. Commerce Commissioner Brian Chappell says while it's legal to add fuel surcharges, they must be accurate. And WASP control efforts are set to double, backed by $2 million from the International Visitor Tourism and Conservation Levy. The money will go towards DOC's WASP wipeout program. To football updates, brought to you by Hisense. What a day for the superstar strikers at the World Cup. Argentina leads Algeria 3-0. Lionel Messi has a hat-trick. Earlier French star Kylian Mbappe scored twice. Norway's Erling Haaland also scored two. And the teams for Saturday's Hurricanes Chiefs Super Rugby Pacific Grand Final are due out in an hour. After those semi-final displays, expect the word settled to be used to describe the teams.
5: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.2 डिग्रीज है और आज को ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मिक्स काइंड ऑफ वेदर सो फार दिखाई दे रहा है. लेट्स सी, सनसेट आज का होगा 5:12 पर.
5: द बीट ऑफ बॉलीवुड
10: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
9: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. एंड आते ही सबसे पहले बात करते हैं
11: फुटबॉल अपडेट्स, ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स. विजिट indelibleholmes.co.nz.
9: वेल, फुटबॉल के बारे में बात करते हैं. क्या मैच था यार. तो जितने भी मेसी के फैंस हैं इस समय पर बड़े खुश रहे होंगे. अर्जेंटीना के फैंस जो है बहुत खुश होंगे. अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया के बीच में मैच ख़त्म हुआ है और आई विल से कि मेसी वर्सेस अल्जीरिया के बीच में मैच खत्म हुआ है, जिसमें मेसी की जीत हुई है, अर्जेंटीना की जीत हुई है 3-0 के साथ. सो हैट्रिक बना है यार, 3 गोल कर दिए बंदे ने. ही इज़ GOAT फॉर अ रीज़न. लोग कहते हैं ना उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो किसी रीज़न के साथ ही कहते हैं. और वर्ल्ड कप में ना जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, इट्स अनदर हाइप अप आई विल से. सो या वेरी इंटरेस्टिंग मैच एक्चुअली में रहा. अल्जीरिया ने ट्राई अच्छी की, लेकिन क्या हो रहा था ना कि एवरी टाइम अल्जीरिया ट्राई कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत इजीली पास दे रहे हैं मेसी को. सो मेसी को चांसेस मिल रहे थे बहुत सारे गोल यहाँ पे स्कोर करने के लिए. हैट्रिक मेसी को मिली है टू गेट अर्जेंटीना अप एंड रनिंग इन द डिफेंस ऑफ द वर्ल्ड कप. सो वन मैन शो फ्रॉम द कैप्टन. सो लेट्स सी कि आगे मैचेस में क्या अपडेट होता है. फिलहाल वैसे शुरुआत करते हैं, फीफा का नाम यू नो गाना आया है. वैसे बहुत सारे गाने आए हैं, बहुत सारे एंथम आए हैं, बट दिस एंथम इज़ टोटली डिफरेंट. सो इसलिए भी बिकॉज इसमें हमारी एक्ट्रेस है नोरा फतेही है इसमें यार. नोरा फतेही ने इसमें थोड़ा सा गाया भी है अलॉन्ग विद वेजी ड्रीम एंड संजोय. संजोय जो है ये वैसे अमेरिकन आर्टिस्ट है, लेकिन इनके रूट्स बांग्लादेश से हैं. तो नोरा फतेही, वेजी ड्रीम एंड संजोय का कोलैबोरेशन का ये जो गाना है, इसके अगर उन्होंने वीडियो चेक नहीं की है तो यू हैव टू चेक द वीडियो फॉर नोरा फतेही. गाना जो है इसमें बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, स्पेनिश भी है इसमें, इंग्लिश भी है. सो मैंने मेक 4 लैंग्वेजेस है बेसिकली इसमें, जिसमें इस गाने को बनाया गया है. सो फीफा के बारे में बात कर ही रहे हैं, वर्ल्ड कप के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो ये गाना भी प्ले करते हैं आपके लिए.

एक साई बार गोवाने का खाने का पीने का और मस्त चिल मारने का, लेकिन दम दम बिल्कुल नहीं मारने।

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
7: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
8: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
9: MediaWorks complaints, how can I help?
10: My kids won't shut up.
9: I'm not sure that's our problem.
10: They keep reciting lines from one of your radio ads.
9: Aw, cute.
10: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
11: What do you want, son?
12: I want me some of that real southern chicken.
10: 28 times.
9: So where are you now?
10: Eating chicken.
13: Advertise with
14: MediaWorks.
13: New Zealand listens to us.

0: 3:15 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड बात करते हैं वैसे आसपास जो हमारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, FI है, हॉकी के बारे में भी कुछ अपडेट्स यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली रहेगी. सो जिसमें न्यूजीलैंड एंड इंडिया दोनों की टीम जो है ये आगे जाने के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं. पॉडकास्ट भी हमने रिकॉर्ड किया है. पॉडकास्ट में इस बार हमने थैलेसीमिया के ऊपर डिस्कशन की है एंड थैलेसीमिया क्या होता है ये मुझे भी एक्चुअली में नहीं पता था. आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को पता है. इनफैक्ट जिस दिन हमने पॉडकास्ट रिलीज़ किया था हमें मैसेजेस एंड कॉल भी आई थी जहाँ पर उन्हें बताया था कि दे आर अवेयर ऑफ थैलेसीमिया. वेल, थैलेसीमिया जानना स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, बिकॉज थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि ब्लड डिसऑर्डर होता है और वो जेनेटिक है. जो हमारे रोल ऑफ जेनेटिक्स इसमें कैसे होता है फैमिली का ये इस पॉडकास्ट में शेयर किया गया है. सो इट कैन स्किप वन जनरेशन एज वेल एंड देन कम बैक इन अनदर जनरेशन. तो इस वजह से भी थैलेसीमिया होता है एंड हमारी कम्युनिटी में ये बहुत इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है. द प्रॉब्लम इज़ कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है. बात तो छोड़ो कैंपेन्स नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है स्पेशली न्यूजीलैंड में अगर हम यहाँ की बात करते हैं. सो इफ़ यू आर अ पेरेंट या फिर आप शादी करने वाले हैं या फिर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट फॉर यू. सो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में जो थैलेसीमिया है ये माइनर होता है एंड अगर किसी में माइनर थैलेसीमिया है एंड पार्टनर में भी माइनर थैलेसीमिया है तो आगे जाके बच्चे में हो सकता है कि वो मेजर थैलेसीमिया अफेक्ट आ जाए. लेकिन इनको कंट्रोल करने का, इनको मैनेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो इस पॉडकास्ट में शेयर किया गया है. तो हमने प्रोफेशनल से ही इसमें बात की है. वी एक्चुअली हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद निवेदिता शर्मा विज. वेल, निवेदिता एक सीजन्ड हेल्थ प्रोफेशनल है, एक मदर भी है हु लिव्ड द एक्सपीरियंस एंड अपनी डॉटर के साथ जो इनका एक्सपीरियंस हुआ वो इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे शेयर किया है एंड हाउ इनकी डॉटर का एक सपना था कि कोई और बच्चा ये ना देख सके जो उसने देखा है. सो वो भी इसमें पूरा का पूरा शेयर किया गया है. इट्स ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस इन पीपल लिविंग विद अ क्रॉनिक हेल्थ जेनेटिक ब्लड एंड रेयर कंडीशंस. सो यू नो इस पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें हैं जो हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं. कई बार हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर फोकस कर देते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल कितना आया है, अगर किसी में आयरन कम है या नहीं है. सो आयरन के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है थैलेसीमिया. सो कईयों को लगता है कि आयरन की कमी है, मे बी इस चीज़ की कमी है या फिर एनीमिया है तो उसके कारण ये कर देते हैं, लेकिन कई बार थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं हो पाता है. सो वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए वो भी आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा एंड कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैलेसीमिया टेस्ट करवाने के लिए वो भी इस पॉडकास्ट में बताया गया है. इनफैक्ट इस पॉडकास्ट के बारे में इतनी बातें की गई है कि वी हैड अ कॉलर जिसने शेयर किया कि लोग जो है कुंडली मिलाते हैं, कुंडली की जगह ये चीज़ें जो है ये चेक करनी चाहिए. सो इतने वास्ट में इस पॉडकास्ट में इस चीज़ों के बारे में बात की गई है. इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन टू द पॉडकास्ट आई विल से इट इज़ अ मस्ट लिसन पॉडकास्ट गाय, मस्ट लिसन, बिकॉज मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली थी इस पॉडकास्ट के थ्रू जिसके बारे में आइडिया नहीं था. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट. ड्राइव लिख के भेज सकते हैं 5599 पर, आपको फुल लिंक मिल जाएगा इस पॉडकास्ट का. अदरवाइज स्पॉटिफाई पे जाइए, रोवा पे जाइए, जस्ट सर्च अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे तो टॉप पे आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग थैलेसीमिया. अगर आप hum.rova.nz हमारी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे आर्टिकल भी है थैलेसीमिया के बारे में जहाँ पे थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा बताया गया है एंड देन पॉडकास्ट का जो लिंक है वो भी पोस्ट उसके अंदर ही किया गया है तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. बट इफ़ यू जस्ट वॉन्ट अ ईजी लिंक, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, जस्ट टाइप ड्राइव, ऑटो रिप्लाई में आपको लिंक मिल जाएगा. जब भी आपको टाइम मिले, आई एम नॉट सेइंग कि अभी जाके सुनना शुरू कर दो, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले क्लिक ऑन द पॉडकास्ट एंड लिसन थ्रू. बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बातें हुई है, ग्रीफ के बारे में भी इसमें बातें हुई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अ मदर जो ग्रीफ कर रही है, हाउ शी इज़ डीलिंग विद इट, हाउ शी इज़ हेल्पिंग आउट अदर पेरेंट्स अबाउट इट, जिसमें उनका बेनिफिट यही है कि शी इज़ फीलिंग अ बिट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि वो अपनी बेटी का ड्रीम पूरा कर रही है. सो मेक श्योर कि इस पॉडकास्ट को आपको ज़रूर सुनना है. वाई इसके बारे में हम ज़्यादा आपको जोर दे रहे हैं, बिकॉज अगेन हमारी कम्युनिटी के लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू ऑलरेडी मतलब अवेयर ऑफ थैलेसीमिया यू विल नो, बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म, प्लीज डू गो एंड लिसन दिस.
1: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन
3: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colors, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
4: At Woolworths, whether it's casserole or stir fry, we've got chicken for every occasion. Like our fresh chicken drumsticks, on special at just $4.99 a kg. Large tray only. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
5: Auckland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.

0: 3:29 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड एक सवाल है, लेकिन सवाल पूछने से पहले यहाँ पे बात करते हैं केतन के साथ. गुड आफ्टरनून केतन, कैसे हो तुम?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: आज मैं लंच बॉक्स में नहीं आई ना.
1: रिमाइंड करवा रहे, मुझे क्यों नहीं बुलाया?
0: बताइए. सो सवाल मेरा ये है कि तुमने कभी स्कूल टाइम में या कॉलेज के टाइम पे कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें तुम्हें लगता कि था कि भाई ये सब्जेक्ट में यू आर रियली गुड? ठीक है, मतलब कि मैथ, साइंस, कुछ भी होगा वो रियली गुड, और तुम उसमें कुछ आगे बनना चाहोगे या कुछ ऐसे, मतलब वो सब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा मेन प्रायोरिटी रहेगा लाइफ में. कभी कोई ऐसा था या फिर कोई भी नहीं था?
1: नहीं था ना. आर्ट्स में मैं काफ़ी स्मार्ट था, लाइक यू नो,
0: इसीलिए आर्टिस्ट हूँ.
1: आई डोंट नो, बट हाँ, मतलब उस चीज़ में जब कभी पेंटिंग वाली बात आती थी या फिर परफॉर्मेंस वाली बात आती थी, उसमें मैं ऑटोमेटिकली आगे आ जाता था.
0: हाँ, तो तुम आर्ट्स में हमेशा से अच्छे थे.
1: मतलब को करिकुलर एक्टिविटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं हमेशा आगे रहा हूँ.
0: परफॉर्मेंसेस कभी की है तुमने?
1: बहुत बहुत, बचपन से कर रहा हूँ
0: डांस.
1: मैं कहता हूँ ना, एक बार मैंने बताया भी था लिसनर को कि मैं लेट होता था. कभी लेट हो गया मेरी खुद की वजह से या पापा की वजह से या मम्मी की वजह से, यू नो, स्कूल. तो तब ऑफिस से जो लेट कमर्स होते हैं उनको साइड में खड़ा रहना पड़ता था, वो पनिशमेंट. फिर उनको डंडे पड़ते थे.
0: वो डंडे भी पड़ते थे?
1: हाँ, मतलब पनिशमेंट.
0: हमें फाइन होता था,
1: पता नहीं, हमें तो फाइन नहीं लगा कभी, लेकिन हाँ, पनिशमेंट हमें मिलती थी धूप में. करीबन लिटरली आधा घंटा तक हमको खड़े रहना पड़ता था, चाहे ठंड हो या सच कुछ भी हो. ठंड में बहुत मजा आता है धूप में खड़े रहने, ये हमारे बल्ले बल्ले. बट माय पॉइंट इज कि तब क्या होता था, अब जब नेशनल एंथम होता था इंडिया का, तब गाते थे, या फिर कोई भी प्रेयर होते मैं गाता था, तो ऑटोमेटिकली मुझे वहां से खींच के दे ब्रिंग मी टूवर्ड्स द स्टेज.
0: ओह, बचपन से सिंगर?
1: नहीं, ये घात में बचपन से ही रहा हूँ.
0: हाँ.
1: अच्छा रियलाइज मुझे हुआ है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया.
0: कैसे?
1: जब एक होता है ना बैक बेंचर्स, तो उसमें आप नए नए स्कूल में जाते हो तो आपको क्या लिखना होता है कि आपकी हॉबीज क्या है. तो तब तक मेरी हॉबी ही थी सिंगिंग. तब मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता था, वो मेरे करियर का था. तो सिंगिंग में लिखी, तो इन जो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स थे, क्लासमेट्स थे, उनको लगा मजाक में ऐसे, तो उन्होंने नाम दे दिया मेरा स्टेज पे. और मेरा नाम अनाउंस हो गया, तो मैं बस गया स्टेज पे, गया, ऑप्शन था नहीं, नाम अनाउंस हो चुका, नया स्कूल है, तो रेपुटेशन करके मैंने गया और अभिजीत सावंत में गाना गाया. एंड लकीली सबको बहुत पसंद आया.
0: क्या बात?
1: तब से

0: वहाँ का जो म्यूजिक टीचर है उसने भी मुझे रेकमेंड किया कि तुमको आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज तुम्हारे पास क्वालिटी है. तब से जाके मैं थोड़ा सीरियसली लेने लगा सिंगिंग को.
1: ओके, दैट्स हाउ यू गॉट इट.
0: या
1: और सिंगिंग का पैशन तुम्हारा अभी तक चल रहा है?
0: हाँ, वो चलता रहेगा. लाइक तो मेरे को लग रहा है दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है.
1: नाइस,
0: वो चीज भी है. बट आप बताओ, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका?
1: तो मैं वही लिसनर से पूछना चाहूंगी कि आप किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे. मतलब बहुत बुरे वाले तो हमें पता है, वो हमारे टॉप पे रहते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे थे? मतलब मैं लिटरली, मेरे को सोचना पड़ा पता है ये सवाल के लिए कि मैं ऐसा कौन सा ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं अच्छी थी. मैं एवरेज थी हर किसी में. आई वॉज नॉट बेस्ट बेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई विल से, लेकिन हाँ मेरे पंजाबी में अच्छे मार्क्स आ जाते थे. क्योंकि हाँ वो
0: लिटरेचर लैंग्वेज ना, पढ़ने तो आती होगी, लिखनी भी आती है.
1: अब लिखने का बहुत समय से वो छूट चुका है,
0: छूट चुका है.
1: या लिखी नहीं है बहुत टाइम से मैंने, बट आई एम श्योर अपना नाम तो लिख ही लेती हूँ मैं.
0: मेरा हमारा ये कि हिंदी, ऑब्वियसली हमने बचपन से हिंदी ही पढ़ी है, तो हिंदी का ऐसा है दैट
1: एक सोशल साइंस भी था यार. सोशल साइंस में बहुत अच्छी थी मैं. अभी याद है मुझे, सोशल साइंस वाज रियली गुड.
0: राइट, मतलब मैं ये कह रहा था कि बचपन से हमें सिखाया गया है रिगार्डिंग हिंदी सिखाई है. ठीक है, तो इतना टाइम हो गया, इतना गैप हो गया है. मेरे ख्याल से 20-25 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं जब मैंने लिखा है. बट टुडे आल्सो आई कैन स्टिल राइट डाउन हिंदी.
1: तुम पूरा मतलब पैराग्राफ लिख सकते हो क्या? एक पैराग्राफ
0: पूरा ऐसा लिख सकता हूँ, पैराग्राफ क्या?
1: वाओ यार, वुड लव टू नो. आउट देयर आप में से कोई है जो लैंग्वेज आपने स्कूल में पढ़ी है, कॉलेज में पढ़ी?
0: मैंने पढ़ी नहीं, ये एक तरह से मेरे लिए मदर टंग थी.
1: हाँ, मदर टंग.
0: I don't know if it is the same thing for you as well, पंजाबी को लेके.
1: हाँ, हिंदी भी पंजाबी भी दोनों सेम. सो हिंदी भी थी हमारे वहाँ पे और पंजाबी भी थी, लेकिन एक क्लास के बाद ऑप्शन थी बिटवीन हिंदी एंड पंजाबी.
0: Right.
1: ऐसा था.
0: Okay.
1: एक क्लास तक लाइक टोटल दोनों कंपल्सरी थी और देन ऑप्शन थी दोनों में से. सो आप भी बताइए यहाँ पे मैसेज करके, कोई आप में से है जो एक पूरा पैराग्राफ अपने रीजनल लैंग्वेज में लिख सकता है, जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज है? इफ यू कैन स्टिल राइट, रीड हम कर सकते हैं, रीड का तो इजी है, लाइक काफी लोग कर पाएंगे. लिखने की बात हो रही है,
0: बट वो कैसे प्रूव करेंगे कि उनको आता है नहीं आता है? ऐसा तो हर कोई बोलेगा ना कि लाइक हाँ.
1: नहीं यार, हमारे लिसनर बड़े ऑनेस्ट है यार. हमारे जैसे थोड़ा है.
0: नहीं यार, अपन भी ऑनेस्ट
1: है, खेलते हैं वो.
0: अपन भी ऑनेस्ट तो है.
1: या
0: बट गुड टू नो यार, गुड टू नो.
1: हाँ, कि कोई पैराग्राफ अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकता है. लिखने में तो मेरे को लगता है कि आजकल कोई अंग्रेजी में भी नहीं अच्छे से लिख पाएगा, बिकॉज वी आर सो मच इनटू टाइपिंग.
0: हाँ, अपना इंग्लिश हो चुका है आजकल, एक्चुअली
1: इंग्लिश में हो चुका है. एंड देन टाइपिंग पे भी अगर कुछ हम इंग्लिश में कुछ लिख भी रहे हैं, ईमेल्स भी लिख रहे हैं, इट्स ईमेल्स राइट, वो टाइपिंग ही है सब कुछ. मतलब हाथ से
0: लिख नहीं, हाँ.
1: कुछ लिख नहीं रहे हैं.
0: True, true.
1: मतलब हाथ से हमारी हैंड राइटिंग नहीं आजकल हो रही है. तो वहां पे ऑटो करेक्ट भी नहीं हो पाएगा ना हैंड राइटिंग जब हम करेंगे. सो If anyone of you can write one paragraph which can have 5 to 6 lines in your own regional language, it can be any language, तो जरूर मैसेज करके यहाँ पे बताइए 5599 पर.

0: वह लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि अपने रीजनल लैंग्वेज में अगर आप एक पैराग्राफ लिख पाते हैं अभी तक तो मैसेज करके बताइए 5599 पर। वह एक का मैसेज आया है कि आई नो दिस इज बैड बट आई कॉन्ट रीड एंड राइट इन माई रीजनल लैंग्वेज बिकॉज इट वॉज नेवर टॉट इन स्कूल फॉर मी बट लर्न हिंदी अरबिक विच आई गेस आई वुड बी एबल टू अरबिक आई हैव फॉरगॉटन डोंट वॉन्ट टू गिव माई नेम। हाँ ठीक है। एंड देन एक मैसेज आया है, इन्होंने बोला है कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम फिजी बट हेयर फॉर ऑलमोस्ट 40 years आई कैन राइट इन उर्दू एंड इंग्लिश। क्या बात है यार, होल स्टोरी, ये पूरी कहानी लिख सकते हैं। फैजिलत फ्रॉम पापाटोए, क्या बात है यार, उर्दू तो मेरे को लगता है अगर आपने यहीं पे आके सीखी है तो इट्स रियली वंडरफुल। सो आप भी बताइए अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में फुल पैराग्राफ, हम ये तो कहानी लिख पा रहे हैं लेकिन अगर आप फुल पैराग्राफ लिख सकते हैं, पढ़ने की बात नहीं कर रही, पढ़ तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन अगर आप लिख सकते हैं तो 5599 पर बताइएगा।
1: बॉलीवुड वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

पर थ्रोबैक में 2000s के गाने आप यहाँ पे सुनते हैं। 4 बजे यहाँ पे ड्राइव शो शुरू हो जाएगा और 6 बजे आज हम ट्रेंड मेकर्स में ट्रिब्यूट देने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं इम्तियाज अली को, बिकॉज इम्तियाज अली का बर्थडे था एंड वेल उनका जो सेलिब्रेशन है ये आज होने वाला है। वेल मैंने आपसे सवाल पूछा था अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अगर आप लिख सकते हैं 1 पैराग्राफ तो लिख के बताइए मुझे यहाँ पे कौन है। एक ने बोला है कि आई एम राइटिंग पोइम्स एंड स्टोरीज इन पंजाबी, आई एम रनिंग अ ऑनलाइन पंजाबी न्यूज़पेपर एज वेल। क्या बात है। एंड आप भी बताइए अगर आप लिख पाते हैं। 5599 इज़ अ नंबर।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी कमाल है वैसे. आफ्टरनून में मतलब अभी थोड़े बहुत शावर्स हो सकते हैं, आइसोलेटेड शावर्स कुछ कुछ जगहों पे, मेनली इन वेस्ट हो सकते हैं ये. साउथ वेस्ट लीज का भी साथ रहेगा. टू लेयर्स ऑफ क्लोथिंग इज रिकमेंडेड राइट नाउ. फील्स लाइक 14 डिग्रीज. ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 9 डिग्रीज टुनाइट. 5:12 पे सनसेट.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: Good afternoon, 4:02 on the 17th of June. मैं हूँ रुज़बे और मेरे साथ यहाँ पे
4: सैंडी
1: और हम लेकर आते हैं आपके लिए ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे 4 से 7 के बीच.
4: अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. मुझे लगा तुम भी नाम भूल गए मेरा.
1: नहीं सैंडी, मैं ये एक नया इंट्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज़ एवरी डे वी गेट न्यू लिसनर्स आल्सो जॉइनिंग अस राइट. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स,
4: क्योंकि आज के इतने मुझे सैंडी की जगह संडे.
1: अच्छा सैंडी, अभी नया नया खासना उसने शुरू किया है शो में. इट्स बीन अ न्यू फीचर एडेड, जैसे हमने नया रीब्रांडिंग किया है.
4: अभी मेरे को काफी कम हो गई है रुज़बे.
1: कम हो गई अभी.
4: या लॉट बेटर,
1: लेट अदर्स से दैट.
4: या बेटर.
1: बट सैंडी, मेरे को आज एक चीज रियलाइज हुई है. यू नो, हम अक्सर बोलते हैं कि यार रिटायर होना है, रिटायर होना है, रिटायर होना है. यू नो 40 पे रिटायर ये वो. बट इज नो वर्क एक्चुअली दैट एक्साइटिंग? मतलब अभी मैं आज आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आज मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अप देयर है.
4: मैं ये तुम्हारे साथ शेयर ही करने वाली थी. वो तुमने खुद ही बोल दिया है.
1: हाँ, बताओ.
4: मैं ये शेयर करने वाली थी कि जितने दिन तुम छुट्टी पे थे ना,
1: हाँ,
4: ऐसा जब तुम आते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत थके हुए हो.
1: एग्जैक्टली.
4: और आज तुम काम से आ रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एनर्जेटिक हो.
1: एग्जैक्टली.
4: उल्टा है ये.
1: नहीं उल्टा नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये लाइफ का मेरे को आज एक लर्निंग हुआ है. और मैं इसलिए ये टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ. यू नो आई थिंक रिटायरिंग इज वेरी ओवररेटेड. आई थिंक रिटायरिंग इज नॉट फन. लाइक यू नो हम कहते हैं ना,
4: इट इज नॉट,
1: कि मुझे लगता है काम तुम्हें ज़रूरी चाहिए, काम होना चाहिए, हमेशा करना चाहिए काम. हाँ समटाइम्स यू डू फील के यार थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर हो तो बेटर है, लेकिन नहीं भी होना तो वो भी बेटर है, क्योंकि इट जस्ट कीप्स यू ऑन, लाइक
4: कीप्स यू गोइंग.
1: देयर इज अ पर्पस अराउंड के हाँ भाई ये काम करना है, ये करना है, एनर्जी रहती है वो. अगर सब कुछ तुम्हें मिल गया ना जिंदगी में तो तुम्हारा वो मकसद ही चला जाएगा.
4: या आई एग्री. इसीलिए जब भी वो आता है कि अगर तुम लोटो जीतो तो क्या करोगे,
1: हाँ इसलिए अभी लोटो लेना बंद. से नो टू लोटो.
4: या वैसे भी तुम कहाँ खरीद रहे थे ना.
1: हाँ वही, मैं बस सपने देख रहा था. बट अब मुझे रियलाइज हो गया कि मेरे को वो भी सपने नहीं देखने. क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे पास इतना पैसा आ गया और मैं खुशी नहीं रहा तो क्या फायदा है ना.
4: क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा ऐसा ही था.
1: हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा आया था, बस छुट्टियां थी मेरे पास.
4: छुट्टियां थी मतलब वेले थे तुम.
1: वेले थे लेकिन वेले में नहीं मजा आया.
4: या
1: काम इज बेटर.
4: और वेले में ऐसा भी नहीं हुआ कि रुज़बे ने सोचा कि मैं वेला हूँ तो मैं कुछ सीखता हूँ, मैं कुछ नया करता हूँ.
1: नहीं मैंने किया नया, मैंने काफी नया चीजें सीखना चालू किया है. कुछ ज्यादा ही चीजें ले ली मैंने सीखने के लिए. लेकिन हाँ जो मैं सोचा था सीखूंगा वो नहीं सीखा, कुछ और सीखा. बट दैट इज ओके. बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि मैं अभी काम पे जब जाता हूँ तो मुझे ज्यादा लोग मिलते हैं जिनको मैं उन जिनके कान चबा सकता हूँ.
4: दिस इज द थिंग रुज़बे, छुट्टी पे तुम खुद से बात कर रहे थे.
1: खुद से बात कर रहा और मैं
4: तुम्हें लोग नहीं मिल रहे थे.
1: या और ना काफी बार लोग बोलते हैं कि अरे खुद से कौन बात करता है, मेरे से मिलो आप. मैं करता हूँ खुद से बातें और वो भी जोर जोर से करता हूँ मैं. ऐसा नहीं कि मनी मन में बात हो रही है. और काफी बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं मनी मन में मेरा बात चालू है और अचानक से एक दो वर्ड्स जोर से निकल जाएंगे तो मेरी बीवी वहां से पूछेगी कि अरे क्या बोला, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ.
4: ओके,
1: लाइक
4: थिंकिंग आउट लाउड.
1: थिंकिंग, मेरा थिंकिंग इतना लाउड हो जाता है कभी कभार कि वो मुंह से निकल आता है.
4: बहुत डेंजरस है ये.
1: डेंजरस है ये.
4: थोड़ा ध्यान से रुज़बे.
1: इट इज
4: डिपेंड करता है क्या सोच रहे हो तुम ना, किस टाइम पे सोच रहे हो.
1: ओनली गुड थिंग्स आई थिंक अबाउट एंड माय वाइफ.
4: बट यू नेवर नो. यू नेवर नो, कुछ तुम ऐसा सोच रहे हो, कुछ ऐसे मूड में आ गए हो कि
1: क्या ऐसे
4: थिंकिंग आउट, मतलब थोड़ा ऐसा चिढ़ गए हो तुम, एंड थिंकिंग आउट लाउड हो गया तुम्हारा,
1: वो तो
4: गड़बड़ है.
1: ऐसा गड़बड़ क्यों है? मुझे लगता है कि एवरीवन हैज द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड यू शुड बी ओके टू एक्सप्रेस. अगर समझो मेरे को कोई चीज नहीं अच्छी लगी है मेरे पार्टनर की तो मेरे को हक होना चाहिए ना वो एक्सप्रेस करने का
4: और सुनने का भी.
1: और सुनने का भी 100% सुनने का भी और बोलने का भी. और उसके बाद में बोलने का कि देख तेरे हाथ में नहीं है ये, बस मेरा फीलिंग है ये. There's nothing that you can do.
4: ये ही नहीं सीखा ये बंदा. रैप अप नहीं करते ऐसे.
1: नहीं रैप अप करते.
4: नहीं नहीं नहीं.
1: भाई आपको पता है रैप अप नहीं किया तो क्या वाट लगेगी? देखो आपको एक्सपर्ट से पूछता हूँ मैं. केतन.
4: एक्सपर्ट.
1: केतन
5: ये कैसा इंटरेक्शन हो?
1: How comfortable are you to express your true feelings to your partner?
5: बिल्कुल भी नहीं हो.
1: बिल्कुल.
5: मतलब ऐसा नहीं comfortable नहीं हो.
1: हाँ.
5: हिम्मत नहीं है.
1: हिम्मत नहीं है.
5: हाँ.
4: क्यों ऐसे?
1: क्या लगता है ऐसा क्या होगा?
5: यार देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो इट इज मोर लाइक या तो मैं उस चीज में अच्छा नहीं हूं टू एक्सप्रेस और हो सकता है बात बिगड़ सकती है.
4: तुम्हें कई बार वर्ड्स नहीं समझ में आते मैं किस वे से उस चीज को एक्सप्रेस करूं.
5: मुझे समझ में बहुत कुछ आता है बट मुझे लगता है कि नॉट जस्ट अबाउट पार्टनर बट मेरे को लगता है कोई सामने वाला बंदा हो सकता है उस वे में नहीं समझे जो मैं चाहता हूँ समझाना.
1: तो उसके लिए तुम समझाती नहीं हो?
5: हाँ मैरिटल लाइफ में. हाँ
4: हो
5: सकता. देखो लड़कियों के लिए बहुत ही छोटी बात है कि ज्यादा क्या झगड़ा ही होगा लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एक एक छोटा सा झगड़ा नहीं होता है.
1: हाँ वो हमेशा रिटर्न आते कॉल बैक होते रहते हैं.
4: It is like खाना बंद हो जाता है चाय बंद हो जाता
5: है. नहीं नहीं नहीं भाई जेल में थोड़ी हम.
4: हाँ वही ना.
5: अच्छी लाइफ है यार अच्छी बीवी मिली ऐसे ऐसे थोड़ी ना यार. ये क्या सैंडी.
1: ये सैंडी ना बहुत भड़काने का काम करती है.
4: वही.
1: और आपको पता है क्या यहाँ पे बहुत जालिम दुनिया है जो जाके हमारी बीवियों को भड़काते
5: हैं. एक्सपीरियंस भी है.
1: मेरा भी एक्सपीरियंस है.
4: ओके.
1: हाँ मेरा भी एक्सपीरियंस है. अरे वो ऐसा कोई जाता है उसको बोलता है कि अरे आज रुस्बे बोल रहा था तेरे बारे में ऐसा वैसा. हाँ और मैं तो सिर्फ प्यारी बात ही बोलता हूँ बट पता नहीं यार ये जालिम दुनिया को क्यों नेगेटिव लगती
4: है. पसंद नहीं है उनको.
5: वैसे ना वो जो टॉपिक था ना तेरा कि रिटायरमेंट इज ओवररेटेड.
1: हाँ
5: मेरे को दिमाग में आया आई फील डिपेंड. मुझे लगता है कि हर एक इंसान को चेंज चाहिए लाइफ में. तो एक फुल टाइम काम भी कर रहा वो भी बोर हो सकता है और एक फुल टाइम कुछ नहीं कर रहा वो भी बोर हो सकता है.
4: तो मे बी ये गैप चाहिए. हाँ ये गैप चाहिए जैसे रुस्बे ने ये ब्रेक लिया टू रियलाइज इट कि ओके दिस इज नॉट व्हाट आई वांट.
1: लाइक यू नो लाइक अगर तेरे को वैसा चाहिए ना तो एक ट्राई करना एक हॉलीडे ले बट कहीं घूमने मत जा.
5: मैं वही कह रहा हूँ कि यू नीड चेंजेस. अब फॉर एग्जाम्पल किसी व्लॉगर को ले ले. उसका काम है घूमना. वो उसी का ब्लॉग कर रहा है वो उसका फुल टाइम है. वो काम पे भी है बट ही इज डूइंग द फन जॉब व्हाट ही लाइक्स टू डू.
1: बट वो फन नहीं है यार. मैं ऑनेस्टली
5: नहीं है.
1: नहीं भाई
5: नहीं नहीं इंटरेस्ट का होता ना. मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो फन नहीं. वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फन है. फॉर एग्जांपल अगर तू मेरा देखता है कि एडिटिंग है ये सब कर रहा हूँ फन है क्योंकि दिन भर एंटरटेनमेंट देख रहा हूँ. जस्ट एग्जैक्ट गिविंग एग्जांपल.
1: मुझे नहीं लगता फन है यार मैं क्योंकि मैंने
5: काफी लोग बोलते हैं मुझे
1: कि
5: तेरा यार का चिल काम है ना. मतलब
4: चिल नहीं है. वेरी कंसंट्रेटेड वाला
1: ये सब. भाई हमको पूछ भाई हम लोग को कितना
4: हमने थोड़ा बहुत जो किया है नहीं चिल होता है वो.
1: वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स है एडिटिंग.
5: सेम फॉर दिस जो अभी अपन कर रहे हैं आरजे एज एन आरजे. लोगों को बहुत लगता है जैसे कोई मुझसे बोलता है अरे क्या चिल काम है यार तुमको क्या बोलना है बातें करनी है बस. बट वी नो राइट. बट
1: नहीं चिल ही काम है ना. मतलब सैंडी सैंडी को करना पड़ता है डिफिकल्ट वाला काम. मेरा तो काम है माइक ऑन करो बातें करो. सैंडी प्लीज गाना एडजस्ट करो यार.
4: नहीं बहुत सारी स्क्रीन्स मैनेज करनी होती है साथ में. बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है कि अच्छा आज ये भी करना है.
1: हां सैंडी को ध्यान रखनी पड़ती है वो सारी चीजें. देख इसलिए यू नीड कोहोस्ट ब्रो.
5: नहीं एक्चुअली आई एंज�ॉयड जब भी मैं ना क्रॉसओवर करता हूं तो एक्चुअली बात करने के लिए
4: लंच बॉक्स में ना.
1: चलो ठीक है. तो आज मजा आया बात करके और आपसे भी बात करना चाहेंगे. 0800-004-866 इज द नंबर. यू कैन गिव अस अ कॉल एंड डू योर रेंट फॉर द डे. आपको कोई ऐसा रियलाइजेशन हुआ आज के दिन पे जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ? एनी रियलाइजेशन इज अ बिग रियलाइजेशन.
4: एनी रेंट आपको करना है कर सकते हैं.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits drive show जारी है आपके लिए और यहाँ पे एक बहुत ही relevant मतलब बहुत ही perfect message आया है and I completely agree with it. Sandy is Rusbe's backbone. She always keeps the rule off on air. हाँ तो मतलब प्रशांत
1: एक थोड़ा बिगड़ जाता है तो दूसरे को संभालनी पड़ती है ना गाड़ी.
0: परफेक्ट पकड़ा है आपने ये चीज. डेफिनेटली यार मेरे को लगता है कि सैंडी डेफिनेटली इज बैकबोन. और मैं यहाँ पे काफी बार ऐसे टीज करता हूँ बट सबको पता है कि यू नो हु इज द रियल हार्ड वर्कर.
1: ओ माय गॉड रिज़वे आंसू आ गए.
0: देन आंसू अरे आंसू लग रहे हैं दिख रहे नहीं है बिल्कुल भी लेकिन सैंडी
1: अब वो खत्म हो गए.
0: अच्छा तो एनीवे पहले मुझे लगा था सिर्फ सैंडी खांसती है लेकिन अभी अभी केतन में भी आ गया ये खांसने का.
1: केतन है तो क्योर वो तो क्योर भी हो गया है.
0: क्योर हो गया केतन. हाँ. केतन बता क्या हो गया भाई तू क्यों खांस रहा है अभी भी.
2: मैं हंस रहा था एक्चुअली.
0: ओ हंस रहा था.
2: तो मैं कंट्रोल करने के चक्कर में खांस लिया.
0: ओ ओके ओके
2: आवाज नहीं आया ना.
0: ऐसी क्या चीज पे हंसी आई देखो सैंडी इज द बैकबोन पे देखो हंसी आई.
2: नहीं भाई अब तू क्यों सैंडी की जगह ले रहा है. वो तो जो थोड़ी देर पहले बोला.
0: So anyway, आप यहाँ पे अगर कॉल करके कुछ कहना चाह रहे हो हमारे साथ बात करना चाह रहे हो 0800-004-866 इज द नंबर. देखो आ गया प्रशांत का फोन. हाय प्रशांत बोलिए.
3: हार्डवर्क तो बोथ हो.
0: बोथ मतलब
1: हाँ
0: मतलब दोनों
3: सैंडी और आप दोनों.
0: मैं भी हार्डवर्क करूँ क्या.
1: इतनी खुशी
0: मेरे को जिंदगी में मेरे रिपोर्ट कार्ड पे कभी किसी टीचर ने नहीं लिखा कि हार्ड वर्क करूं मैं.
1: क्या बात कर रहे हो.
0: कभी नहीं.
3: नहीं
0: हमेशा यही लिखा है कैन डू बेटर.
1: लेकिन यहाँ पे तुम्हें बहुत बार बोला गया है हार्ड वर्क कर. लाइक यहाँ पे तुम्हें बहुत बार एप्रिसिएशन मिली है.
0: या यहाँ पे मिला है.
3: आप जो हार्ड वर्क करते हो वो ऑफ एयर होता है.
0: हाँ सही कह रहे हो आप. मतलब ऑन एयर आपको नहीं दिख रहा है मेरा हार्ड वर्क. रील्स आपको मेरा हार्ड वर्क लग रहा है.
3: जो रूल्स होते हैं जो ट्रीटी होती है ऑन एयर की वो लुक आफ्टर करती है सैंडी जी.
0: या जी जी. नहीं नहीं सैंडी बहुत चीजों का ध्यान रखती है.
1: सही पकड़े.
3: अरे नहीं
0: नहीं
3: हार्ड वर्क तो बहुत हो. उसका आपको फल भी मिल गया अभी लास्ट मंथ.
0: जी जी अवार्ड भी मिला हमको उसके लिए.
1: मिल गया. सही कह रहे हो.
0: एब्सोल्युटली. थैंक यू प्रशांत जी.
1: थैंक यू प्रशांत जी. बाय.
0: थैंक यू. अच्छा तो अभी हम आपके लिए एक गाना लेकर आएंगे और फिर उसके बाद क्या चल रहा है हमारे सुपर सिटी में इसकी थोड़ी बातें करेंगे.
1: हॉकी के बारे में भी. फुटबॉल के यार फुटबॉल का रुज़बे आज मैच नहीं देखा था तुमने.
0: अरे आपकी टीम भी जीती ना. फ्रांस ने भी 3-1
1: गलत नहीं बोल सकते.
0: डोंट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन.
1: प्लीज सर.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Sarah Street is safer thanks to a fibre-powered speed camera, which is managed by the police, who use fibre to process DNA matches, which is a different match to the hunk Tracy found on a dating site that had an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
4: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 फॉर सन टूर्स, दैट्स 0800 478686। लिमिटेड स्पेसेस।
5: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
9: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
10: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. वैसे आज हॉकी में क्या हो रहा है अपडेट्स?
1: हॉकी के जो रिजल्ट्स हैं सो फार मैं आपको बता देती हूँ जो आज के दिन के रहे. बेल्जियम वर्सेस स्पेन के बीच में बेल्जियम की जीत हुई 3-1 के साथ. साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड के बीच में ड्रॉ हुआ मैच 3-3 के साथ. देन बेल्जियम वर्सेस चाइना के बीच में बेल्जियम की जीत हुई थी 5-0 के साथ.
0: ओह माय गॉड.
1: फ्रांस वर्सेस यूएस के बीच में जो मैच हुआ फ्रांस की जीत हुई थी 4-1 के साथ. 2017 या देन स्कॉटलैंड वर्सेस कोरिया के बीच में जो मैच था 4-2 के साथ स्कॉटलैंड की जीत हुई. दिस इज हॉकी.
0: हॉकी में हॉकी के ये सारे अपडेट्स हैं. सॉकर अपडेट्स आपके लिए थोड़ी देर में लेकर आएंगे हम,
1: लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर में आपको यहाँ पे बताएंगे.
0: बट अगर आपको भी जाना है यहाँ पे न्यूजीलैंड में ही हो रहा है ये हॉकी का वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसका अगर आपको हिस्सा बनना है. दिस इज FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप. 21 जून तक ये नॉर्थ हार्बर स्टेडियम में होने वाला है. hockeynz.flickit.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. आप जाके ज़रूर सपोर्ट करना हमारे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वुमेन को जो अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं होम सॉइल पे इस साल.
1: या एंड वैसे आपको बता दें कि इंडिया क्वालिफाई हो चुकी है. न्यूजीलैंड की टीम भी आगे जाने के लिए क्वालिफाई हो चुकी है.
0: अच्छा, तो अभी वो वीकेंड पे फाइनल्स के लिए मतलब
1: दे आर क्वालिफाइड लाइक सेमीफाइनल्स के लिए. या दे आर क्वालिफाइड एक्चुअली.
0: मजा आएगा यार, इसकी वीकेंड का पास मिल रहा है मैंने देखा है hockeynz.flickit.co.nz पे. And the whole weekend you can enjoy at North Harbour Stadium.
1: Yeah, and go for it. मतलब कि enjoy कीजिए ये game थोड़ी, you know, hockey मुझे नहीं लगता कि काफी लोग live जाके देखते हैं. तो ये गेम डेफिनेटली जाके देखनी चाहिए. तुमने कभी हॉकी लाइव देखी है?
0: नहीं, मैंने कभी नहीं देखी है
1: लाइफ में.
0: नहीं, मैंने कभी नहीं देखी है.
1: मुझे मैंने, हाँ देखी है.
0: मतलब
1: मैंने
0: चक दे इंडिया में देखी है जितनी देखी है.
1: मैंने मतलब की देखी है बहुत लोकल लेवल पे मैंने देखी है.
0: अच्छा, ओके.
1: पंजाब में लोकल लेवल पे देखी है बट नॉट इंटरनेशनल लेवल. कोई ऐसा बड़ी गेम नहीं देखी है.
0: बट मैंने चक दे इंडिया में जो देखा है वो बहुत इंटरेस्टिंगली वो लोग ने फिल्म किया था. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट दैट वे.
1: या और चक दे इंडिया हम लोगों ने बहुत पसंद की थी. चक दे इंडिया लाइक पीपल लव्ड द मूवी, पीपल लव्ड द थीम. बट ये आपको अगर लाइव देखना है वो चक दे इंडिया वाली फीलिंग ना, यू शुड गो इन द स्टेडियम. यार
0: मेरे को ये देखना है कि जब इंडिया का मैच होता है तो वो चक दे इंडिया का गाना बजेगा क्या?
1: हो सकता है यहाँ पे बजे.
0: That's crazy.
1: Because यहाँ पे होता है ना
0: टीम था ना,
1: वो भी विमेन टीम. Exactly. It's gonna be the real Chak De India over there, guys. वो 70 मिनट में जो होने वाला है वो आपको वहाँ पे लाइव दिखाई देगा.
0: It will
1: be good to go and support the team.
0: मुझे लग रहा है केतन ने जाके वहाँ पे व्लॉग बनाना चाहिए.
1: ऐसा लगता है तुम्हें?
0: हाँ, उस केतन के व्लॉग्स बहुत बढ़िया होते हैं.
1: या वो होते तो बहुत बढ़िया है,
0: मुझे लगता है
1: बिजी बहुत बंदा है ना वो.
0: नहीं, उसको पूछना है वीकेंड पे. ये वीकेंड पे
1: कब है मैच?
0: FIH हॉकी नेशंस कप ये वीकेंड पे है.
2: क्या टाइमिंग क्या है?
1: सो इंडिया और मैं बताती हूँ वीकेंड की तुम बात कर रहे हो, रुजबे बताओ.
0: देखो
1: पहले मैं बताती हूँ
0: बेस्ट पार्ट क्या मालूम है क्या? वीकेंड फाइनल्स का पूरा पास मिल जाएगा तुम्हें जो आप
1: 19th को जर्मनी के अगेंस्ट है इंडिया का.
0: 19th को है वो?
1: 19th को है.
0: नहीं, वो तो फ्राइडे हो गया ना.
1: वो फ्राइडे है.
0: हाँ, वीकेंड का बताओ यार सैंडी, वो इम्पोर्टेंट है. पूरे वीकेंड जाना है, सैटरडे पूरा और संडे पूरा.
1: डिपेंड करता है कौन क्वालिफाई होता है. खैर, सो वीकेंड पे अभी क्वालिफाई के ऊपर डिपेंड करता है. 20 जून को है एक मैच.
0: 20 जून को बेसिकली 11 AM 20th जून. केतन,

0: रेडी ना? ये तो व्लॉग हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर,
1: नहीं,
0: मतलब
1: वो सर से पता नहीं चलेगा बाकियों को, सर नहीं हलाना है तुम्हें, हाँ या ना बोल रहा है,
0: वो भी इंडियन नॉट कर रहा है, वो ऐसे ऐसे
1: पता नहीं हाँ है कि ना है, वो नहीं हमें पता है
0: कि तुम हाँ समझो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा,
2: नहीं यार एक्सपीरियंस करने के लिए तो इट इज गुड यार, और ऑब्वियसली अगर मैं जा रहा हूँ तो व्लॉग तो बनेगा,
1: ये अच्छा जवाब था,
0: दैट्स गुड यार, तो नहीं बढ़िया, वीकेंड का पास भी मिल जाएगा, देखो पूरा एक वीकेंड का पास है and that is quite nice. देख semifinals को अगर जाना है, देखो सिर्फ semifinals, तो semifinal का पास आपको मिलेगा $32 में, adult,
2: right?
0: And if you go with a family, two adults and two children, तो $72 का पास मिलेगा.
1: Oh nice. Okay.
0: It's not bad. तो check out कीजिएगा आप भी.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: टिंसल टाउन में आपके लिए हम बॉलीवुड की खबर लेकर आते हैं और आज की जो बॉलीवुड की खबर है ये काफ़ी सैड खबर है वैसे देखा जाए तो क्योंकि एक बहुत ही क्लास मूवी रिलीज हुई मैं वापस आऊँगा और हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी रिव्यूज़ देखे इसके बारे में एंड टू जस्टिफाई वॉट वी आर सेइंग हम आज जा रहे भी है मूवी देखने के लिए
2: yes, और आज अनफॉर्चुनेटली इसकी लास्ट स्क्रीनिंग है न्यूजीलैंड में
1: It's so sad.
2: मतलब मेरे को ना ये चीज़ पे होता है रुजबे कि जनता हमेशा कहती है कि यार क्वालिटी मूवीज़ आनी चाहिए सिनेमा में हम तब जाएंगे यू नो इम्तियाज़ अली की मूवी हमें देखनी चाहिए सिनेमा में इस डायरेक्टर को लापता लेडीज़ आके गई नहीं देखी सोशल मीडिया पे या फिर ओटीटी पे सबने देखी तो देवर लाइक कि हाँ ये तो सिनेमा वाली मूवी थी चमकीला मूवी इम्तियाज़ अली की सीधा नेटफ्लिक्स पे आती है एवरीवन वाज लाइक कि ये तो सिनेमा में रिलीज़ होनी चाहिए थी बट देन जब मूवी ऐसी कोई सिनेमा में रिलीज होती है तब कोई जाता नहीं है
1: तब बोलते हैं कि चलो नेटफ्लिक्स पे ही देख लेंगे
2: एग्जैक्टली फिर कई लोग कहते हैं कि भाई यू नो मसाला मूवीज आजकल आती है मूवीज में सेंस होनी चाहिए थोड़ी तो फिर लोग नहीं जाते हैं अब मैंने कुछ रील्स देखी है वन पर्सन शोड द सिनेमा मतलब एम्प्टी सिनेमा
1: खाली
2: है
1: सिनेमा ना
2: खाली सिनेमा है एंड इज टॉकिंग अबाउट इट की आई लव द मूवी बट आई वंडर कि लोग आ क्यों नहीं रहे यहाँ तक जस्ट बिकॉज हिज मूवीज आर वेरी डिफरेंट हिज मूवीज आर डिफरेंट 100%
1: कैरेक्टर मतलब अलग है मैं ऑनेस्टली मैं आई वॉन्ट लाइक जब भी हमने ट्रेलर देखा तभी मैंने हमने सोच लिया था कि यार
2: देखनी है
1: मूवी तो देखनी है एंड आई वाज होपिंग कि अगले हफ्ते तक हमको मिले मौका देखने के लिए बट बिकॉज देयर नो शोज we are going tonight
2: because आज last screening दिखा रहा है हम जो भी listing check कर रहे हैं तो we are going today हम तो सेंट लुक्स में जा रहे हैं बाय द वे वहां पे
1: सेंट लुक्स
2: शो के बाद तो वहां पे हम जा रहे हैं बट गाइज यू नो दिस इज अ काइंड ऑफ रियलिटी चेक या तो बोलना नहीं चाहिए कि यू नो कि ये मसाला मूवीज या क्या ट्रेलर आया है ऐसी मूवीज कैसे चल जाती है वो सारी मूवीज क्योंकि अगर आप बाकी मूवीज चलाने के लिए जा रहे हो तो जिन मूवीज के बारे में बात करते हो तो उसके लिए भी जाना चाहिए नहीं तो इन डायरेक्टर्स को इन फिल्म मेकर्स को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा और ऐसी मूवीज बनाने के लिए
1: हाँ और फिर मेनली फिर वो दूसरे टाइप की मूवीज ही बनने लगेगी
2: अब या धमाल 4 ना या भूत बंगला या आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनी मूवी बट आई एम सेइंग कि यू नो या तो एक पर्टिकुलर जॉनर की मूवीज ही फिर आती रहेंगी
1: या दैट्स राइट
2: देन यू गोना मिस वन टाइप ऑफ सिनेमा
1: हाय स्वागत है आपका
3: Hi, Rusbe and Sandy, and thank you so much for saying कि आज last है क्योंकि मैं भी weekend में ही जाके देखने वाली थी और अगर मैं book करती तो time time fixed हो जाती मेरे साथ
2: वही ना तो अम्मी ने हमने book करनी थी and we just saw कि आज के बाद कोई screening ही नहीं है movie की
1: yeah it's very sad
3: वही बात है कि we don't deserve good things हम ऐसे feedback तो देते रहते हैं anything in life की ये होना चाहिए वो होना चाहिए and then जब हम लोग करते हैं तो हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं फिर वे बाद में हाँ वो ठीक ही था वो अच्छा ही था बाद में सपोर्ट करने का क्या फायदा पहले करो अभी जाके ना
2: एक बात बताओ ये मतलब मूवी के चक्कर में कुछ और भी निकल रहा है क्या
3: नहीं नहीं मूवी में
2: ऐसा लगा मुझे
3: देखने जाऊंगी
2: ऐसा लगा मुझे कि ऐसा खुल के कुछ वेंट आउट हो रहा है कुछ फीलिंग है क्या आज वैसे भी हम कह रहे हैं लोगों को इट्स अ मिड वीक राइट
1: हमने आपका नाम भी नहीं लिया
2: करना, हमने नाम भी नहीं लिया अभी तक
1: तो आप रेंट करो
2: अगर कुछ रेंट करना है तो खुल के रेंट कर सकते हो आप मुझे पता है आपका नाम आशिका है आशिका यू कैन रेंट हाँ
3: नहीं आपने इतना इमोशनल कर दिया इम्तियाज अली को लेके बिकॉज आई रिमेम्बर चमकीला टाइम भी वही होता है सच अ नाइस मूवी राइट सो वी शुड सपोर्ट पीपल
2: 100%
1: इम्तियाज अली की अच्छी मूवीज होती है यार ऑनेस्टली मतलब एंड आई थिंक एक मूवी उसकी बहुत ही फालतू निकली है लव आजकल
2: टू
1: हां वही
2: दैट वाज बिकॉज ऑफ द सारा अली खान
1: ये तो बहुत गलत बात
2: गलत नहीं है इट्स अ फैक्ट बिकॉज सारा अली खान ने वो कहानी पूरी गड़बड़ कर दी इट्स आल्सो अबाउट द एक्टर्स ना
1: अच्छा
3: क्या पता उसका वो बेस्ट वर्क हो इमेजिन कि वो कितने शॉट्स दे रही होगी तो
2: सी आशिका ने क्या बोला था सपोर्ट पीपल
1: तो अच्छा बहुत ही कुछ तो भी हुआ है भाई पंगा हुआ है सॉलिड इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी
2: क्या हुआ है ना
1: कुछ तो हुआ है आशिका के साथ
2: मैसेज इज रियली क्लियर
3: ट्राई
2: टू गो टूडे ओके
3: ओके अभी आप उनके मूवी सेल्स पर आने वाले मुझे लगता है
2: ना यार मेरे को आज हम इम्तियाज अली का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं बिटवीन 6 to 7 सो फीलिंग मोर बैड अबाउट इट
1: कली था इम्तियाज अली का बर्थडे
2: बट देन कल फिर अमाल मलिक का भी बर्थडे था तो
1: अमाल मलिक विल टेक प्रेसिडेंस ओवर इम्तियाज अली ऑफ कोर्स
2: सो वी celebrated that first
1: yeah 100% yeah, yeah. that is priority kal humne zikr bhi nahi kiya ki imtiaz ali ka birthday hai because it was amal's birthday
2: yeah anyway
1: samajh rahe ho na aap aashika
3: main bahut acche se sab kuch samajh jaati hu isliye main wapas aaungi
1: चलो अभी आपको गाने सुनाते हैं और फिर 5 बजे के बाद आज आपके साथ हम ये खेलने वाले हैं और आज मुझे लग रहा है इसमें अलग ही मजा आएगा सिचुएशनशिप में हम आपको एक सिचुएशन देंगे और आपको बताना है हमें कॉल करके कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: Spend and win at Silverdale.
3: Mainly clear tonight for Auckland. Light winds, a low of 10 degrees. We haven't had official confirmation on it yet, but there looks to be a crash on the northern. It's sitting around Redvale and northbound. Traffic's pretty much at a standstill from before Albany. It's taking about an hour and 10 to get to Silverdale. The rest of the motorway network looking busy as usual. It's an hour to Monaco. If you can update us further on that incident, 0800 44 33 22.
2: Spend $50 in Silverdale to enter to win an SUV. Silverdalebusiness.co.nz. T's and C's apply.
4: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
5: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
6: Dragon!
7: The global phenomenon returns.
8: You are the Queen of Dragons. You have absolute power within your grasp.
9: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
7: Watch the series the world will be talking about.
10: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
8: This is the moment you become queen.
7: HBO original House of the Dragon streams June 22, only on HBO Max.
11: Happy is finding the sun and not moving all day long. Animates, we make happy happen.
12: At Kogan Mobile, we want to help Kiwis experience mobile Aussie style. That doesn't mean saying, yeah, nah, hey, go on, flyman galah. It means texting emojis without being charged 50 cents and calling your mum without having to call your accountant first. Right now, get a 180GB yearly prepay plan for just $240. That's 15 gigs of data per month for less than $21. So say you beauty to true Aussie value from Kogan Mobile. T's and C's apply.
13: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas mera focus hai.
14: Achha,
13: batao, tuhanda focus, saada kuch nahi.
14: Mrs. Singh.
15: Arre pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
16: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit Focus Kitchen.
17: Nissan Big Deals sirf 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8 backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
0: Hum, time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
18: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. Veteran activist John Minto has secured $10,000 in compensation for his treatment by police. It follows an independent police conduct authority ruling that he was unlawfully arrested and pepper sprayed at a protest in 2024. Minto says the ruling was instrumental to his payout.
19: They rejected the police account of what happened. They accepted my account and they used video evidence to do that.
18: Oil prices have dropped for a fifth consecutive trading session. Brent crude is currently hovering around $78 a barrel. The positivity remains despite few details of the peace deal between Iran and the US being made public. Police have issued a plea for information about the disappearance of Christchurch woman Rowena Walker. It's now 10 months since Miss Walker went missing and today is her 40th birthday. Detective Senior Sergeant Joe Carolyn says it's unlikely she's still alive.
20: For somebody to have no presence in the world for what is now 10 months is just not natural. I would venture it's almost impossible to achieve.
18: An all-white supporter has gone viral after pulling a sickie to watch yesterday's Iran game, only to be outed on live TV. Eli Pyle confirmed he still has a job, despite his boss seeing the footage.
21: He's in decent spirits about it. He's a sports fan as well, so I think he understands the lengths we go to support our teams, to be honest.
18: The Hurricanes and Chiefs haven't departed much from their dominant semi-final lineups for Saturday's Super Rugby Pacific Grand Final. A couple of changes to both sides. Football updates brought to you by Hisense. A standing ovation for Argentine superstar Lionel Messi after he scored a dazzling hat-trick in a 3-0 World Cup win over Algeria. And the Black Caps in England start the second cricket test this evening from 10 our time at the Oval.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई branch नहीं है.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: Feels like 13 degrees. Overnight temperature is going to be as low as 9 degrees tonight. Thode bahut showers ho sakte hai, isolated showers. Southwesterly is dying out this evening. And sunset hoga 5:12 pe. Kal ka din bhi similar aaj ke jaisa hi hone wala hai. With a high of 16, kal ka overnight rahega as low as 10.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusby.
22: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
3: 5:02 और आप सुन रहे हैं ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे. पावर ड्राइव एट 5 में आपका स्वागत है. हाय सैंडी.
23: हाय रुज़बे, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग. ऑफ कोर्स पावर ड्राइव एट 5 फिलहाल आप यहां पे सुन रहे हैं. एंड आज आपके लिए हम सिचुएशन शेप भी लेके आएंगे. एंड सिचुएशन आपको यहाँ पे रुज़बे प्रोवाइड करने वाला है और साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट का मौका भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है. जैसे कि एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका अभी आपको मिल रहा है. करण औजला, जो कि ग्लोबल सेंसेशन है, वो सुपर सिटी में पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके आ रहे हैं. सो करण औजला का लास्ट शो जो हमने अटेंड किया था, इट वॉज सुपर्ब, सोल्ड आउट स्पार्क करीना में. वंस अगेन स्पार्क करीना में ही वो स्टेज लगाने वाले हैं 25 अगस्त को. सो अपने यहाँ चांस ना मिस कीजिएगा, बिकॉज आज से जो सेल है, प्री सेल शुरू हो चुकी है. यू कैन गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ. livenation.co.nz वेबसाइट पे आप जा सकते हैं. hum.rova.nz पे अगर आप जाते हैं, वहाँ पे भी जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड नीचे आपको आर्टिकल दिखाई देगा टू गेट द लिंक एज वेल. सो दोनों जगह पे आपको लिंक मिल जाएगा. करण औजला के शो के लिए टिकट जीतने का मौका भी आपको यहाँ पे मिल रहा है. 2 चांसेस है आपके पास. गो टू अवर फेसबुक पेज, वहाँ पे पिंड पोस्ट है करण औजला की. कमेंट सेक्शन में टैग योर फ्रेंड एंड लाइक द पोस्ट, अच्छे से कैप्शन पढ़ना एंड पार्टिसिपेट ओवर देयर. यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करने का आपको जो मौका है ये मिलने वाला है. KA, दैट इज करण औजला, KA स्पेस आपको यहाँ पे लिख के भेजना है कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग ऑफ करण औजला. वन सॉन्ग ऑफ करण औजला यू जस्ट लव, यू कैन जस्ट प्ले ऑन द लूप.
3: जी, कौन सा ऐसा गाना है जो आपका फेवरेट करण औजला गाना है? मैंने करण औजला के रियल फैंस देखे जो बच्चे हैं, जिनको करण औजला के कोई भी गाना बोल लो उसके सारे लिरिक्स पता है.
23: फुल गाते हैं,
3: फुल गाना गा सकते हैं,
23: फुल गाना गा सकते हैं.
3: सो आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
23: के ए कीवर्ड के साथ आपको लिख के भेजना है. बहुत सारे गाने हैं, लाइक सुपर्ब गाने हैं उसके.
3: अब तक देखो टिकट्स की लाइन ओपन भी नहीं हुई है, बट आप यहाँ पे जीत सकते हो एक डबल पास. सो या गेट इन देयर क्विकली. KA लिखकर भेजिए और आप कौन सा फेवरेट गाना है ऑन 5599. थोड़ी देर में आपके लिए सिचुएशनशिप आज खेलेंगे आपके साथ, जहाँ पे आपको एक सिचुएशन देंगे और आपको बताना है कि वो सिचुएशन में आप क्या करोगे.
23: एंड फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अपडेट्स भी आपको यहाँ पे दे देते हैं.
3: अभी देंगे?
23: या अभी, बिकॉज हाफ टाइम हुआ है. सो
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
23: ऑस्ट्रिया वर्सेज जॉर्डन के बीच में मैच है, जहाँ पे ऑस्ट्रिया इस समय लीड कर रहा है 1-0 के साथ हाफ टाइम में. इससे पहले अर्जेंटीना अल्जीरिया के बीच में जो मैच था, अर्जेंटीना की जीत हुई 3-0 के साथ. मेसी की जीत हुई 3-0 के साथ. ही डिड द हैट्रिक ओवर देयर. कल पोर्चुगल के बीच में, कॉन्गो के बीच में मैच होने वाला है. इंग्लैंड क्रोशिया के बीच में मैच भी होने वाला है.

0: Situationship.
1: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hit, Situationship. में हम आपके लिए एक सिचुएशन लेकर आते हैं और आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे.
2: Yeah.
1: आज का जो सिचुएशन है वो है अराउंड एक, मैंने अभी न्यूज सुन रहा था मैं. तो वहाँ पे अपेरेंटली एक बंदे ने सिक लीव ली टू वॉच द फीफा वर्ल्ड कप मैच, न्यूजीलैंड का मैच. एंड वो पकड़ा गया, कैसे तो भी उसका वीडियो बाहर दिख गया कि ये मैच देख रहा था, और उसके बॉस को पता चल गया, लेकिन बॉस ने उसको फायर नहीं किया. अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इफ यू आर द बॉस और आपके अंदर एक आपके अंडर एम्प्लॉई है जिसने सिक लीव ली है, गलत सिक लीव ली है, जस्ट सो दैट दे कैन वॉच देयर फेवरेट स्पोर्ट, वर्ल्ड कप पकड़ लो,
2: वर्ल्ड कप या कहीं पे भी है, और आप देख लेते हो उनको,
1: और आपने उनको पकड़ लिया.
2: या
1: How would you react? What would you do in this situation?
2: तो बताइए कॉल करके 0800 00 हम पर. आप ना यहाँ पे बॉस की सिचुएशन में है, रिमेम्बर दिस.
1: आप बॉस हो,
2: आपकी सिचुएशन बॉस की है. सो इस बॉस की सिचुएशन में आप क्या करोगे?
1: आप बॉस हो या फिर आप बिजनेस ओनर हो या जो भी, यू नो, आपका एम्प्लॉई है बेसिकली. व्हाट वुड यू डू इन दिस सिनेरियो? 0800 00 4866 इज द नंबर, यू कैन गिव अस अ कॉल ओवर हियर.
2: जिसने मैसेज किया है, दिस इज गोलमाल मूवी स्टोरी ऑफ अमोल पालेकर. या एक्चुअली में सो गोलमाल सीरीज पता है ना, ये जो मूवी है, जो ओरिजिनल गोलमाल है जिसमें अमोल पालेकर है, उसमें ये सिचुएशन होती है.
1: अच्छा, उसमें ये सिचुएशन होती है.
2: और वो बाद में बोलता है मेरा जुड़वा भाई था.
1: अच्छा.
2: As far as I remember, बाकी मेरे को याद नहीं है वो. और फिर मेरे को लगता है वहां से फिर कहानी शुरू हो जाती है कंफ्यूजन की. इट्स अ क्लासिक मूवी. देन ही हैज टू एक्ट एवरी टाइम कि मेरा हम दो भाई हैं.
1: ओह, दिस इज क्रेजी.
2: उस सिचुएशन के बाद, या इट वेंट क्रेजी.
1: दैट्स गुड. एनीवे, आपसे बात करते हैं. हाय, हेलो, सुन रहा है ना?
2: आपकी आवाज नहीं आ रही है. जिसने कॉल किया है आपको, हमारी आवाज अगर आ रही है तो आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही.
1: हाँ,
2: है
1: आपकी अभी आएगी आवाज. हाय.
3: हाय,
1: बोलिए बोलिए,
2: बताइए.
3: मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ ये हुआ था.
1: हाँ.
3: उसने अपने एम्प्लॉय को तो ये बोला कि एक चांस दे रहा हूँ, अगली बार सच बोल देना, मैं भी साथ में देखने चलूंगा.
2: ओके, वाओ.
1: लेकिन आपके हस्बैंड ने पकड़ा कैसे?
3: वो एक्चुअली हुआ क्योंकि कई बार प्लेसेस पे क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना, अगर आप दो तीन दिन
1: तीन दिन के बाद. हाँ,
3: तीन दिन. हाँ, तो वो कंपनी में मैनेजर है, तो उसको एज अ मैनेजर उसका वो बनता है, लाइक इट्स अ ड्यूटी कि आप कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन सारी जो भी हुई है. तो उसने सर्टिफिकेट मांगा और वो ऑब्वियसली दे नहीं पाया. तो उसने फिर डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई ऐसा सीन था? तो वो एम्प्लॉय कहता है हाँ था. तो बस कहता है अगली बारी मेरे को भी लेके चलना.
1: क्या बात है,
3: इस बारी छोड़ रहा हूँ. सच बोलो, मैं सारी लीव अप्रूव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर सच बोल के जाओ.
2: बी ऑनेस्ट.
3: और कोई बात नहीं.
1: That's very good, यार. मुझे लग रहा है ट्रस्ट जीत.
2: That's so cool, यार.
1: ट्रस्ट जीत लिया उस एम्प्लॉई का ना आपके पति ने.
3: बिल्कुल.
1: नाइस.
2: सही है, सही है.
1: थैंक यू. आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम नेहा है.
1: नेहा. हाँ, आपका पति है तो क्या परफेक्ट ही है, आप बोल रहे हो.
3: Exactly.
2: Yes, sir, yeah.
1: Very nice. Yeah.
2: Thank you, Neha.
1: Thanks. Yeah.
2: Bye.
1: एक रूपल का मैसेज आया, वार्निंग एंड वर्क 1.5 डेज एक्स्ट्रा.
2: ये देखो रूपल ने की प्योर बॉस वाली बात है.
1: हाँ, ठीक है, चल वार्निंग, लेकिन एक्स्ट्रा काम कर.
2: एक्स्ट्रा काम.
1: I will happily take it off their annual leave with a big smile and have a further conversation on how the game was. Okay.
2: बड़े स्ट्रिक्ट लोग हैं यार हमारे.
1: बहुत स्ट्रिक्ट है यार. क्या बात है.
2: या मे बी हम एम्प्लॉयर की सिचुएशन में नहीं है ना रुजबे.
1: या दैट्स राइट. हम हमेशा एम्प्लॉय रहे हैं ना.
2: वही ना. तो इसलिए शायद वो शूज हम नहीं समझ पा रहे हैं.
1: हम हमेशा गरीब ही रहे हैं.
2: नहीं, मैं अमीर हूँ.
1: हाँ, तू अमीर है. सॉरी, आप अमीर हो. 0800 00 4866 आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे. अगर आपने आपके एम्प्लॉय को या आपके नीचे जो काम करते हैं उनको आपने पकड़ लिया रंगे हाथ
2: सिक लीव पे मैच देखते हुए
1: या स्पोर्ट्स
2: अटेंड करते हुए, ऐसा
1: स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करते हुए,
2: तुमने कभी ऐसा, तुम्हारे साथ कभी हुआ है, तुम्हें किसी के बारे में पता है कि उसने सिक लीव ली है, बट देन यू सी द पर्सन पार्टिंग समवेयर, ऐसा हुआ है क्या?
1: हाँ, हुआ है। कितनी बार, आपको कितनी बार देखा है मैंने।
2: अच्छा।
1: मॉल में घूमते हुए।
2: वेरी फनी। या मेरे साथ तो हुआ है।
1: हाँ, हुआ है। मेरे को लगता है नॉर्मल है, लेकिन जब मैं मैनेजर भी था और मेरे अंदर लोग थे तो मेरा भी बहुत ये था कि भाई हाँ अगर लिया है ले भाई, हक है तेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: या या
1: जो हक है तुम्हारा लेना है लो यार, मतलब मेंटल डे के नाम पे भी ले सकते
2: हैं ना कि पब्लिश कर देते हैं। मतलब मैं एक टिप देना चाहूंगी, सिक लीव लिया है तो रील मत डालो।
1: हाँ, उसी दिन रील मत डालो।
2: उसी दिन ना पार्टी करने की रील डालोगे तो पकड़े जाओगे ना।
1: जी हाय, आपका भी स्वागत है।
0: हाय, हाउ आर यू?
1: वेरी गुड यार, हाउ आर यू?
2: जी बताइए।
1: किसके साथ हुआ था आपके?
0: मैंने जॉइन किया तो और फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, तो लेट नाइट मैच, इट वाज फाइनल। तो दूसरे दिन वी वर लाइक 9 बजे अभी तक आया नहीं, तो देन वी एक्चुअली वो आया बट लेट, तो देन वी आस्क लाइक उसने मुझे तो बोल दिया बिकॉज़ आई वाज इन द नेक्स्ट प्लेन, तो उसने तो मुझे नहीं पता था कि वो मैं देख रहा था, मैं भी देख रहा था क्योंकि उसी रात। तो मैनेजर ने मुझे पूछा भाई क्या था, फिर मैंने बोला कि नहीं, हालांकि वो भी वो जेन्युइन था, मेरे मैनेजर ने उसको पूछा तो उसने इनोसेंट वे में बोल दिया कि रात को मैं मैच देख रहा था तो जिसके मैं आया ना, आ नहीं पाया।
1: हाँ।
0: तो कुछ नहीं, उसको बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा है तो फिर सिकनी या जो भी लीव लेना है तो एडवांस में ले, डोंट हैव एनी इश्यू और प्रॉब्लम, वही तो नहीं आ रहा है।
2: ओके,
1: ओह नाइस यार, That's very cool, yeah?
2: Yeah, interesting.
1: क्योंकि हमें भी actually, आपका नाम क्या है? Sorry, आपका नाम मिस हो गया।
0: क्रुणाल।
1: जी, thank you, Krunal, yeah. Thanks
2: for
1: calling.
2: Thank you,
1: Krunal. यहाँ पे message आया है, इन्हें कहा है, Hi, Jane here. I had a manager once who used to allow us to take sick leaves for such things, and she used to say that sick leave should be called mental health day leave. That's a good one, yaar. I support this because honestly, my mental health improves when I watch my favorite sport. And it's good for your mental health, na?
2: 100%, you're watching sports. Yeah. Well-being leave होती है ना, तो मतलब maybe वो आप कई companies में होती है.
1: Yeah, yeah.
2: तो maybe वो आप use कर सकते हो.
1: नहीं, ऐसे मत ये सब बोलो सैंडी।
2: क्यों?
1: ऐसा अगर आपके यहाँ पे चलता है तो कहने, तो कल को वो लीव लेंगे फिर उनके जॉब के ऊपर कुछ मैटर हो गया।
2: ले सकते ना कि वेलबींग लीव लेनी है मुझे, वो तो एडवांस में बोल सकते हैं।
1: मैं ऐसे सैंडी का नाम लेना अगर कुछ होता है तो, मैंने नहीं ऐसा कुछ बोला है।
2: यार,
1: रिस्क काय को लेने का फालतू में।
4: हाय,
1: वेरी गुड वेरी गुड, आप बताइए कैसे हो आप?
4: बढ़िया है एकदम। एक बार क्या हुआ कि मैं, मुझको फीवर था, मैंने अपने मैनेजर को टेक्स्ट किया कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मुझे शायद आई थिंक वन डे का या टू डेज का ऑफ नहीं होगा ऐसा, तो बोलता है एक काम करो, फोर डेज ऑफ, कम बैक नेक्स्ट वीक।
1: अच्छा,
4: तो मतलब वो दो तीन, ऐसा नहीं एक बार हुआ है, दो तीन बार। तो जितनी बार भी सिक लीव मांगा है एक दिन का, उसी में फोर डेज का सिक लीव दिया है।
1: फोर डेज का सिक लीव दिया सीधा?
4: हाँ, वो ना कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट लेके आना, फोर डेज ऐड करो।
1: अरे बट सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा हमेशा यार,
4: डॉक्टर अपना जिंदा हुआ।
2: अरे लेकिन इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट का? अच्छा हाँ, वैसे
1: अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके, डू दिस एट योर ओन रिस्क। अच्छा, आपका सही है,
2: अपॉइंटमेंट तो मिलती नहीं है, उतने में बंदा ठीक हो जाता है।
1: हाँ, ये सही है।
4: लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैंने दो दिन का, मैं था आउट ऑफ यूक्रेन, मैंने दो दिन का सिक्की कॉल किया।
1: हाँ,
4: देन क्या हुआ, मेरी फ्लाइट थी नाइट की, सुबह मुझे काम पे आना था बट मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई नाइट में। अभी आपको सर रिसेंटली याद होगा कि वो एयरबस 320 में पूरा ग्लोबली जो हुआ था इशू,
1: राइट, बुकिंग सिस्टम
4: कैंसिल हो गई। तो अब मैं क्या करूं, मेरे साथ दो दिन ऑलरेडी सिक्की कॉल कर दी। तो मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, मैंने बोला कि मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मेरा कोविड टेस्ट किया, आई एम कोविड पॉजिटिव, तो आपको क्या लगता है कि मुझे आना चाहिए? बोलता नहीं नहीं दो दिन और रेस्ट करो।
1: ये आपने बाहर से कॉल किया मतलब? भाई नेक्स्ट लेवल झोलर हो आप तो भाई,
2: सही है टोपी पहनाने में।
1: नाइस नाइस गुड यार। लेकिन वो मैनेजर भी सपोर्टिव है ना इनका?
4: बहुत सपोर्टिव है, बहुत
1: या वो फर्क पड़ता है बहुत यार उससे। नहीं बढ़िया, थैंक यू सो मच यार शेयर करने के लिए।
2: थैंक यू।

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Hum, accurate traffic.
4: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
5: Mainly clear tonight for Auckland. Light winds, a low of 10 degrees. We haven't had official confirmation on it yet, but there looks to be a crash on the northern. It's sitting around Redvale and northbound. Traffic's pretty much at a standstill from before Albany. It's taking about an hour and 10 to get to Silverdale. The rest of the motorway network looking busy as usual. It's an hour to Monaco. If you can update us further on that incident, 0800 44 3322.
4: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
6: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन

0: listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए हम एक से गाने यहाँ पे लेकर आते हैं और प्लस इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह. 5:29:51 हो गए हैं अभी. उसका मतलब ये है कि अभी 5:30 हो जाएंगे बहुत जल्दी सैंडी. एंड आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आने वाले हैं
1: इम्तियाज अली स्पेशल. एंड वी आर गोइंग एंड सेलिब्रेटिंग इम्तियाज अली टुडे.
0: जी हम उसकी मूवी देखने वाले हैं जो अभी रिलीज हुई है सिनेमाज में. मैं वापस आऊंगा.
1: यस. और इसके रिव्यूज मैंने अच्छे खासे पढ़े हैं. इट्स अ नाइस मूवी एक्चुअली, बट अनफॉर्चुनेटली आज उसकी लास्ट स्क्रीनिंग है.
0: बट कोई बात नहीं, हम आज जाके एंजॉय करेंगे. अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो सेंट लुक समझा रहे शो के बाद 7 बजे के बाद हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे 7:15 बजे. एंड we'll watch the movie together.
1: Yeah, तो आपको आना हुआ तो वहाँ पे ज़रूर आइएगा. बट अभी फॉर नाउ आपको एक और इवेंट के बारे में बता देती हूँ जो इवेंट्स हमारे सुपर सिटी में हो रहे हैं रुजबे. जैसे कि द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जहाँ पे ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर का शो लेके आ रहे हैं. एंड ये ऑकलैंड में पहली बार आने वाले हैं. 18 जुलाई को इनका शो होगा विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में.
0: bookmyevent.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे और आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है. अगर आपको लगता है कि मैं अभी नहीं पे कर सकता हूँ लेकिन उसके बाद में आपको पे करना है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बट या द ग्रेट कॉमेडी नाइट, कृष्ण अभिषेक एंड राजीव ठाकुर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑकलैंड. बहुत ही मज़ेदार ये शो होने वाला है. तो विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर 18 जुलाई, आप ज़रूर पहुँचना और bookmyevent.co.nz से जाके आप टिकट्स भी ले लेना इसके लिए. थोड़ी देर में एक प्ले हो रहा है ऑकलैंड में, उसके बाद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे. बट अभी के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Power Drive at 5 आपके लिए जा रही है अभी और आपको बता दे about this धासु play जो काफी emotional काफी beautiful play बना है inspired by Rabindranath Tagore's Kabuliwala. इंडियनिंग थिएटर लेकर आ रहे हैं आपके लिए बलून डॉग और बलून डॉग ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर थिएट्रिकल मैजिक है जहाँ पे आपको लाइव ओरिजिनल म्यूज़िक ह्यूमर है होगा डांस होगा बहुत सारी चीज़ है एंड इट्स रिवीलिंग बोथ रेजिलियंस एंड ह्यूमैनिटी तो बलून डॉग इज़ अ पावरफुल सेलिब्रेशन ऑफ करेज कनेक्शन एंड सींग वन अनदर बियॉन्ड कल्चर क्लास एंड सर्कमस्टेंस मुझे लग रहा है एक ऐसी चीज़ जिसकी इस वर्ल्ड में सोसाइटी में हम सभी को बहुत ज़रूरत है
1: 100% एंड तुम्हें पता है ये जो स्टोरी है रुस्बे काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी 1892 में एंड इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी है बंगाली मूवी बनी है काबुली वाला सेम नेम देन हिंदी मूवी बनी है 1961 में देन बहुत सारी और सीरीज़ भी बनी है इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे है स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर की वो जो है उसमें भी काबुली वाला है सो इट्स बेसिकली अबाउट फ्रूट सेलर जो कि काबुल से आता है कोलकाता को विज़िट करता है वहाँ पे ड्राई फ्रूट सेल करता है और वहाँ पे उसकी दोस्ती होती है 5 साल की बच्ची के साथ जिसको अपनी डॉटर की याद दिलाती है बैक होम इन अफगानिस्तान तो दोनों के बीच में ऐसा फ्रेंडशिप होती है तो उसी चीज़ को लेके इन्होंने ये कहानी बनाई है जहाँ पे द ट्विस्ट इज की ऑकलैंड में माइग्रेंट है
0: ऑकलैंड का सेटअप है बेसिकली
1: ऑकलैंड का सेटअप
0: सिमिलर स्टोरी बट ऑकलैंड के बेस पे सेटअप है एंड सम रियली गुड परफॉर्मेंसेस क्योंकि जो एक्टर्स है इसमें काफी काफी बढ़िया परफॉर्मर्स है वो सो या एंड ऑल्सो जिन्होंने ये लिखा है जेकब राजन और जस्टिन लुइस जेकब राजन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट और इन्होंने काफी बढ़िया प्लेस किए हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार भी मिला है
1: मैंने इनका लास्ट प्ले देखा था गुरुज ऑफ चाय अमेजिंग और एक्चुअली में वो आता है ना टुडे इन हिस्ट्री सोशल मीडिया पे तो कल या परसों मेरी हिस्ट्री में आया था वो
0: अच्छा
1: गुरुज ऑफ चाय
0: लास्ट ईयर था ये
1: लास्ट ईयर या उससे पहले था मेरे को लगता
0: मैंने, है मैंने कई साल पहले उनका एक देखा था जो वन मैन प्ले उन्होंने किया था
1: गुरुज ऑफ चाय वाज आल्सो
0: वन मैन प्ले था वो भी ना दैट वाज क्रेजी ये मैंने जो देखा था वो था पैराडाइज आइसक्रीम्स एंड दैट वॉज और मेरे को वो टाइम पे पता चला कि वल्चर्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए द स्टोरी वॉज अराउंड हाउ वल्चर्स गॉट एक्सटिंक्ट ओवर नाइट एंड इट वॉज क्रेजी यार लाइक मैं लिटरली आज भी मुझे याद है वो प्ले लाइक इतना ब्यूटिफुल और उसका मैसेज इतने ब्यूटिफुली उसको कन्वे किया था एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी आई एम सुपर एक्साइटेड एक्चुअली टू वॉच बलून डॉग एंड आई एम गोइंग टू गो एंड वॉच इट दिस वीक बट या यू शुड ऑल्सो चेक इट आउट आपको क्यू थिएटर में ये शो हो रहा है फ्रॉम 3rd से लेकर 20th June सो 20th June को लास्ट शो होने वाला है तो आपके पास बस अभी कुछ ही दिन बाकी है टुमारो डे आफ्टर एंड डे आफ्टर
1: या सो कुछ 3 दिन बाकी है इस प्ले को जाके इंजॉय करने के लिए यू नो यू कैन डू अ गेट टुगेदर अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं आप एक्चुअली में यू कैन एंजॉय द प्ले यू कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ गेट टुगेदर्स एंड टीम बॉन्डिंग एज वेल ना
0: या iticket.co.nz पे आपको ये ब्यूटीफुल प्ले का लिंक मिल जाएगा और आप टिकट्स वहाँ पे जाके ले सकते हैं iticket.co.nz बट या इट्स अ ग्रेट थिंग टू एक्चुअली इवन डू लाइक अ डेट नाइट काइंड ऑफ अ थिंग विद यू नो योर पार्टनर और इवन विद फ्रेंड्स
1: फॉर दैट मैटर
0: सो या डू एंजॉय बलून डॉग

0: accurate traffic.
1: Spend and win at Silverdale.
2: Mainly clear for Auckland. Light winds are low of 10 degrees on the southwestern at the moment, and it's crawling George Bolt both ways to Lambie Drive. Away from the airport, expect a lot of delays. If you're out of town, Constellation Drive on the northern, 35 minutes. It's heavy town to Esmond Road and builds again from Albany. It's about an hour to Silverdale. And on the southern, 55 to Monaco, heavy to Penrose, slow to Monaco.
1: Spend $50 in Silverdale to enter to win an SUV. Silverdalebusiness.co.nz. T's and C's apply.
3: Professional Financials has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
3: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09 846 9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: At Bunnings Trade, we've got your next build covered from foundation to finish. With our estimating and takeoff service, our team provides costings and calculated quantities, then partner with local suppliers to keep you covered throughout your build. Call us on 0800 134 872. Bunnings Trade.
6: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
7: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Emergency services are at the scene of a single vehicle crash on a rural road south of Tokoroa in the North Island. One person suffered serious injuries in the accident on Cody Road at around 3:40 this afternoon. Police say motorists should avoid the area. A 23-year-old man has appeared in court charged with murder after a death in central Auckland. Police were called to Wellesley Street East just before 7 last night. A critically injured man died on arrival at hospital. The accused was remanded in custody and will reappear on July the 1st. The Primary Teachers Union has called for caution around a new AI assessment tool in schools. The NZEI is concerned the Student Monitoring Assessment and Reporting Tool, or SMART, is known to have awarded marks based on word count, not quality. But the Education Ministry says the system isn't built to give final marks, only suggest them to teachers. And a Bay of Plenty RSA is urging people to check memorial sites and graves of loved ones following recent plaque thefts. Three bronze plaques have again been stolen from Whakatane's Mitchell Park. Local RSA President Victor Harpe fears it could be happening elsewhere.
11: It is desperation, it is disappointing. Just a warning to our communities to go out and check. It may not be the first time for others also.
10: To sport, two changes each for the Hurricanes and Chiefs for Saturday's Super Rugby Pacific Grand Final. They are mostly forced by injury. After their dominant semi-final wins, neither side was expected to depart too much from those lineups. And to football updates brought to you by Hisense at the World Cup. Comfortable wins today for France, Norway and Argentina. Austria leads Jordan 2-1. It's close to full time.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
12: हम परशोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
13: सूचित किया जाता है ज्योति रचना और परमीत की माँ एलाइट सिनेमा लंबासा फीजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी रेवा पटेल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार थर्सडे 18 जून को दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0219032555 पर कॉल कर सकते हैं ज्योति रचना और प्रमित की माँ एलीट सिनेमा लंबासा फीजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी रेवा पटेल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार थर्सडे 18 जून को 3 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0219032555 पर कॉल कर सकते हैं सूचित किया जाता है लोथोका फीजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की मां सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार फ्राइडे 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02106475200 पर कॉल कर सकते हैं। लोतोका के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की माँ सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार फ्राइडे 19 जून को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02106475200 पर कॉल कर सकते हैं। भूरा जो एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट मिस्टर जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहिनीश एंड रोविन जोखन की माँ हॉर्टन स्ट्रीट सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्कल की कमलावती जोखन कियोला की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप 21 जून को 3 बजे डेविस फ्यूनरल केयर 400 डोमिनियन रोड जा सकते हैं और अंतिम संस्कार बाद में फीजी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 02233268 पर कॉल कर सकते हैं। भूरा जो एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट मिस्टर जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहिनीश एंड रोविन जोखन की माँ हॉर्टन स्ट्रीट सुवा फीजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्कल की कमलावती जोखन कियोला की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप 21 जून को 3 बजे डेविस फ्यूनरल केयर 400 डोमिनियन रोड जा सकते हैं और अंतिम संस्कार बाद में फीजी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 02233268 पर कॉल कर सकते हैं।
12: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
9: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
0: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
9: हम प्लेइंग बॉलीवुड।

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now. Let's go.
1: 3, 2, 1. Trend makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
3: छह बज चुके हैं एंड ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इम्तियाज अली को.
4: यस, यस्टरडे अमिताभ इम्तियाज अली का बर्थडे था जो कि या कह सकते हैं अमिताभ बच्चन है डायरेक्टर्स के. तो अपने आप को डे ड्रीमर कहते हैं वो, कि वो कहते हैं कि ना मैं ना डे ड्रीमर हूँ और जो मैं ड्रीम करता हूँ ना वो मैं बना देता हूँ. बट इज मूवीज आर क्लासिक. अब से जो हम लिस्ट देख रहे हैं जो उन्होंने मूवीज बनाई हैं रुजबे, सोचा ना था से लेके अब तक.
3: यू नो, हमने उनको, आपने हमेशा उनको एक डायरेक्टर की तरह जाना है. डिड यू नो कि इम्तियाज अली एक्चुअली में उन्होंने एक्टिंग भी की है.
4: ओह वाओ, कहाँ पे?
3: सो बेसिकली ब्लैक फ्राइडे करके एक मूवी थी 2007 में जो बैन ही ज्यादा हुई मेरे को लग रहा है. ब्लैक फ्राइडे पर सुना है ब्लैक फ्राइडे?
4: इरफान खान थे शायद उसमें.
3: हाँ, मतलब वो मूवी को हमेशा से बैन किया गया है बिकॉज इट वाज ऑन 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट. और उसमें इन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले किया था याकूब मेमन नाम का, जो थे ब्रदर ऑफ द 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट मास्टरमाइंड टाइगर मेमन. उनके भाई का एक रोल प्ले किया था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था. बट या लाइक उन्होंने एक्टिंग भी ट्राई की थी बिफोर ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम फॉर डायरेक्टिंग. वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन.
4: इंटरेस्टिंग, लेकिन पैशन उन्होंने हमेशा ढूंढा अपना डायरेक्शन में. इनकी मूवीज में ना हमें बहुत सारी सिमिलर चीजें दिखाई देती है. सम करेक्टर इन द मूवी सीकिंग समथिंग, फ्रीडम दे आर सीकिंग, मे बी दे आर सीकिंग लव, दे आर सीकिंग पैशन, या सीकिंग, दे आर कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं वो जिंदगी में.
3: That's right, actually.
4: So बहुत ही जैसा बेसिक करेक्टर जिंदगी से उठा के वो बनाते हैं.
3: That is what life is about also, ना?
4: हाँ ना,
3: अगर आप देखो तो हम हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं.
4: Yeah. और मूवी के इनके क्लाइमेक्स बहुत डिफरेंट होते हैं. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ओपन एंडिंग कर देते हैं ये.
3: डिपेंड करता है, डिपेंड करता है. लाइक कभी कभार, लाइक फॉर एग्जांपल जब वी मेट वाज अ क्लोज एंडेड वन, जहां पे उन्होंने
4: वो क्लोज था
3: लाइक. और एक वीडियो में उन्होंने ऐसा कहा भी है कि यू नो कुछ मूवीज ऐसी है लाइक जब वी मेट हैड टू बी हैप्पी एंडिंग एंड रॉकस्टार कुडंट बी अ हैप्पी एंडिंग.
4: जब वी मेट का मैंने ना रिसेंटली, जिसका भी गाना हम प्ले करने वाले हैं, रिसेंटली मैंने एक रील देखी जिसमें दे वर ट्राइंग टू शो द बिहाइंड द सीन्स जो अभी तक किसी ने देखी नहीं है. तो उसमें शाहिद कपूर, करीना कपूर एंड इम्तियाज अली है, ये सब है. एंड लाइक दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. इम्तियाज अली ने एक सीन जो शाहिद कपूर गाने में बाहर ऐसा दरवाजे के बाहर आता है, 10 या 12 बार वो एक सीन करवाया उसने, बिकॉज इम्तियाज अली को परफेक्शन नहीं मिली. सो या ये थोड़े बिहाइंड द सीन्स के उनके काम.
3: वेल, अभी के लिए चलो आज इम्तियाज अली के गाने आपको सुना रहे. तो पहला फ्रॉम हिज क्लासिक मूवी जब वी मेट.

0: ट्रेंड मेकर्स में आज इम्तियाज अली को शाउट आउट दे रहे हैं हम, क्योंकि उनका कल बर्थडे था और कुछ उनके बारे में बातें भी कर रहे हैं आपके साथ.
1: या इम्तियाज अली जिनकी मूवीज में म्यूजिक इज अ मेजर पार्ट, मतलब इट्स नॉट जस्ट द मूवीज, मूवीज में जो कहानी है वो गानों के साथ चलती है उनकी मूवीज में, सो मेजर पार्ट रहता है.
0: गाने हमेशा हिट होते हैं
1: मोस्ट ऑफ द टाइम, या हिट ही
0: गए
1: हैं.
0: पहले मूवी के गाने हिट नहीं हुए थे,
1: सोचा ना था
0: बट मेरे को वो मूवी बहुत पसंद आई थी,
1: बहुत इनोसेंट मूवी थी.
0: और उस मूवी का आप अगर अभी वापस से जाके देखोगे ना, उसका बैकग्राउंड स्कोर वॉज अमेजिंग.
1: And imagine, it was a debut of Imtiaz Ali.
0: Yeah, it was a debut of
1: debut.
0: But very nice movie.
1: And उन्होंने हमेशा बोला है कि इनकी movies में ना women जो है वो बहुत important होती है. और अगर तुम notice भी करोगे, इनकी movies में जो women है बहुत mysterious भी होती है and they are very fascinating as well.
0: Yeah, उन्होंने कुछ बात share की है about his movies, तो ये सुनते हैं.
2: मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ और नहीं कर पाता हूँ वो मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कर रहा हूँ, लिविंग वाइकेरियसली. मगर ये भी जब होता है ना तो ये जानबूझ करके कॉन्शियसली नहीं होता है. जब आप लिख लेते हो और आप शूट कर लेते हो और कभी एडिटिंग में आपको लगता है कि अरे ये तो शायद मेरी एस्पिरेशन है, गीत की तरह बात करना शायद मेरी एस्पिरेशन है, बट आई एम मच मोर रिजर्व देन हर, सो आई कैन नेवर एंजॉय दिस. या जॉर्डन की तरह बेबाक होना और स्टूपिड चीज़ें करना ये भी मेरी एस्पिरेशन है, मगर मैं हूँ नहीं इतना स्टूपिड तो वो स्टूपिडिटी एंजॉय नहीं कर पाता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ करके वैसे कैरेक्टर्स बना रहा हूँ.
0: बहुत ही ब्यूटीफुल ये थॉट था. बट इसी बात पे रॉकस्टार का ही ये गाना सुनते हैं अभी.

0: Trend Makers.
1: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.
2: The Beat of Bollywood.
3: World's best, Hamari good brands.

हाईवे मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना ए आर रहमान की आवाज में आप सुन रहे थे। एंड हाईवे मूवी की अगर बात भी करें, इम्तियाज अली की ये मूवी,

0: आई थिंक मैंने उसका ना एक मेकिंग या उसका वीडियो देखा था ऑन सम चैनल, एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिम्तियाज़ अली ने शेयर की थी कि उन्होंने कहा था कि हाईवे इज़ नॉट अ रोमांटिक मूवी, इट्स नॉट अ लव स्टोरी, इट इज़ बेसिकली अ स्टोरी अबाउट
1: फ्रीडम.
0: आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था डिस्कवरिंग हरसेल्फ,
1: बेसिकली उसका करेक्टर किडनैप होता है लेकिन किडनैप होके उसको फ्रीडम मिलती है. इज दैट काइंड ऑफ करेक्टर. एंड एक्चुअली ये मूवी ने आलिया भट्ट के करियर को डिफाइन किया है इन अ टोटल डिफरेंट वे, क्योंकि उससे पहले उसका ग्लैमरस रोल था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में. सो इस मूवी से पता चला उसकी रियल एक्टिंग के बारे में कि शी कैन कैरी दीस काइंड ऑफ रोल्स एज वेल.
0: ऑनेस्टली मतलब वो इंटरव्यू में मैंने सुना था इम्तियाज अली ने कहा था कि हिज फर्स्ट चॉइस वाज नॉट लाइक ही वाज वांटिंग टू कास्ट समवन मोर ओल्डर, क्योंकि उनको वो मैच्योरिटी चाहिए थी. बट आलिया भट्ट के ऑडिशन के बाद उन्होंने मन बना लिया कि नहीं, आलिया भट्ट कैन पुल इट ऑफ.
1: भाई सुपर्ब लगी थी, आलिया भट्ट के फैंस बन गए थे इस मूवी के बाद.
0: मैं फैन बना था आलिया भट्ट का, बिकॉज व्हाट एक्टिंग शी हैड डन यार. और वो ना
1: इट वाज वेरी डिफिकल्ट करेक्टर,
0: नो मेकअप लुक भी था ना पूरे इसमें, काफी बहुत सादगी
1: एक्चुअली में इनोसेंस उसके फेस पे फील हुई थी. बट या इम्तियाज अली के मूवीज में जो आप बहुत चीजें नोटिस करते हैं, और जो अभी जो हम गाना सुनने वाले किस मूवी का है,
0: ये तमाशा मूवी का है, अनदर कल्ट क्लासिक.
1: ये मूवी लोगों को दो बार देखनी पड़ी समझने के लिए.
0: तमाशा मूवी ऑनेस्टली पहले 10-15 मिनट आपको समझ ही नहीं आते कि क्या हो रहा है मूवी में. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मूवी, कि पहले 10 मिनट अगर तुमने सहन कर लिया वो मूवी के, उसके बाद वो मूवी दैट टेक्स यू ऑन अ एडवेंचर.
1: ये मूवी के रील्स आज तक हिट है, जब वो बोलते हैं ना रणबीर कपूर को, वो जो स्टोरी टेलर होता है कि तुम मुझसे अपनी कहानी पूछ रहा है. मतलब कई बार होता है ना वो करेक्टर के बारे में बताते हैं कि हम अक्सर बाहर के लोगों में अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि तुझे क्या लगता है मेरे बारे में, या यू नो अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि अपनी कहानी तो खुद को ही पता होती है ना कि हम क्या है क्या नहीं है.
0: और वो फिर चिल्लाता है और बोलता है कि तेरी कहानी है, तेरे को नहीं पता क्या मैं क्या बताऊं.
1: आज तक इसकी रील्स इस मूवी की ना ट्रेंड करती है.
0: यस, सो या लकी अली की तमाशा मूवी का ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाना. इम्तियाज अली की तमाशा से लकी अली ने गाया है इस गाने को.
1: लकी अली बहुत कनेक्ट करते हैं,
0: बिकॉज लकी अली ये गाना, आई थिंक लकी अली का भी अगर आप आवर प्ले करो तो ये गाना बजना ही है
1: 100%.
0: इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंजॉय कीजिए.

0: देखें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate Traffic.
2: Dry July starts soon.
3: Some light winds tonight for Auckland. It's mainly clear, a low of 10 degrees. Out of town, the northern to Constellation Drive, less than half an hour, and to Silverdale, 40 minutes. It's heavy from town to the Harbour Bridge and slow from Northcote Road. To Silverdale, just some slow patches after Albany. On the southern to Manukau, 37 minutes. To Drury, it's taken about 50. A heavy to Penrose and slow patches south from there. Builds again after Takanini.
2: Do good, feel good. Go dry this July. Search Dry July to register.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
5: Maddie didn't think she needed a DVS system.
6: I've got a heat pump. That should do.
5: But it didn't do it, did it, Maddie?
6: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
5: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
9: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है.
10: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
8: Cocktail 2, releasing in cinemas on 19th June. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
12: हाँ, अच्छा
11: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33.

0: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Trend makers में आज इम्तियाज अली को हम shout out दे रहे हैं क्योंकि उनका कल birthday गया.
1: Yeah, so अभी जो आप गाना सुनने वाले हैं कैसी मूवी से सुनने वाले हैं, इस मूवी ने भी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए. OTT पे ये मूवी रिलीज होती है एंड लव्ड बाय एवरीवन, मोस्ट स्ट्रीम्ड मूवी बन गई थी उस साल की.
0: वाओ. एंड दिलजीत दोसांझ का परफॉर्मेंस भी इस मूवी में बहुत ही कमाल रहा था.
1: बहुत ही कमाल था.
0: चमकीला मूवी की बात कर रहे हैं हम लोग. अमर सिंह चमकीला.
1: सुपर मूवी. वैसे देखा जाए यार, इम्तियाज अली की मूवीज में ना रुजबे बहुत सारी चीजें कॉमन है. उनकी थीम्स अगर देखा जाए, जो कैरेक्टर्स कहीं किसी ना किसी चीज से भाग रहे हैं. ट्रेन्स उनकी मूवी में है, माउंटेन्स. उनका कहना है कि उनके मूवीज में ना माउंटेन्स होनी मस्ट है किसी भी जगह पे. इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिस्कवरी एज वेल. या सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बहुत बातें होती है.
0: माउंटेन्स का ये सही है यार, इसका
1: पहाड़ियां होती है उनके मूवीज में.
0: ये मैंने इनके बारे में ये पढ़ा है कि उनको उनके बिगेस्ट कमर्शियल हिट्स पसंद नहीं आते. जब वी मेट इज वाइडली कंसिडर्ड अ कल्ट क्लासिक दैट रीडिफाइंड द बबली गर्ल ट्रोप. लेकिन इम्तियाज अली इज नॉट अ बिग फैन ऑफ इट. उसने एक इंटरव्यू में भी कहा, बोलता है कि हाईली फॉल्टी स्क्रीन प्ले था इसका और कुछ इमोशनल सीन्स उन्होंने सही से डायरेक्ट भी नहीं किए थे. ये देखो, जब आप खुद के इतने बड़े क्रिटिक बन जाते हो तब आपको आपका खुद का काम.
1: इनफैक्ट इट टॉक्ड अबाउट तमाशा मूवी सो मेनी टाइम्स की तमाशा मूवी के बारे में काफ़ी लोगों ने बाद में जाके तारीफ की. इनफैक्ट वन मूवी जिसके बारे में आई गॉट शॉक्ड व्हेन ही टॉक्ड अबाउट वाज रॉकस्टार में वो किसी ने सवाल पूछा कि हीर का करेक्टर जो एंड में खत्म हो जाता है. ही सेड कि हीर जॉर्डन से पहले चले जाती है. जॉर्डन की एंडिंग नहीं दिखाई. इट वाज जो हीर को जब वो देखता है दैट वाज जॉर्डन एंडिंग, लेकिन मूवी वहां पे खत्म हो जाती है. सो जॉर्डन की भी डेथ होती है उस मूवी में, लेकिन वो दिखाते नहीं है.
0: वो दिखाते नहीं, वो आपके
1: मतलब डेफ है उस मूवी में ना कितनी ज्यादा.
0: या या आपके इंटरप्रिटेशन पे काफी सारी चीजें छोड़ देते हैं. बट या दिस वाज व्हाट वी हैड फॉर इम्तियाज अली स्पेशल आवर. ऑब्वियसली उनके सारे गाने तो हम प्ले नहीं कर पाए, और भी बहुत क्लासिक सॉन्ग्स
1: हैं. जितना टाइम अलाउ करते हैं हम उतना ही प्ले कर पाते हैं, बिकॉज आज तो हमने उनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं की. फिर भी
0: बिकॉज द सॉन्ग्स ओनली आर सच ब्यूटीफुल यार, और सारे लंबे गाने हैं इनके. सो एनीवे, आई होप यू एंजॉय द शो. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, कल मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिए एंड सी यू सून.
2: धरती का गोटे रंगा है लहरिया, वो दोनों को ही चार

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील करा सील
0: टाइट वेरी टाइट।

0: वेंसडे का तड़का मिडवीक मसाला ऑन हब
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है। बॉलीवुड खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आपको अपडेट रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है हमारे ग्लिट्स एंड ग्लैमर दुनिया में, हमारे बी टाउन में, और वहां के सितारे क्या कर रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म सिनेमाज में शुरू हो गई है। भारत भाग्य विधाता नेशन वाइड रिलीज हो चुका है और इस फिल्म आधारित है ट्रू इवेंट्स पर, सच्ची घटनाओं पर जो लिंक्ड है टू 2008 मुंबई अटैक्स को लेकर। और इस फिल्म में करेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स को दिखाया गया है ड्यूरिंग द क्राइसिस, और क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया है इस फिल्म का इमोशनल स्टोरी टेलिंग, और इस मूवी को काफ़ी अटेंशन मिला है और इट्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द ट्रेजेडी को भी सराहा गया है, और कंगना रनौत के किरदार को भी काफ़ी क्रिटिक्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है। ऑब्वियसली कंगना रनौत तो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है ही, अब इस फिल्म के साथ इन्होंने कुछ दिनों बाद अपनी वापसी की। होपफुली दिस मूवी गिव्स हर मोर अटेंशन एंड द रिकॉग्निशन दैट शी डिजर्व्स इन बॉलीवुड। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।
0: मिडवीक मसाला

0: मिडवीक मसाला।
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला आप सुनते रहो, क्योंकि आपके लिए प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे, साथ ही में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी बॉलीवुड से ये भी बताते हैं। आपके लिए मिडवीक है तो ऐसे में बॉलीवुड गाने और इन्फॉर्मेशन तो बनता है आपके लिए। सुखविंदर सिंह ने रिवील किया है एक सरप्राइज बिहाइंड अ हिट सॉन्ग। इन्होंने रिवील किया है कि ही वॉज नॉट ओरिजिनली मेंट टू सिंग बीड़ी जलेले, और ये स्टूडियो में थे दरअसल उस दौरान, रिकॉर्डिंग प्रोसेस के दौरान सर्कमस्टांसेस बदला और ही एंडेड अप परफॉर्मिंग द ट्रैक। और ये गाना मेमोरेबल हिट बना है क्योंकि सुखविंदर सिंह कन्फर्म हो चुके थे इस गाने के लिए, और फिर रिलीज़ हुआ तो लोगों ने इतना प्यार दिया इस गाने को। और लेकिन फैंस काफ़ी हद तक सरप्राइज थे कि ये इस गाने के पीछे स्टोरी क्या थी, और इस क्रिएशन जो हुआ है इतना मज़ेदार, इसके पीछे क्या जो बैक स्टोरी थी वो सुखविंदर सिंह ने रिवील किया है। कॉकटेल 2 को अडल्ट रेटिंग मिला, इस पर बहुत ही जल्दी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे।

नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 को एक ई सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम द सेंसर बोर्ड। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना इस फिल्म में काम कर रहे हैं। ये कृति सेनन की फर्स्ट फिल्म है विद एन अडल्ट रेटिंग। एडवांस बुकिंग इस फिल्म का शुरू हो गया है और काफ़ी फैंस लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कॉकटेल जैसा जो पहला एडिशन था, होपफुली लोगों को ऐसा ही कुछ मिले, यही उम्मीद रख रहे हैं या सब कुछ बेहतर मिले। लेकिन स्टारकास्ट जो है बहुत प्रॉमिसिंग है। इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे, मज़ेदार है, बहुत अच्छे हैं और पिक्चराइजेशन भी बहुत ही कैची है। तो होपफुली ये गाने और ये जो ट्रेलर्स वगैरह जो देखने को मिला है, होपफुली ये जस्टिस कर पाए इस गाने को, इस फिल्म को जब रिलीज़ होगी थिएटर्स में और लोगों को होपफुली ये पसंद आए। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और आपके लिए और भी प्यारे गाने नाइट कैफे मिडवीक मसाला में।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है। बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज मैं बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूं। आमिर खान प्रोडक्शन ने 25 इयर्स ऑफ लगान सेलिब्रेट किया। ये ग्रैंड इवेंट था जिसमें 25 साल हो चुके हैं आमिर खान प्रोडक्शंस और आइकॉनिक फिल्म लगान के लिए, और कास्ट मेम्बर्स, फिल्म मेकर्स और बॉलीवुड स्टार्स इस सेलिब्रेशन के हिस्सेदार थे। और कहा गया है कि ये इवेंट काफ़ी नॉस्टैल्जिक डिस्कशंस को फीचर किया था अबाउट द फिल्म्स लेगेसी। सलमान खान, करीना कपूर और भी अन्य सेलिब्रिटीज यहां पर प्रेजेंट थे, और फैंस ने प्रेज किया है द रियूनियन ऑफ वन ऑफ द बॉलीवुड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स लगान, जो 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही प्यारी ये फिल्म है, और जब भी हम देखते हैं इनको दोबारा देखने का मन करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर भी बनाया गया था, और जिस तरह से एक्टर्स ने अपना काम निभाया था, खासतौर पर ग्रेसी सिंह आई बिलीव थी इसमें एक्ट्रेस, और आमिर खान तो लाजवाब थे ही, बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर्स थे और फिल्म भी उतना ही मज़ेदार। कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा कि सलमान खान का न्यू लुक वायरल हो चुका है। करीना कपूर ने इम्प्रेस किया अपने फैंस को विद ट्रेडिशनल फैशन। ये सभी कुछ आपके लिए नाइट कैफे मिडवीक मसाला में।

0: on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
5: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और क्रिश के साथ है। कुछ और अन्य बॉलीवुड खबरों को आपको सुनाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सलमान खान लगान एनिवर्सरी इवेंट में पहुंचे और रगड़ न्यू अपीयरेंस के साथ ही नजर आए। इनके फोटो बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो गई और वायरल हो गई। फैंस ने कंपेयर किया इनका लुक विद हिज क्लासिक एक्शन फिल्म स्टाइल और इनके अपीयरेंस वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मोमेंट्स रहा है ऑफ द इवनिंग। काफ़ी लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि ये शायद इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट से भी संबंधित हो, लेकिन एक ही छत के नीचे आमिर खान और साथ में सलमान खान को देखा। इनके न्यू लुक को लेकर काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है और भी बॉलीवुड खबरें बहुत ही जल्दी आपके लिए।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे मिडवीक मसाला जारी है 9 PM तक ये चलेगा कुछ ही देर तक और ये सेगमेंट आपके लिए करीना कपूर लगान सेलिब्रेशंस में अटेंड करती हुई एक ट्रेडिशनल बनारसी आउटफिट में नजर आई. एलिगेंट लुक ने सिग्निफिकेंट मीडिया अटेंशन को अट्रैक्ट किया. इस कपड़े को इस कॉस्ट्यूम को उन्होंने पेयर किया था विद लक्जरी डिज़ाइनर एक्सेसरीज और फैशन एंथुसियास्ट ने कहा है कि ये एक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड ग्लैमर रहा है जिसमें ये बिल्कुल गॉडेस जैसी अवतार में आई थी. और ये ट्रेंडिंग टॉपिक ऑनलाइन भी बन चुका था इनका अपीयरेंस. इनफैक्ट आप भी जाकर गूगल कर देख सकते हैं किस तरह से नज़र आई थी इस अवतार में इन कपड़ों में और खूबसूरत ट्रेडिशनल फैशन के साथ बनारसी आउटफिट में ये कैसी लगी. आज के लिए नाइट कैफ़े मिडवीक मसाला में इतना ही. अगले घंटे पर मिलते हैं नाइट कैफ़े और बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. Global sensation करण औजला को आप देख पाएंगे bringing his P-pop culture world tour to Oakland. और ये काफी massive होने जा रहा है. Chart topping hits to anthems जो हर कोई जानता है और प्यार करता है इनके गानों से. Experience कीजिएगा live on stage Spark Arena में होगा 25th August को. और special guest hit maker Ikki IKKY भी इनको join करेंगे. Unforgettable night of music और energy होने जा रहा है. अगर आपको win करना है tickets तो आपको करण औजला पर एक सवाल पूछा जाएगा हमारे रेडियो पर हमारे साथियों द्वारा 5599 पर KA के साथ आप जवाब भेजे टू विन ए डबल पास. ड्रॉ 22nd जून को होगा ब्रेकफास्ट शो में. और इसके अलावा टिकट्स के लिए आप hum.rover.nz विजिट करें या livenation.co.nz. प्री सेल्स होगा 17 जून को 10 AM और फ्राइडे 19 जून को 10 AM. लाइव नेशन प्री सेल होगा थर्सडे 18 जून को 10 AM और फ्राइडे 19 जून 10 AM. GP on sale Friday 19 June 11 AM local time होगा. तो 25th August को Spark Arena जाना ना भूले. करण औजला को आप देख पाएंगे. अगर हमारे Facebook पेज पर जाते हैं डबल पास यहाँ पर भी जीतने का मौका है. लाइक द करण औजला पोस्ट, एक फ्रेंड को टैग कीजिए और ड्रो में शामिल होकर जीतने का मौका है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
2: Bunnings Traders here to help get insulation jobs sorted. Save time and money with Earthwall Glasswall R7.0. It's quick and easy to install in a single layer, meeting H1 ceiling compliance. Call 0800 134 872 to arrange a quote and easy on-site delivery at Bunnings Trade.
3: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
4: Bollywood ka asli blockbuster.
5: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Hum.
4: Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
7: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। ओकलैंड एक और इवेंट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए। इवनिंग ऑफ लाफ्टर और एंटरटेनमेंट होगा विद गुज्जू भाई। नी एक्सचेंज ऑफर जिसमें लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया लेकर आ रहे हैं ये शो। ब्रांड न्यू कॉमेडी है जिसमें गुज्जू भाई कॉट अप हो जाते हैं अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर में, जिससे सीरीज ऑफ हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और लाफ आउट लाउड सिचुएशंस हो जाता है। काफ़ी विटी डायलॉग्स है इसमें, इस प्ले में रिलेटेबल फैमिली मोमेंट्स होंगे और क्लासिक गुजराती ह्यूमर होगा। होल फैमिली शो ये होने जा रहा है और आप इन्जॉय कर पाएंगे अपने फैमिली के साथ में। सिद्धार्थ रंधेरियाज़ गुज्जू भाई प्रोडक्शंस आर नोन टू सेल आउट जहाँ पर भी ये जाते हैं, तो लास्ट मिनट तक आप ये ना छोड़े। टिकट्स बुक कीजिए premiertickets.co.nz से और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज। ये 3 जुलाई को होने जा रहा है 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ओकलैंड में ये होगा। तो टिकट्स आप premiertickets.co.nz से ले पाएंगे। क्रिश का साथ है एंड यू लिसनिंग टू हम।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ हम पॉडकास्ट. आप जरूर सुने, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया जा रहा है. और इस हफ्ते के पॉडकास्ट में निवेदिता वीज के साथ बातें किया रिसेंडी और रुजबे ने. थैलेसीमिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द साउथ एशियन कम्युनिटी पर बातें हुई है. ये कन्वर्सेशन एक्सप्लोर किया है कि थैलेसीमिया क्या है और क्यों ये साउथ एशियन कम्युनिटी में प्रिवेलेंट है. रोल ऑफ जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, कॉमन सिम्टम्स और इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग के बारे में भी बातें हुआ है. किस तरह से इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स, रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर पेशेंट्स और फैमिलीज, इस पर भी बातें हुई है. पॉडकास्ट में ये बात हाईलाइट हुई है कि किस तरह से रेजिंग अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट और स्टिग्मा को रिड्यूस करना ये भी बहुत ही ज़रूरी है और किस तरह से इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशंस रखना और इसको इनकरेज करना ज़रूरी होता है. एक इंसाइटफुल और एजुकेशनल डिस्कशन है तो आप ज़रूर ये सुने. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर. फुल ऑडियो आपको के लिंक आपके पास आ जाएंगे. साथ ही में ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा द ब्रेकफास्ट शो के लिए आप बीएफ टेक्स्ट करें 5599 पर. और कैचअप आपका जो पॉडकास्ट है ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर जानकारी आपको मिल जाएगा इन ए रिप्लाई मैसेज. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: जगाती है कयामत कोई.

0: Nova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
0: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. Police have confirmed one person died at the scene earlier this afternoon after a car drove into a food outlet in the North Auckland suburb of Red Beach. The Primary Teachers Union has called for caution around a new AI assessment tool in schools. The NZEI is concerned the Student Monitoring Assessment and Reporting Tool, or SMART, is known to have awarded marks based on word count, not quality. And British TV presenter Jeremy Clarkson has revealed on his TV show Clarkson's Farm that he has cancer. The 66-year-old took to social media to warn fans of a difficult watch. In sport, Rugby League with Machinery House just about to start the showpiece State of Origin 2 at the iconic MCG. The pre-match preparations, along with various players trying to stare down other players, just the usual, that's almost done and dusted. Chiefs midfielder Quinn Tupaia was this evening named Super Rugby Pacific Player of the Year. And the usual football World Cup angst that affects England supporters every 4 years will reach a peak at 8 o'clock tomorrow morning. England playing Croatia.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
7: Welcome back everyone. Night Cafe, आप सुनते रहो. मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ. बुलन कियोरा एंड सलाम सास्त्रेकाल आप सभी को. आप हमारा बस साथ देते रहे, ऐसे ही आपके लिए प्यारे प्यारे गाने हम पेश करते रहेंगे. 17th जून है आज, अगर आपका जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से. बहुत सारा प्यार आप तक पहुंचे, आपके परिवार वालों ने आपको बहुत दिया होगा प्यार और पैम्परिंग और सरप्राइजेस. टीम हम की ओर से मुबारकबादियाँ आप तक पहुंचे. स्पेशल ओकेजन है घर पर, तो हमारी ओर से बधाई हो. और ऑनलाइन लिसनर्स आपको शामिल करते हैं, साथ ही में हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स, मैं आपको हमेशा याद करता हूँ क्योंकि इस टाइम पर आप हमेशा हमारा साथ देते हैं. इनफैक्ट 24/7 हम की गूंज होती है आपके पास, आपके अराउंड आपका इंटरेक्शन भी हमारे साथ होता है. लेकिन रात को जब आप काम कर रहे होते हो तो हमारा साथ देते हो. थैंक यू सो मच. आपको अगले गाने पर याद करते हैं. 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक मैं आपको सुनाता हूँ. प्यारे गानों का लिस्ट हमारे पास है. अरिजीत सिंह, अली जफर और कुमार सानू, सोनू निगम, जावेद अली, राहत फतेह अली खान, दिलजीत दोसांझ, विशाल ददलानी, आतिफ असलम जैसे कलाकारों को आप सुनेंगे. एंजॉय एवरीवन.

0: the race like me.
1: You're listening to Krish.
2: Let's go!
3: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सहजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन ये वीकली फ्री मेडिटेशन सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मेडिटेशन क्लासेस आर ओपन टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एक्सपीरियंस और ये एंटायरली फ्री है क्योंकि आपके मेंटल वेलबींग को ये खास ध्यान में रख के ये मेडिटेशन जो सेशंस है आपके लिए रखा गया है. मरीज बे में एड्रेस है आउटरैम हॉल 478 बीच रोड मरीज बे. एवरी मंडे होगा 7:15 PM टू 8:15 PM. मारिया से बातें करें और जानकारी के लिए 022-303-9918 पर. माउंट एल्बर्ट में अवारा का सी स्काउट्स हॉल रेंज व्यू रोड मरी हॉलबेग पार्क माउंट एल्बर्ट आप जा सकते हैं. सैटरडे 10 AM टू 12 PM रहेगा. कॉन्टैक्ट आरती 022-404-8386 पर. हविक में है द ग्रीन रूम अक्स ब्रिज सेंटर 35 अक्स ब्रिज रोड हविक. एवरी ट्यूजडे होगा 7 PM टू 8 PM 022-566-9445 पर आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे. एंड फाइनली नॉर्थ कोट में 27 लेक रोड नॉर्थ कोट ओकलैंड एवरी ट्यूजडे यहाँ पर होगा 7 PM टू 8 PM. ओमकार से बातें करें और जानकारी के लिए 022-107-4456 पर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: क्या? कौन है? अरे
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient, because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Cool. Getting to work? Easy. Coffee with friends? Just go. The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
0: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari good brands nahi hai.
0: Night Cafe.
7: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. Please everyone, आपको support करना है Glow Red for Thel NZ. Global awareness campaign है by Muskan Care Trust, जो thalassemia और sickle cell anemia पर जागरूकता फैला रहा है. ये ऐसे conditions है जो काफ़ी हद तक invisible होता है, लेकिन lifelong impact होता है. काफ़ी patients rely करते हैं on regular blood transfusions, और ख़ासतौर पर often every 3 weeks पर यह होता है, to stay alive. तो आप भी real difference इनके ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं by becoming a blood donor. अपने family और friends को भी encourage करें, क्योंकि international sickle cell awareness blood donation drive होने जा रहा है 20th जून को मनोकाउ एनजेड ब्लड सेंटर. यहां पर आपको पहुंच जाना है. और भी जानकारी के लिए, अगर आप अपने डोनेशन को बुक करना चाहते हैं, तो muskancaretrust.org.nz आप जाए, या फॉलो करें मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड ऑन फेसबुक पेज. और टुगेदर आप यू कैन शाइन लाइट ऑन थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया. आप सपोर्ट कर सकते हैं ब्लड डोनेशन हीरोज को, और ऐसे करके बहुत सारे लाइव्स को सेव कर पाएंगे. ग्लो रेड, डोनेट ब्लड और शेयर होप. ये है सूचना मुस्कान केयर ट्रस्ट एनजेड की ओर से. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Indian Ink Theatre Company presents Balloon Dog. Ye ek award-winning performer hai, Jacob Rajan, jo abhi stage par aapke liye lekar aayenge in the world premiere of Balloon Dog, jo ek deeply moving aur timely new production hai, jo Rabindranath Tagore ki kahani Kabuliwala se prabhavit hai. Aur 21st century mein iski setting hai is kahani ki, beautifully tender tale, jisme unexpected friendship between a 5-year-old girl aur ek lonely migrant worker के बीच में होता है. और कहा गया है कि सोल्ड आउट प्रीव्यू सीजन के बाद इंडियन इंक्स लेटेस्ट थिएट्रिकल मास्टरपीस में ह्यूमर, हार्ट, लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस और प्योर थिएट्रिकल मैजिक होने जा रहा है, जो बहुत आपको आगे तक लेकर जाएगा, जिसमें रिजिलियंस और ह्यूमैनिटी देखने का मौका मिलेगा, करेज, कनेक्शन और सीइंग वन अनदर बियॉन्ड कल्चर, क्लास एंड सर्कमस्टांस. ये क्यू थिएटर इन ऑकलैंड में होगा 3rd to 20th of June. तो आप ये मिस ना करें, दिस इज गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. टिकट्स के लिए iticket.co.nz आप विजिट करें.

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे आपके लिए जारी है. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारे साथ मिडनाइट तक रहेगा, तो ये हमारा फाइनल आवर हुआ. और थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप 8 पीएम से लेकर अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है. अब इस अंतिम घंटे में भी आपको हमारा साथ देना है, और याद रहे हमारे जाने के बाद में भी हमारे साथियों का साथ देना है, क्योंकि 24/7 हम आपका साथ देते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी लेकर आते हैं. इस घंटे पर भी कुछ इवेंट्स होने को है. हॉकी वुमेन्स नेशंस पर बातें करेंगे, और द ग्रेट कॉमेडी नाइट जो कृष्णा को देखने का लाइव मौका रहेगा, इस पर भी बातें होंगी. लेकिन बैक टू बैक सॉन्ग्स पहले सुना देता हूँ आपको. अरिजीत सिंह, अलीशा चिनोय, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग सिंगर्स. कुमार सानू, अलका याग्निक, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स. सुनिधि चौहान, बादशाह, नेहा कक्कर, देव नेगी, मीट ब्रोज, अनजान, नीति मोहन जैसे कलाकार हैं इस बार. ये 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आपके लिए रहेगा, नॉन स्टॉप. आप इन्जॉय करें, और मिलते हैं उस 30 मिनट्स के उस पार जब हम और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे.
2: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो.

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Oakland, get ready to laugh until it hurts. Kyunki ab hamare Facebook page par agar aap jaate hain, show us your fun side aur caption kare the photo jo wahan par posted hai, aap draw mein shamil hokar double pass jeet sakte hain. Trivision events ki or se ye show aane ja raha hai. Krishna, Abhishek aur Rajiv Thakur live. Isme iconic characters aur razor sharp wit hoga. Aur ye ek comedy night hai jisko aap miss nahi kar payenge ya nahi karna chahiye. The great comedy night, Krishna, Abhishek aur Rajiv Thakur live. Ye Oakland mein hone ja raha hai for the very first time. VIP seats khatam ho chuke hain, sold out ho chuke hain. To aap apna tickets aaj hi jaldi le le. 18th July ko ye hoga Victory Convention Center. Tickets aap bookmyevent.co.nz se le payenge. Agar aap ko online ticket kharidne mein mushkil रात का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप कॉल कीजिए 021-043-2720 पर और भी जानकारी के लिए. आफ्टर पे ऑप्शन अवेलेबल है. गेट रेडी टू लाफ लाइक नेवर बिफोर. तो द ग्रेट कॉमेडी नाइट, कृष्णा, अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव ओकलैंड में देखने का मौका है आपके पास. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ एंड यू लिसनिंग टू हम.

0: वेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media works. Media that works.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: Woody? No worries.
5: South Auckland's buses just became a lot better.
4: Oh my, oh my.
5: With better bus routes, more frequent buses, and more.
4: Grey South Road? Now even greater.
5: Search AT Better South Auckland Buses for more.
6: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आते हैं हम पर बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. द FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप ये नॉर्थ हार्बर में आ रहे हैं फ्रॉम 15th to 21st of June और हम इज प्राउड टू ब्रिंग यू स्टिक विद हम. ये आपका चांस होगा टू बी बिहाइंड द वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन जब ये अपना टाइटल डिफेंड करेंगे ऑन होम सॉइल. 8 कंट्रीज है, वर्ल्ड क्लास हॉकी होंगे एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स होगा जो न्यूजीलैंड में आपने देखा है 4 years. अगर आपको यहाँ पर रहना है तो मतलब जाना है इस इवेंट में तो आपको हमें सुनते रहना है क्योंकि आपका फेवरेट अनाउंसर आपको कॉल करने के लिए बोलेगा. फिर आपको हॉकी टेक्स्ट करना है 5599 पर फॉर योर चांस टू विन अ डबल पास टू द गेम्स. और हमें स्टैंड्स को पैक करना है, वी हैव टू मेक सम नॉइज और हमारे वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वीमेन को सपोर्ट करना है. टिकट्स आप hockeynz.flicket.co.nz से ले सकते हैं. स्टिक विद हम और बी पार्ट ऑफ द एक्शन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है कल थर्सडे नाइट रिदम एंड रोमांस लेकर आ जाएंगे, जिसमें बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आपके लिए एक के बाद एक हम पेश करेंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखें, हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट, एंजॉय योर थर्सडे टुमारो, कल रात को मिलते हैं, गुड नाइट एवरीवन।

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
1: Flooring Extra. Adore your floor.
2: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
3: हाँ। अच्छा
2: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
3: मिसेस सिंह
4: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हाँ, वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.

0: दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: Award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
5: Kahani of Indelible Homes.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Budget gaane.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur West City Omura Jaiku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System, performance bhi, efficiency bhi, aur all electric J5 EV, zero emissions, maximum savings. Aaj hi West City Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit westcityautogroup.nz or search for West City Auto Group on socials.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.in से।
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
4: Nissan Big Deals. Sirf 22nd June tak. Select new Navara models par paye $5,000 tak ki bachat plus accessories bhi. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8. Backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
9: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
10: हम नाइट फ्लाइट ऑन हम।
11: या सैटिस्फाइड, वी विनर्स, गिव वन रीजन टू कम अलाइव।

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम हाँ।

0: Get ready, New Zealand. Hum is proud to bring you Stick with Hum, your chance to support the Vantage Black Sticks women at the upcoming FIH Hockey Women's Nations Cup. Experience world-class international hockey right here at home as top teams battle for glory. Plus, you could win a double pass to the games. Simply listen for the cue to call from your announcer, then text hockey to 5599 to enter. Stick with Hum and get behind our Vantage Black Sticks women.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
3: Night Flight

0: Night Flight on Hum.
1: Nia jate nia jate nia.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: स्मार्ट पे इज नाउ शिफ्ट फॉर Dakota NZ. Global commerce, local service.
2: Waiting weeks for your IFPOS setup? That's lost revenue. Shift4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
1: Shift4, Dakota NZ. Global commerce, local service.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
0: From friends to lovers to chaos, get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
7: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है, क्योंकि वो नया होता है।
8: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है, और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
0: Cocktail 2, releasing in cinemas on 19th June. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
4: Nissan Big Deals सिर्फ 22nd जून तक। Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत, plus accessories भी। Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
0: हम time check. हम news brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Airlines are being reminded about price gouging. The Commerce Commission has told companies to pass falling oil costs on to consumers. Marketing Professor Damien Mather says it's a fair reminder.
10: I think it's a precautionary thing is a good thing, and it's the Commerce Commission's job, of course, to do that.
9: Upgrading to a bigger house remains cheaper outside the main centres. New Cotality data shows it's become more affordable to trade in from a 3 to 4 bedroom house. Chief Property Economist Calvin Davidson says it's still expensive in the cities, though.
11: I guess like a lot of things at the moment, it's probably the provinces that are sort of holding up a little bit better.
9: Regional New Zealand's being targeted in a homeless support funding boost. Tauranga, Whakatane and Waimakariri are among the 9 areas set to benefit. Community Housing Aotearoa's Chris Glardale says they still need help.
12: Maybe not in volume the same as in, say, Wellington, Christchurch, Auckland, but similar conditions and similar struggles.
9: A former healthcare worker in the UK has been hauled over the coals for trying to sell the Princess of Wales medical records. A criminal investigation found a staffer at the London clinic tried to obtain Catherine's notes when she was a patient in 2024. The British privacy watchdog says there was a deliberate misuse of highly sensitive information and an offer to disclose it for financial gain. To Rugby League with Machinery House.
13: The series is locked at 1-1.
9: Queensland's beaten New South Wales 44-24 at the MCG to force a State of Origin series decider. And a short time ago, the Black Caps were 280 for 7 after being put into bat by England on day one of the second cricket test at the Oval.
4: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
14: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
15: सूचित किया जाता है कि एलिट सिनेमा लंबासा फिजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी यानी ज्योति, रचना और प्रमीत की मां रेवा पटेल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 3 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-903-255 पर संपर्क कर सकते हैं। एलिट सिनेमा लंबासा फिजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी यानी ज्योति, रचना और प्रमीत की मां रेवा पटेल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 3 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-903-255 255 पर संपर्क कर सकते हैं। लोटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी यानी माला, रक्षा और सीमा की मां सत्यावती प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर संपर्क कर सकते हैं। लोटोका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलिन ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी यानी माला, रक्षा और सीमा की मां सत्यावती प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0210-647-520 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एन जोखन लिमिटेड सूबा के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां हॉटन स्ट्रीट सूबा की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन की मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आप रविवार को 3 बजे डेविस फ्यूनरल केयर 400 डोमिनियन रोड माउंट ईडन जा सकते हैं और अंतिम संस्कार बाद में फिजी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां होटन स्ट्रीट सुबह की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार या अंतिम दर्शन के लिए आप रविवार को 3 बजे से डेविस फ्यूनरल केयर 400 डोमिनियन रोड माउंट ईडन जा सकते हैं और अंतिम संस्कार बाद में फिजी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं।
14: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
6: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
15: ऑकलैंड में आज मौसम कैसा होने वाला है? अभी आप अराउंड 11.5 डिग्रीज फील कर रहे हैं। आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज, बादल छाए रहेंगे, रह कुछ हल्की बारिश होगी। सनराइज 7:32 AM पर, सनसेट 5:12 PM पर होगा।

0: up.
1: 7 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा थर्सडे 18th जून आज के इस सफर में आपका हम स्वागत कर रहे हैं आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग
2: गुड मॉर्निंग नमस्ते आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग आज की सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से
1: होपफुली आपका दिन कल अच्छा रहा होगा और आज एक नए दिन के लिए तैयार होंगे और जो कुछ अभी तैयारियां हैं आज आपकी उसमें आपके साथ शामिल होने के लिए वादे अनुसार हम आ गए हैं और 4 घंटों तक आपके साथ रहेंगे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: एब्सोल्युटली करेक्ट वैसे कहते हैं कि किसी भी सफर पर जब हम निकलते हैं तो इतनी हिम्मत जो है ये होनी चाहिए कि हम उस सफर को अकेले तय कर सके लेकिन अगर आपके साथ उस सफर में कोई हम सफर जुड़ जाए तो उसका मजा ही अलग हो जाता है और हर सुबह हमारी कोशिश भी ऐसी रहती है कि ये जो दिन है ये जो सुबह इसकी शुरुआत आपके साथ जबकि हम कर रहे हैं तो बाकी का दिन आपका जो है बढ़िया बीते एंटरटेनिंग बीते खुशहाल बीते और अपनी ओर से पूरी कोशिश हम जरूर करते हैं आपके लिए हर एक दिन को हर एक पल को हैप्पी जो है ये बनाने के लिए
1: तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा इस घंटे कैचअप करेंगे कई चीजों के साथ फीफा वर्ल्ड कप जो है ये खेला जा रहा है मैचेस में क्या अपडेट्स है ये आपको देंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप जो है ये भी है इसके अलावा ब्लैक कैप्स का जो दूसरा टेस्ट मैच है इंग्लैंड के खिलाफ ये भी अभी जारी है इस पर भी जानकारी होंगी और साथ ही में उधर फिजी में बिग फिजी फैक्ट की तैयारियां चल रही हैं तो स्पोर्ट्स के नजरिए से बहुत कुछ हो रहा है बॉलीवुड में तो हर दिन कुछ ना कुछ नया जो है ये मिलता है हमें और ये भी आपके लिए होंगी जरूरी खबरें एंटरटेनिंग न्यूज और साथ ही में आपको इनाम जीतने के मौके ये सब कुछ अभी से लेकर 10 बजे के बीच हम देने वाले हैं ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया

0: Sunnyside Up.
1: आज की कहानी एक शख्स के बारे में है जो अपना काम तो करते हैं लेकिन उसके साथ एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं। और ये जो शख्स हैं इन ये क्या बोलते हैं लोन मूविंग सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं और अक्सर जो अपने अपना काम है उसके वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर शेयर करते

0: करते रहते हैं। उन्हें हाल ही में पता चला डेबी के बारे में। डेबी जो है उन्होंने रिसेंटली अपने हस्बैंड को खोया एंड उसकी वजह से शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ अ लाइफ इमोशनली और साथ में फाइनेंशियली भी। कई महीनों का रेंट जो है ये नहीं चुका पाई थी और एक फ्रॉडलेंट यानी धोखेबाज कॉन्ट्रैक्टर के साथ शायद कुछ काम करवाने की उन्होंने कोशिश की और काफ़ी पैसे उनके बर्बाद हो गए और वो चुपचाप सब कुछ यानी किससे बोले उसको समझ में नहीं आ रहा था कि लोग हंसी उड़ाएंगे मजाक बनाएंगे उनका, तो किसी से कुछ नहीं कहा और दिन में एक बार कभी कभी खाना खाती ताकि यू नो शी कुड जस्ट मैनेज हर लाइफ। प्रॉपर्टी के आसपास घास एकदम बड़े बड़े जिसकी वजह से सिटी फाइंस वगैरह जो है ये भी इन पर लागू कर दिए गए। तो ये जो पॉपुलर डिजिटल क्रिएटर हैं उन्होंने किसी तरह से इनकी प्रॉपर्टी को ट्रैक डाउन किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग ए 20-मिनट ट्रिम एक वीडियो के लिए उन्होंने महसूस किया कि व्हाट दिस लेडी वॉज गोइंग थ्रू। वो और उनकी टीम ने कई दिन गुजारे और उनका जो आउटडोर स्पेस है उसको कम्प्लीटली रिबिल्ड किया और साथ ही में जब ये कहानी आई थिंक 2 दिन पहले सामने आई तब पता चला कि थाउजेंड्स ऑफ एवरीडे व्यूअर्स जिन्होंने उनकी स्टोरी जो है ये देखी इस डिजिटल क्रिएटर के सोशल मीडिया पर सिर्फ कमेंट्स ही उन्होंने नहीं छोड़े। दे क्वाइटली पूल्ड देयर मनी एंड रेज्ड इनफ फंड्स ओवरनाइट टू कम्प्लीटली पे ऑफ बैक जो रेंट था उनका, उनका डेट खत्म किया और उनको लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल सेफ्टी जो है ये भी दी।
1: इट इज सो अमेजिंग। एक होल कम्युनिटी बेसिकली या फिर यू कह सकते हैं कि पीपल हु डिडंट नो हर वो साथ जुटे और उन्होंने मिलकर इनकी जिंदगी बदल दी।
0: एग्जैक्टली और प्लस ये जो डिजिटल क्रिएटर है ना ही यूज्ड हिज प्लेटफॉर्म फॉर अ वेरी गुड कॉज।
1: Yeah, absolutely. That is also something that speaks for the fact कि लोग जो है कभी कभी कितना you know special कर देते हैं चीजें लोगों के लिए जिनसे उनका कोई रिश्ता भी नहीं होता। Now on the same note, you remember हमने वो जो story share की थी about this footballer Tim Payne,
0: हाँ,
1: उनके
0: हाँ.
1: बारे में, isn't it the same situation but in a different way? भले पैसे ही नहीं जुटाए गए थे but in a different way.
0: या एंड टीम पेन के बारे में तो आई थिंक कल मैंने पढ़ा कि कहीं पर आई डोंट नो ये कंफर्म रिपोर्ट उसके बाद मैंने जाकर चेक नहीं किया दैट ही इज हेडिंग टू पेरागुए इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
1: ओह व्हाई इज दैट?
0: फुटबॉल खेलने के लिए ना।
1: ओह अच्छा।
0: इससे पहले शायद उनको कोई जानता भी नहीं था दुनिया भर में, लेकिन जब यू नो इतने सारे इनके फॉलोअर्स हुए या इनके बारे में दुनिया भर में इतनी बातें हुई तब जाकर शायद कुछ लोगों ने इनको नोटिस किया एंड ही इज लैंडेड अ बिग कॉन्ट्रैक्ट टू प्ले इन पेरागुए।
1: या एंड स्पेशली ऑल द थैंक्स गोज टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने इनके बारे में बातें जो है ये की थी and only on the basis that Tim Payne ka naam world's least popular jo footballers mein se ek naam jo hai ye aaya tha and this particular guy jo yahan New Zealand mein nahi rehte mere khayal se if I'm not mistaken na
0: no he's from some other country.
1: I think he's from France or something. To unhone ye video jo hai ye banaya ki yaar this particular guy you know Tim Payne he deserves to be known and aisa nahi ki inko koi nahi janta is list ka hissa hi nahi hona chahiye inko जस्ट बिकॉज टीम पेन के जो इंस्टा फॉलोअर्स है ये बहुत कम थे समथिंग अंडर व्हाट 100,000 आई थिंक ना इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
0: या आई थिंक 5,000 और समथिंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अभी याद ही नहीं है ना।
1: हाँ अभी नंबर्स याद नहीं आ रहे बट इट वॉज बेसिकली अंडर 100,000 और इस शख्स ने इनके बारे में वीडियो बनाया लोगों से मांग की कि आप इस यू नो इन इस पर्टिकुलर फुटबॉलर को फॉलो करो ऑन इंस्टा because only he doesn't have that number of followers on his social media us basis par inko least known footballer mein se ek naam jo hai ye de diya gaya khitab de diya gaya hai and you know what I just checked his profile by the way inke ab pata hai kitne followers ho chuke hain
0: nahi maine nahi check kiya
1: 5.9 million
0: almost 6 million
1: and I think he started off with 4k jab ye video inke bare mein bana tha 4K से यानी कि 4,000 फॉलोअर्स से इन्होंने शुरुआत की थी एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज आई थिंक समवन मेड अ पोस्ट एंड उन्होंने जाकर पोस्ट किया इनके लिए और इनको टैग किया एंड आई थिंक इट वॉज इन द रोल वाइट्स, इन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट किया कि न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन कितना है, 5.3 मिलियन और 5.4 मिलियन और समथिंग आई थिंक. तो वो उन्होंने एक पोस्ट किया और फिर उसके कॉन्ट्रास्टिंग कंपेरिजन में उन्होंने कहा कि टिम पेन के फॉलोअर्स इंस्टा पे कितने हैं, 5.4 मिलियन, लाइक 0.1 मिलियन ज्यादा देन टू व्हाट न्यूजीलैंड्स पॉपुलेशन इज करंटली.
0: ओके, सो यू नो अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, देयर इज सो मच गुड दे कैन दैट यू कैन डू. कभी कभार ऐसा भी देखा गया, बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि एक दूसरे से झगड़ने में और यू नो
1: गाली गलौज करने में, दूसरों की डर्टी लॉन्ड्री बाकियों के सामने रखने में ये सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है. बट या देयर आर बेसिकली सो मच मोर थिंग्स जो आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं.
0: तो ये आज का हमारा सनी साइड अप स्टोरी, थोड़ी देर में ग्लोबल हेडलाइंस हम लेकर आएंगे.
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. Ladies and gentlemen,
3: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
3: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी. Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
6: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
7: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें. अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है. तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें. अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods.
8: Nissan Big Deals सिर्फ 22 जून तक. Select new Navara models पर पाइए $5,000 तक की बचत plus accessories भी. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8 backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
9: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
3: The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Global Headlines.
0: सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में, अमेरिका ने कल ईरान के साथ हुए अग्रीमेंट का ऑफिशियल टेक्स्ट रिलीज किया है जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम दिया गया है और इसमें दोनों देशों के बीच चल रहे मुद्दों पर 14 पॉइंट्स शामिल हैं। इस एमओयू के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने, ईरान पर से कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हटाने और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के बदले इकोनॉमिक रिलीफ देने का पूरा प्रोविजन रखा गया है. ये अग्रीमेंट कल फॉर्मली साइन किया जाएगा जिसके बाद दोनों देशों को फाइनल डील के टर्म्स को नेगोशिएट करने के लिए 60 डेज का समय मिलेगा. इंडिया और यूके ने कल ऐलान किया कि उनका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हो जाएगा जो दोनों देशों के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में एक नए दौर को लेकर आएगा. ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्वेंशन भी लागू होगा, जिसमें टेम्पररी वर्कर्स के लिए एग्जेम्पशन पीरियड को 3 से बढ़ाकर 5 ईयर्स कर दिया गया है, जो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा फायदा है। फिजी के प्राइम मिनिस्टर सिथिवेनी रम्बुका ने स्पष्ट किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगला जनरल इलेक्शन अगले साल 6 फरवरी तक करवाने के लिए बाउंड हैं। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैलेट पेपर में बदलाव और इलेक्टोरल प्रोविजंस के मुद्दे पर रम्बुका ने बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन रिपोर्ट और रेफरेंडम को देखने के बाद ही तय करेंगे कि क्या काम समय पर पूरा करना है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर इलेक्शन प्रोसेस या कानून में कोई भी बदलाव करना होगा तो उसके लिए पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत फिलहाल पोर्चुगल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच मैच खेला जा रहा है। दूसरे हिस्से में खेल जारी है और अभी दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर हैं। सुबह 8 बजे एक बहुत ही जबरदस्त मैच इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच खेला जाएगा। 11 बजे घाना पैनामा से खेलेगा और 2 बजे उज्बेकिस्तान की भिड़ंत कोलंबिया से होगी। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और अभी 9.3 ओवर्स में 6 खिलाड़ी खोकर 44 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले एक मैच आज इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच खेला गया। इस मैच में इंडिया ने अपनी बारी में 5 खिलाड़ी खोकर 209 रन बनाए। जवाब में नेदरलैंड्स के सभी खिलाड़ी 17.3 ओवर्स में 114 रन पर ही बाहर हो गए, जिसकी बदौलत इंडियन वुमेन्स टीम की जीत इस मैच में 95 रन से हुई। इसके अलावा स्टेट ऑफ ऑरिजिन का बहुत ही जबरदस्त मैच कल रात खेला गया और इस मैच में मरूंस की जीत ब्लूज के खिलाफ 44-24 से हुई। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
3: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड
12: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ
13: मैं लाऊं अपना ए गेम।
3: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Accurate traffic.
3: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
4: Lots of cloud, fine spells, high of 16. Citybound on motorways fine, heading out on the southern though a crash around the Green Lane off-ramp with one lane blocked in the area. Coming in, 25 minutes from Mataco, 50 from Drury, slow Papakura to Manurewa. Northwestern, 25 and from Massey, patchy there to the causeway and close to the city. Northern, 22 from Constellation, heavy gravel to Sunny Nook, slow to the bridge.
3: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
5: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 or search PFSL T&Cs lending and credit criteria apply
7: It's time to

0: Tutoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 22 मिनट रह गए हैं अभी 8 या 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा कुछ देर से हमारे साथ शामिल हुए हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. अभी अगर देखें तो शायद 3 ही लोग रेगुलर बाकी रह गए हैं जो हर सुबह नो गुड मॉर्निंग विश करते हैं.
3: मिस्टर टमाटा, बॉबी मान जी और साथ में मैंडी.
2: हाँ, 3 रेगुलर्स. बाकी अभी राज तो आई थिंक वो रात को काम करते हैं. लेट्स सी,
3: शिफ्ट चेंज हो गया ना उनका.
2: हाँ, लेकिन मिस्टर माटामाटा ने मैसेज किया है, राम राम, जय साईं राम, हैप्पी थर्सडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग.
3: और इनके अलावा बॉबी मान जी का भी जो गुड मॉर्निंग मैसेज है ये आया है और हर सुबह की तरह आज भी उन्होंने कहा है, नमस्कार पूजा एंड विजय, साई मेक दिस डे जॉयफुल फॉर अस एंड ब्लेस्ड एवरीवन, जय साईं राम.
2: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा. मैंडी की ओर से मैसेज आए हैं, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग मैंडी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. सो या 3 रेगुलर्स. बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. खबर आ रही है, पिंक विला ने रिपोर्ट किया है कि इन दिनों सलमान खान और फरहान अख्तर काफ़ी एक दूसरे से मिल रहे हैं फॉर द पास्ट मंथ.
3: अच्छा.
2: हाँ,
3: डॉन तो नहीं करने वाले ये? I don't know, but वो actually mediate करने की कोशिश कर रहे थे ना when things were not going well between Farhan and Ranveer.
2: पर
3: उसके बाद मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, I think on Bollywood Hangama. Not really sure कि ये रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, because it was basically something written on the basis of rumors कि Farhan Akhtar और Zoya Akhtar दोनों ही Ranveer Singh से बहुत ज़्यादा upset हैं, and they've made a decision कि वो future में कभी भी Ranveer Singh के साथ काम नहीं करेंगे.
2: Okay, that's their call. But Salman Khan और Farhan Akhtar बातें कर रहे हैं about a grand project. A grand project, ये एक period drama होगा about one of the most celebrated Indian people. और इसकी कहानी जो है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, हालांकि इट्स unconfirmed कि सलमान को अभी तक काफ़ी पसंद आई हैं. और the plan is कि इस फिल्म की कहानी या ये कहानी जो है through 2 films बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगे. दो फिल्में जो हैं ये होंगी. और ये भी अभी तक कहा गया है कि फरहान अख्तर जो हैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, बट ही विल नॉट बी डायरेक्टिंग इट.
3: ओके, सो जस्ट एज अ प्रोड्यूसर ही विल बी पार्ट ऑफ द मूवी.
2: हाँ, लेकिन अभी बाकी बातें सामने आना बाकी है, तो जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे. फिलहाल 19 मिनट रह गए हैं 7 बजे में. यू नो, आज इंटरनेशनल सुशी डे है.
3: Oh nice, I like sushi. Yeah, हर किसी को पसंद नहीं होता ये, पर इनिशियली मुझे भी उतना खास पसंद नहीं था. I found it very weird, especially seaweed देखने में मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, तो मैंने कभी taste नहीं किया था. But then I had a sushi somewhere and I liked it so much कि उसके बाद I've started liking it. But I can't eat हर किस्म का sushi. I like the vegan one. That's the only sushi that I enjoy eating. जिसमें cucumber होता है, capsicum होता है, and they put avocados apparently.
2: Okay, that's something I just cannot stand. मुझसे तो नहीं होता भाई. I can't eat a sushi.
3: आपने कभी इसे taste भी किया है?
2: हाँ, taste किया है. One day while I was driving, मेरी बेटी ने खिलाया था मुझे, and उस time पर मेरे पास choice भी नहीं था कि मैं इसको बाहर कहाँ निकालूं.
3: तो बस आपने निगल लिया.
2: हाँ.
3: बाहर निकालने के बजाय अंदर डाल लिया.
2: हाँ.
3: Okay. I don't know. What's your take on this? जितने भी लोग फिलहाल हमें सुन रहे हैं, आपको क्या सुशी पसंद है? आज इंटरनेशनल सुशी डे आपने कहा ना?
2: हाँ, yes sushi, no sushi.
3: हाँ, तो बस इतना ही लिखकर बता दो. Are you in favor of sushi or are you against sushi?
2: Let's see how many people actually like sushi.
3: हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है. So I am in favor and he is against it, क्योंकि इनको नहीं पसंद है.
2: बिल्कुल.
3: तो देखते हैं किनकी टीम में, मतलब किसकी टीम में कितने ज्यादा लोग आज सुबह सुबह शामिल होते हैं.
2: वैसे अगर आज किसी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं. आपको अगले घंटे हम विश करेंगे.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Winter immunizations are available now.
3: Fine with a lot of cloud, high of 16 today. Heading out of the city on the southern, got a crash just before the green lane off ramp with one lane blocked. Coming in, we're fine. 40 minutes Manukau to town. The slow patches on and off all the way from Papakura. Northwestern 27 in from Massey, just patchy on and off from there to the city. Fast at times. Northern 24 from Constellation. Heavy gravel to Sunny Nook. Slow patches to the bridge.
2: Book your winter immunizations, including flu. Search Book My Vaccine or ask your healthcare provider.
4: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T&Cs लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
6: सेव कीजिए at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson with 50% off selected Sistema, including deals on Karcher 18-volt Power Garden skins and Max Rack shelving. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
7: Snooze and save at the Beds RS Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds RS Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: At Speedy Signs, they look at the bigger picture. Yes, they make great signs, but more importantly, they create signage that helps your business grow. Their team works with you from concept through to installation, making the process simple and seamless. Clear strategy, strong design, professional finish every time. If you want signage that does more than just look good, give them a call on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune.

0: 10:30 रह गए हैं अभी 7 बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए शुरू हो चुका है. शुरू क्या हो चुका है, पहला घंटा खत्म होने को आया है भाई.
1: और
0: सुशी के बारे में हम बातें कर रहे थे, यहाँ भी दो ही लोगों ने अपने जवाब भेजे. आप 4-5 लोगों के अलावा कोई सुन भी रहा है सुबह सुबह?
1: मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सुबह जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो पर्सनली आई फील सिर्फ 5-6 लोग सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागते हैं, दे गेट ऑन द रोड, लाइक गाड़ी में जब जाते हैं ना जाने के लिए, विच इज अराउंड 7:30, तब थोड़ा ज्यादा लोग सुनना शुरू कर देते हैं. बिकॉज देन हम जब कोई भी सवाल पूछते हैं तो एटलीस्ट 5-6 से ज्यादा लोग रिप्लाई करते हैं. जब हम यू नो कॉल्स इनवाइट करते हैं तो एटलीस्ट 1-2 से ज्यादा लोग कॉल करते हैं.
0: नहीं ऐसा होगा तो हम थोड़ी देर से आते हैं ना, 7 बजे.
1: मुझे तो आई एग्री विद स्टार्ट फ्रॉम 7.
0: यू नो आई रीच ऑफिस एट अराउंड 5:20. आपका मुझे पता नहीं,
1: आप आ जाते हैं.
0: आप शायद फिजिकली पहुंच जाती है, मेंटली पहुंचती है नहीं?
1: मेंटली तो मैं कभी ऑफिस नहीं पहुंचती. मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही होती है.
0: तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर ऐसी बात है तो अगर सब देर से आ रहे हैं तो हम भी देर से क्यों नहीं आए भाई?
1: क्यों नहीं, आई नो हमें 7 बजे सुबह शुरू करना चाहिए एंड 9 बजे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक सिनारियो हमने नोटिस किया है. 7 से 8 लोग इतना एक्टिव होते हैं, आफ्टर 9 भी कुछ लोग थोड़ा ऐसे यू नो ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं. तो शुरू करते हैं 7 बजे, खत्म करते हैं 9 बजे. सुबह 6 से 7 डायरेक्ट बैक टू बैक म्यूजिक, और फिर 9 से 10 भी बैक टू बैक म्यूजिक कर देते हैं. पीपल विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट, यू नो.
0: I don't know, क्योंकि बात, क्योंकि 4-5 लोग ही हमसे बातें कर रहे हैं ना.
1: वही बोल रही हूँ मैं कि बहुत देर से लोग
0: 4-5 लोगों के बराबर बातें तो आप अकेली कर सकती हैं.
1: तो आप आएंगे नहीं? मतलब
0: मैं आराम करके आ सकता हूँ ना, आप आ जाओ 6 बजे, 4-5 लोगों की जगह आप पूरी बातें कर सकती हो.
1: वेरी नाइस, गुड आइडिया ऑन योर प्लेस.
0: सो यस सुशी, ये किसी ने भेजा था 4449. उसके बाद रोनल ने कहा लव सुशी.
1: सनी ने कहा लाइक वेजिटेरियन सुशी.
0: How could someone like sushi? I don't know. अभी तक कोई
1: ऐसा नहीं. Sunny and yes, sushi can like sushi. हम तीन लोग तो हैं ना.
0: अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मेरी टीम में है भी या नहीं. अगर नहीं होता तो मैं नहीं आने वाला भाई. मैं 7 बजे ही आऊंगा. कम से कम कुछ लोग तो मेरी टीम के लिए आ जाएंगे तब तक.
1: I don't know what's happening with us यार सुबह सुबह. Anyways चलिए, आप जब तक हम आपके आने का इंतजार कर रहे हैं तब तक आपके लिए गाना बजा रहे हैं.
0: अगर आप आ गए हैं, अगर आप आ गए हैं तो हमें बता दो कि आप आ गए हैं, तो हमें थोड़ी राहत हो जाएगी.
1: एक मिनट, ये मैसेजेस मांगने का, भीख मांगने का तरीका टू पीपल टू सेंड मैसेजेस थोड़ा कैजुअल नहीं है?
0: हाँ, सुनने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भीख मांग रहे हैं ना.

0: तीन मिनट हो रहे हैं 7:00। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस। और इस घंटे आज आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। अभी से ही बता रहे हैं, ऐसा होता है कि जब आप हम बर्थडे ग्रीटिंग्स ख़त्म कर चुके थे तब आपके मैसेजेस जो है ये आते हैं, उस समय पर टाइम नहीं मिलता, फिर बाद में जाकर आपको विश करते हैं। तब तक तो आप में से कितने लोग निकल पड़ते हैं, या तो कोई ऑफिस पहुँच जाता है, बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं। इसलिए हम अभी आपको याद दिला रहे हैं कि टाइम से पहले आप अपने मैसेजेस जो हैं ये 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर दें, ताकि आपको अराउंड 7:35-7:40 हम विश कर सकें।
1: बिल्कुल, और एक पर्टिकुलर टाइमिंग इसीलिए सेट की जाती है ताकि उस हिसाब से आप भी सुन सके, आप जिनको विश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको सरप्राइज करने की इच्छा रखते हैं, वो भी सुन सके। इट बिकम्स इजी फॉर एवरीवन, इजंट इट? सो इसीलिए अभी अगर आप सेंड कर देंगे, इट विल बी वेरी इजी आपके लिए भी, हमारे लिए भी, समय के अनुसार सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल हमने पिछले घंटे जो सवाल पूछा था
0: कि भीख मांगा था
1: वैसे नहीं बोलना था, आपने ही तो बोला था ऐसे नहीं बोलना है। हाँ, तो कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ लोगों को आई दया हम पे सुबह सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कहा कि अजय ने, मॉर्निंग विजय भाई, ये कहना चाहते हैं कि ही इज विद मी, ही आई एम विद पूजा। इन्होंने लिखा है ओके विद सुशी, तो लाइक नहीं है, डिसलाइक नहीं है, ही इज ओके विद सुशी।
0: ओके, और 8844 इन्होंने कहा है आई डोंट लाइक बट माई डॉटर लव्स सुशी।
1: ओके, और एक और एक मैसेज है, उन्होंने कहा हाय विजय, हाय पूजा, आई ऑलवेज लिसन टू यू फ्रॉम 6 AM टिल 9 AM एवरी डे व्हाइल आई ड्राइव टू वर्क, समटाइम्स आई मैसेज बट आई नेवर कॉल्ड, हम मेक्स माय डे ऑसम। दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि आपने मैसेज किया लेकिन आज तक कभी कॉल नहीं किया है।
0: थैंक यू सो मच, कम से कम आपने बोला तो कि है आप
1: सुन रहे हैं हमें।
0: गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत सत श्री अकाल। आई डोंट लाइक सुशी बट आई डू लाइक teriyaki chicken on rice.
1: अच्छा, ये भी बहुत पॉपुलर है ना?
0: Yeah, my both daughters love sushi. Have a great day ahead. Warm regards, Hardeep. Thank you so much, मेरे भाई, आपके मैसेज के लिए।
1: Ruben from Papa Toyota, इन्होंने मैसेज किया है, जो वो बता रहे थे ना कि मैं कभी कभी मैसेज करता हूँ लेकिन कॉल नहीं किया आज तक।
0: अच्छा, Ruben
1: है। Ruben है from Papa Toyota.
0: Is it Ruben or Ruben?
1: I'd like to say Ruben.
0: Okay.
1: अगर Ruben होगा भी तो आज से Ruben.
0: राम राम, गुड मॉर्निंग गाइज, हैव अ गुड डे, एश फ्रॉम पाम्स्टन नॉर्थ। अच्छा चलो, ऑकलैंड के बाहर से एक मैसेज तो आया।
1: थैंक यू सो मच एश, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यार सुबह सुबह आप सबने इतनी कोशिश की हमारे साथ बने रहने की, मैसेज किया हमें, विच वी ट्रूली एंड रियली अप्रिशिएट, बिकॉज हमें पता है कि आप सुन भी रहे होते लेकिन इतनी भाग दौड़ लगी रहती है सुबह सुबह कि कभी कभी यू डोंट हैव टाइम, एंड व्हाइल यू आर ड्राइविंग तो आप मैसेज कैसे ही करोगे। तो हमारा ना यही एक पंगा पड़ जाता है, लोग सुनते तो है लेकिन जब इंटरेक्शन की बात आती है तो थोड़ा अटक से जाते हैं, बिकॉज पीपल आर ऑन द गो, ऑन द मूव, क्वाइट बिजी अर्ली इन द मॉर्निंग ना।
0: हाँ, और फिर हम बहुत लोनली महसूस करने लगते हैं ना।
1: एक दूसरे के साथ यहीं पे हैं पर फिर भी बहुत लोनली महसूस
0: करने लगते हैं। खैर, जो भी हो, इस घंटे थोड़ी देर में योर राशि वाइब्स और आज का सेलिब्रिटी अलार्म भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है, तो आप हमारे साथ रहें। इस प्रोग्राम में 7:30 बजे न्यूज हेडलाइंस भी हम लेकर आएंगे।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papio. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: राशि वाइब्स का वक्त अब हो चुका है. सबसे पहले मेष यानी एरिज, आज सोशल वर्क करने के लिए आप काफी इंस्पायर्ड रहेंगे. मान सम्मान आपको मिलेगा. रुके कामों में कुछ तेजी देखेंगे. ऑफिस में भी दिन अच्छा जाएगा, लेकिन साथ ही आपके सही काम का भी विरोध किया जाएगा, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा.
3: वृषिनी टोरस, आज आपके लिए बताया गया है कि फायदे के बहुत से मौके आपके हाथ लगेंगे. चोट या बीमारी से बचने की पूरी कोशिश आपको करनी है, इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और दूसरी ओर आपके लिए ये भी कहा गया है, दूसरों की मुश्किलों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अदरवाइज उनकी मुश्किल कब आपके लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा.
2: मिथुन यानी जेमिनी, अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखें. ऐशो आराम की कोई चीज खरीदने के बारे में आप सोच रहे थे, अच्छी तरह से सारे पहलुओं को आप देख लें. कोई ऐसा काम ना करें जिसके वजह से आपको बाद में पछताना पड़े. आज लोग आपसे काफी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा.
3: और साथ में आपको याद दिला रहे हैं अबाउट कर्क एंड कैंसर, कोर्ट कचहरी के मामले में कोई भी लीगल मैटर जो है आपका, अगर ये एक प्रॉब्लम बना हुआ था तो फाइनली इसका सोल्यूशन मिलेगा एंड आपको चैन की सांस लेने का

0: मौका मिलेगा इस मामले में, आपके जो लाइफ पार्टनर है इनका सपोर्ट मिलेगा आपको मुश्किल से मुश्किल काम करने में, और घर बाहर दोनों ही ओर आज काफी खुशहाली काफी प्रसन्नता आप एक्सपीरियंस करेंगे।
1: सिंह यानी लियो, फाइनेंशियली दिन आपका अच्छा होगा और लोन्स वगैरह कुछ कम हो गए, बिजनेस अगर करते हैं तो फायदा होगा। फैमिली के बारे में आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं और आज जमीन या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के बारे में आप सोच विचार कर सकते हैं।
0: कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए कहा गया है किसी बहुत ही हैप्पी चीज में भाग लेने का ओकेजन में, इनफैक्ट भाग लेने का मौका आपको मिलेगा। आप अगर ट्रिप पर जा रहे हैं कहीं पर भी तो आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग साबित होगा, ये स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे, समथिंग यमी जो आप एंजॉय करने वाले हैं, एंड दिस पर्टिकुलर टेस्ट विल स्टे विद यू फॉरएवर एंड फॉरएवर।
1: तुला यानी लिब्रा, आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ख्याल रखे दूसरों की बातों में बहकावे में आप बिल्कुल ना आए और फालतू बातों पर ध्यान ना दे, तभी जाकर आपका फायदा जो है ये बढ़ेगा। और दौड़ धूप भी आज कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हो सकता है काम पर उतना फोकस आप ना कर पाए।
0: और उसके बाद आज वैसे बताया जा रहा है वृश्चिक की स्कॉर्पियो के लिए कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जैसा भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, किसी से गिफ्ट वगैरह जो है ये भी आपको मिल सकता है, और जो कोशिशें आप कर रहे हैं एक अच्छा रिजल्ट पाने की, अपनी लाइफ को बदलने की फॉर गुड, अच्छे चेंजेस अपनी लाइफ में करने की, तो ये आप जरूर हासिल कर पाएंगे आज।
1: आज धनु यानी सेजिटेरियस, आपको दूर से कोई अच्छी खबर मिलेगी, पॉसिबल है घर पर मेहमान आए, इससे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, किसी भी तरह के बात विवाद में बहस में आप ना पड़े, जल्दबाजी से आपको ही नुकसान होगा आपका इस बात का ख्याल रखना है। और आज कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है।
0: और उसके साथ साथ आज बताया जा रहा है मकर यानी कैप्रिकॉर्न को आपके लिए कि कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेने से पहले बहुत सोच समझकर आपको ये लेना होगा, और आज बताया जा रहा है ये भी कि किसी अनहोनी होने की आशंकाएं हैं, डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, शारीरिक कष्ट आपका जो है ये भी संभव है, मतलब पॉसिबल है आपको फिजिकली किसी भी तरह से हार्म पहुंचे, इसीलिए ट्राई एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड बी वेरी वेरी केयरफुल।
1: और कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपको ख्याल रखना है दूसरों के झगड़े में बिल्कुल ना पड़े, बेकार में हंसी मजाक ना करें, एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं और उसके साथ पॉपुलैरिटी भी आपकी बढ़ेगी, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ या तो खो सकती है या समय पर आज आपको मिलेगी नहीं।
0: और फाइनली आज मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा जा रहा है कि बिजनेस रिलेटेड किसी ट्रिप पर जाएंगे तो सक्सेसफुल साबित होगा, फायदे के बहुत से मौके आपके हाथ लगेंगे, और आज फालतू बातों पर ध्यान ना दे, समय की बर्बादी आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। तो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे, उम्मीद करते हैं दिन आज का आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे।
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: कल जाकर कई लोगों ने सेलिब्रिटी अलार्म का सही आंसर जो है ये हमें दिया एंड इट वाज इंटरेस्टिंग. इवन दो अ फ्यू आंसर्स कल इनकरेक्ट आए लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स जो है कल सही थे.
1: वो भी क्लूज देने के बाद इन्फेक्ट आए थे ना. जस्ट इनके ऐसा एक सिचुएशन होता जहां पर शायद हम क्लू नहीं देते तो आई पर्सनली फील कि कल का सेलिब्रिटी अलार्म आज वापस सिम कर रहे होते. बट एनीवेज इंटरेस्टिंग था व्हाटएवर द सिनेरियो वाज व्हाटएवर द सिचुएशन वाज. आज देखते हैं कि आप में से कितने लोग हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में जो सेलिब्रिटी हैं इनको पहचान पाते हैं या नहीं.
0: Have a listen.
2: I obviously thought about whether it was the right thing to do this, but I guess, you know, it was this announcement of that, well, really is I'm going to be hanging up my boots at the end of.
0: तो ये हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी.
1: I personally feel मैंने इनकी आवाज कहीं तो सुनी है पर नाम नहीं याद आ रहा मुझे.
0: नाम नहीं याद आ रहा है.
1: No. Okay. Because I feel like this voice is very, you know, known. Like मैंने कहीं ना कहीं तो सुना है पर उस आवाज में एक चेहरा दिख ही नहीं रहा मुझे फिलहाल.
0: ओके okay. इतना आपको बता दें कि he is from New Zealand. He is from New Zealand. एक बार फिर आवाज जो है ये आप सुन लें.
2: Obviously thought about whether it was the right thing to do this, but I guess, you know, it was this announcement of that, well, really is I'm going to be hanging up my boots then.
0: तो ये हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी.
1: अगर आपने इनकी आवाज पहचान ली है तो जल्दी से हमारे पास आप टेक्स्ट करें. सबसे पहले आपको लिखना है आज BF, फिर उसके बाद में सेलिब्रिटी का नाम और अपना नाम लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेज दे. एंड वी विल सी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस आवाज को सही सही पहचाना है.
3: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में एसोसिएट एजुकेशन मिनिस्टर डेविड सिमो ने बताया कि ट्रुवंसी के खिलाफ चलाए गए क्रैकडाउन में जिस अकेले पेरेंट पर केस चला था वो कोर्ट की तारीख पर हाजिर नहीं हुए। सिमो ने बताया कि अब तक 36 पेरेंट्स पर एक्शन लेने की बात थी, जिसमें से कोर्ट की धमकी के बाद 18 यानी 18 फैमिलीज ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। 17 पर प्रोसेस चल रहे हैं और एक पेरेंट के ना आने पर अदालत में अगली तारीख दी गई है। क्राइस्टचर्च के एक स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करने और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ठीक से मैनेज ना करने के आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया है। एजुकेशन रिव्यू ऑफिस की एक रिपोर्ट के अनुसार आरएनजेड ने कहा है कि स्कूल के एचआर प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए गए हैं, जहां कई स्टाफ मेंबर्स का एम्प्लॉयमेंट से पहले पुलिस वेरिफिकेशन और सेफ्टी चेक तक नहीं किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में आज सुबह पोर्चुगल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एक एक गोल से बराबर ठहरे। सुबह 8 बजे अभी इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच एक बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। दिन में 11 बजे घाना पनामा से खेलेगा और आज 2 बजे आज ग्रुप के का मैच उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। ब्लैक कैप्स और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच जो है ये शुरू हो चुका है। ब्लैक कैप्स ने पहले बैटिंग की और पहले इनिंग्स में 7 खिलाड़ी खोकर 291 रन बनाए हैं। FIH विमेंस हॉकी नेशंस कप के अंतर्गत आखिरी राउंड के मैचेस आज खेले जाएंगे। आज 10:45 AM पर इंडिया यूरुग्वे से खेलेगा। दिन में 1 बजे USA और जापान का खेल होगा। 3:45 PM पर कोरिया चिली से खेलेगा और वेंटेज ब्लैक स्टिक्स और फ्रांस का मैच आज शाम 6 बजे खेला जाएगा, जिसके बाद शनिवार को सेमीफाइनल्स जो है ये खेले जाएंगे। और इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
0: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
3: Spend and win at Silverdale.
4: A little misty and wet this morning. Weather getting better. A high of 16. Into the city, Northern Motorway, 33 minutes. Constellation Drive to town. Slow at Silverdale and Derry Flat. Heavy gravel to the bridge. Northwestern, 37 in from Massey. We're slow all the way from Upper Harbour. A few heavier spots. Southern, 50 in from Monaco. Slow from Papakura. Heavy patches frequent. A crash southbound just before Drury. Southwestern, slow both ways.
3: Spend $50 in Silverdale to enter to win an SUV. Silverdalebusiness.co.nz. T's and C's apply.
5: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
6: You don't need your toilets clean, do you?
5: Find a cheaper mechanic in Invercargill? Pretend you know what they're talking about?
7: Pretty sure the carbonara's playing up.
5: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
8: Cheers, Midas!
9: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
10: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
9: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
10: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
11: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
12: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
13: Bunnings brings you the lowest prices on Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
8: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia, and beyond, and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London, and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
2: The beat of Bollywood.
14: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai. Chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
1: 18th of June, आज आपका या आपके किसी चाहने वाले का, किसी स्पेशल का बर्थडे है. ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. सबसे पहले ट्विशा, हैप्पी 16th, स्वीट हार्ट. यू हैव गॉट द स्पार्कल, द स्पिरिट एंड अ होल वर्ल्ड वेटिंग फॉर योर मैजिक. कीप बीइंग काइंड एंड बीइंग योरसेल्फ माइनस द टेंट्रम्स. दैट्स व्हाट मेक्स यू अमेजिंग. जस्ट रिमेंबर, योर पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट. लव यू टू द मून एंड बैक. Papa Mehul hai, Mummy Vidhi hai. You light up every room you walk into, and our love wraps around you every single day. Grandpa Vijay, Grandma Purnima hai, and not a boring day today. Enjoy and get spoiled. Hari Kaka aur Viraj Bhaiya ki or se bhi message aya hai. So Twisha, a very very happy birthday. 16 saal ki aaj aap ho rahi hain. Isi tarah saalon saal aap apni salgirah manate rahein aur aapki salgirah ki khushiyon mein hum shamil hote rahein. Yahi kamna hai hamari or se bhi. Aapko aaj ke is din ki bahut sari shubhkamnaen.
2: Morning Madness.
1: अभी 23 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. और आज का सेलिब्रिटी अलार्म, कुछ गिने चुने गलत आंसर्स आए थे. किसी ने सनी बिल विलियम्स कहा, किसी ने पीटर बर्लिंग कहा, और इसके अलावा काफ़ी सही आंसर्स जो हैं ये भी हमारे पास आए थे. सो थैंक यू सो मच आप सभी के अटेम्प्ट्स के लिए. लेकिन इससे पहले कि हम आपको सही आंसर बताएं, एज यूजुअल एक और बर्थडे मैसेज कुछ देर से आए हैं. हैप्पी 5th बर्थडे टू आवर सन Shrey, you are our supreme delight, our most precious gift, and the inspiration behind our brightest smiles. Witnessing your growth over these 5 remarkable years has been the most enchanting experience. May your day be filled with joy, love, and treasured memories. Mummy and Papa love you more than words can ever convey. Love, Mummy hai Preeti, Papa Sumit hai, aur aapke jitne bhi friends and family members hai, Shrey, sabhi aapko yaad kar rahe hai hamari or se bhi. Aaj ka ye special day aapko bahut bahut bar shubh aur mubarak ho. A very very happy birthday aapko. और आज सेलिब्रिटी अलार्म में जो आवाज़ हमने आपको सुनाई थी, फॉर्मर ऑल ब्लैक्स कैप्टन रिची मको, और कई लोगों ने अपने सही आंसर्स भेजे थे. थैंक यू सो मच.

0: Future. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Traffic.
2: Join Skinny, get $30 happier.
3: High of 16, weather slowly improving through the day. Into the city, southern motorway quite heavy, almost an hour Mataco to town. Slow all the way from Papakura, heavy patches frequent. Got a crash southbound just before the Drury off-ramp. Northern 35 Constellation to town, slow at Silverdale, heavy gravel to the bridge. Northwestern 40 in from Massey, slow from Upper Harbour, heaviest at Te Awatū and St Luke's.
2: Switch to Skinny and get $30 credit. Available on $27 plus plans, terms apply.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
5: Save kijiye at Mytitan Mega Westgate or Henderson with 50% off selected systema, including deals on Karcher 18-volt power garden skins and max rack shelving. Plus spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz.
7: Here at Arnott's New Zealand, that sound can mean something really special. It's time for a bloody important meeting. A group of us head off to our local blood donation centre to give blood and plasma. Together, that's a lot of lives our team is helping save.
8: Join Bella and the team at Arnott's New Zealand. Head to nzblood.co.nz, book your donation, then send a bloody important meeting invite to your crew. Give blood, give plasma, save lives.

0: सो मॉर्निंग मैडनेस में आपके लिए आज का थ्रोबैक हम लेकर आ रहे हैं, बट बिफोर ये आपके लिए हम प्ले करें, एक और एक खबर आपके नाम हम करना चाहते हैं। खबर क्या, अपॉर्चुनिटी है बेसिकली आपके पास कि आप भी इसका हिस्सा जो है ये बन सके, बिकॉज इट्स कमिंग टू एन एंड वेरी सून। आज 18th of June है, 20th of June को ये इसका लास्ट शो जो है ये रहेगा। एंड द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली इंडियन इंक थिएटर की ओर से बलून डॉग। आपने वैसे कभी कहीं किसी थिएटर में जाकर एक प्ले देखा है, लाइक विटनेस किया है हाउ इट फील्स टू यू नो सिट डाउन एंड वॉच अ प्ले?
1: नहीं,
0: तो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, सो यू वुडंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द मैजिक बिहाइंड द स्टेज प्ले या फिर थिएटर में प्लेज वगैरह जो है ये कैसे होते हैं। एंड आप भी अगर इनके साथ इस लिस्ट का हिस्सा है तो आपको भी पता नहीं होगा, विच इज वाई दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टार्ट ऑफ अपना जो एक्सपीरियंस है, ये पहला जो अपॉर्चुनिटी ऑफ यू नो ट्राइंग समथिंग पहली बार, जो कहते हैं कि कोई भी चीज जब आप पहली बार करते हैं तो वो होता बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो पहला एक्सपीरियंस पहला होता है, इट कान बी डन ट्वाइस और थ्राइस, राइट? सो ये जो पहला एक्सपीरियंस आपका, इसे आप मैजिकल बना सकते हैं। एंड यू कैन गो एंड वॉच इंडियन इंक थिएटर कंपनी की ओर से इनका बहुत ही अमेजिंग प्ले जिसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है यहाँ न्यूजीलैंड में, विच इज कॉल्ड बलून डॉग। और इसे परफॉर्म करने वाले हैं अवार्ड विनिंग परफॉर्मर जेकब राजन। और वैसे जेकब राजन, इन्होंने इसकी कहानी जो है ये भी लिखी है अपने इसी प्ले के डायरेक्टर जस्टिन लिविस के साथ मिलकर। और कमाल की बात यह है कि इसकी कहानी इज इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो बिलवड स्टोरी है काबुलीवाला से। सो अगर आपको काबुलीवाला की कहानी याद होगी, आपको पता होगा ना कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसका एक फ्रेंड बन जाता है काबुलीवाला बेसिकली, और उनका फ्रेंडशिप जो है कैसे इवॉल्व होता है, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होता है, उसके बारे में वो कहानी थी। और ये जो कहानी है बलून डॉग की, दिस इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय इट, जहां पर 21st century में ऑकलैंड में ये कहानी सेट की गई है। एंड इट्स बेसिकली एन अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old गर्ल एंड साथ में एक लोनली माइग्रेंट वोका के बीच की ये फ्रेंडशिप। उनके फ्रेंडशिप से आसपास के लोगों को क्या एहसास होता है, उनकी जो फैमिली है उनकी आंखें खुल जाती हैं अबाउट सम अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स अबाउट देयर ओन पर्सनैलिटी एंड देयर ओन थिंकिंग।
1: तो आप जरूर जाकर फाइनल यू नो कपल ऑफ डेज बाकी रह गए हैं, क्यू थिएटर में इसे एंजॉय कर सकते हैं। टिकट्स अपने आप ले सकते हैं iticket.co.nz विजिट करते हुए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 11 degrees है टेम्परेचर ओकलैंड में राइट नाउ. आज का हाई 16, ओवरनाइट कम से कम 9 degrees. कुछ बादल छाए रहेंगे, रह कर हल्की बारिश होगी. कुछ कुछ जगह पर अभी भी आप फॉग एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट आज का शाम 5:12 पर होगा.
0: The show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: रश आवर हर सुबह बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये वो घंटा होता है जहाँ पर आपसे बातें होती हैं. लेकिन थर्सडेज को हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि एवरी थर्सडेज को हमारी बातें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला से भी होती हैं, आज भी होंगी. इसीलिए व्हाट्स योर टेक जब हम आपके लिए लेकर आए, तो मेक श्योर यू डू कॉल इन क्विकली और टेल अस व्हाट्स योर टेक, जो भी टॉपिक होगा उस पर. लेकिन अभी ट्रेंड क्या कर रहा है?
3: वेल, हम जब भी ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए लेकर आते हैं, तो हम तरह तरह की चीज़ें, बी इट ये कुछ खाने की चीज़ हो, कोई शख्स हो, कोई गाना हो, कोई फैशन हो, कोई खबर हो, ये सारी चीज़ें, हाँ, तो हम हर हर एस्पेक्ट देखते हैं ट्रेंड करने का. आज ऐसा ही एक डिश आपके लिए हम लेकर आए हैं. डम्पलिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, या बहुत से लोग उसे मोमोज या मोमो जो है ये बोलते हैं. तो इसके बारे में आपको बताएं कि इसे फोल्ड करने का जो तरीका होता है, इट लुक्स सो आर्टिस्टिक, सो ब्यूटीफुल. लेकिन बहुत से लोग जब डम्पलिंग्स अब या फिर मोमो बनाते हैं, तो उनको वो आता नहीं है ना कि उतना खूबसूरत तरीके से वो कैसे कलियां जो ये फोल्ड कर बनाए. तो बहुत से लोग इसे थोड़ा हार्ड भी मानते हैं. और ऑन दी अदर हैंड, इन अनदर सिचुएशन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि इसे बनाने का जो फोल्ड करने का जो तरीका होता है, पीपल फाइंड इट अ बिट टाइम कंज्यूमिंग एज वेल. तो अभी फिलहाल के लिए एक नया किस्म का, नई टाइप का जो डम्पलिंग है, ये ट्रेंड कर रहा है, और वो है डिप डो. डिप डो क्या होता है? बेसिकली इसका कोई डो नहीं बनाया जाता. जो आप अंदर का कंटेंट है, चाहे आप मीट रख रहे हो या फिर आप जो वेजीज रख रहे हो, इन्हें अच्छी तरह से पकाकर उन्हें कॉम्बाइन करने के लिए एक कॉर्नफ्लावर और समथिंग की बाइंडा जो है बेसिकली ये डाला जाता है. फिर उसे राउंड राउंड बोल्स बनाए जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द इनसाइड कंटेंट. उसका राउंड राउंड बोल बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक छलनी जैसे चम्मच में रखना है और फिर इसे पानी में डिप करना है. पानी में डिप करने के बाद आपको उसको सूखा आटा में डालना है, फिर ऐसे से शेक करते हुए वो सूखा आटा पूरा कवर कर लेगा. फिर वापस से उसको पानी में डालना है, फिर सूखा आटा में डालना है, फिर उसे शेक करना है ताकि पूरा सूखा आटा से वापस से कवर कर ले. 3 बार आप ऐसा करोगे, उसके बाद आपको बस इसे उबलते हुए पानी में डाल देना है, बॉइलिंग वाटर.
1: सुनने में प्रोसेस बड़ा लंबा लग रहा है.
3: इट्स नॉट लंबा एट ऑल, क्योंकि आपको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू डिप इट इन वाटर, then dip it in flour, dip it in water, dip it in flour, and that's it. आप बस इसे फिर boiling water में डाल दो, और boiling water में डालने के बाद वो पक जाता है, फिर आप उसे निकाल लो. So एक बहुत पतला सा एक layer जो है, ये पूरा जो meat content है या फिर जो अंदर का जो भी content है आपका, उसे cover कर लेता है. इसे बोलते हैं dip dumpling, और ये बड़ा easy तरीका है without fold करते हुए इसे बनाने का.
1: Okay. So dip dumpling is trending right now. I love Nepali momos है. They are really amazing.
3: वो तो है ही ना, ओरिजिनल ही है उनका, इसी वजह से.
1: इट्स यू नो स्पाइसी वंस, दे आर रियली, और यू नो कुछ कुछ जो ग्रेवी के साथ भी आते हैं.
3: यू नो जब आप मोमो जो है इसे टेस्ट करना चाहते हैं, तो ऑथेंटिक मोमो जो है पहले आप ट्राई कर कीजिए, फिर बाद में उसका जो भी वर्जन होता है अलग अलग, वो आप ट्राई कर सकते हैं. बट देन यू विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल टेस्ट ऑफ इट ना.
1: सो ये आज की ट्रेंडिंग खबर आपके लिए. थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक हम लेकर आएंगे.
0: लैला लैला लैला लैला लैला लैला जाल तेरा लैला.

0: व्हाट्स योर टेक में आज एक ऐसी चीज के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं जो जब सोशल मीडिया पर आया, ओवर 300,000 पीपल जो है अभी तक उन्होंने इसको लेकर रिएक्ट किया है। कुछ लोगों ने इसके फेवर में, कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। तो हमने सोचा आज यही आपके सामने रखते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर टेक। राज शमानी, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्टर हैं और उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन जो है ये शुरू कर दिया है, डिबेट सा शुरू कर दिया है बेसिकली अबाउट द फाइनेंशियल माइंडसेट जेंजीज के। उन्होंने एक्स पर जाकर शेयर किया और जो उन्होंने एक्स पर शेयर किया वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा, द रीजन जेन जी स्पेंड्स कंफर्टेबली ऑन स्मॉल लग्जरीज लाइक हाई एंड कॉफी is that long-term milestones like buying a home feel entirely out of reach in this economy. So they prioritize immediate quality of life over distant financial milestones. कि Gen Z's जो हैं क्यों छोटी-मोटी खुशियों पर या जैसे कि high-end coffee इन पर पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उनके लिए जो लॉन्ग टाइम अचीवमेंट्स हैं जैसे अपना खुद का घर खरीदना, ये उनकी पहुंच से बाहर लग रहा है, इसीलिए वो इमीडिएट क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी की जो उनकी लाइफ क्वालिटी है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं रादर देन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। तो ये उन्होंने जाकर एक्सपर्ट शेयर किया, जिसके बाद कई लोगों के साथ उनकी इस बात ने रेजोनेट किया और बट कई लोग जो हैं ये उसके फेवर में भी नहीं है। तो आप यही बात हम आपके सामने रख रहे हैं, व्हाट्स योर टेक। राज शमानी ने जो शेयर किया है क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं, व्हाट्स योर टेक। 0800 004866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। याद रखें थर्सडे हैं तो वक्त कम होगा, इसीलिए जल्दी से आप कॉल करके अपना जो साइड है ये रख सकते हैं या जो भी आप के मन में आ रहा है, जो आप फील करते हैं वो आप बता सकते हैं। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग एफर्स।
1: हेलो
0: हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो एफर्स?
1: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया चल रहा है, बताइए।
1: सॉरी मैं थोड़ा नेटवर्क से बाहर, तो पता नहीं आवाज ब्रेक हो रही है
0: ना।
1: जी मुझे लगता है इसे देखिए, अभी जैसे जेंजिस के बारे में जो है तो मुझे लगता है टोटली डिफरेंट जनरेशन है और उनको उनके हिसाब से लाइफ जीनी देनी चाहिए जो उनको करना है। तो मैं वैसे ये नहीं कहूंगा कि वो इसमें स्पेंड क्यों कर रहे हैं या उसमें स्पेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आप अगर जैसे अगर आप इंडिया में जैसे एक घर लेना, इट्स नॉट इजी थिंग इवन नॉट हियर, राइट? तो अगर उनको उनकी जो दूसरी चीज है जिनसे उनको खुशियां मिल रही है जिससे वो खुश रह सकते हैं, तो लेट देम डू इट। और जब उनको समय सही लगेगा, जब वो कुछ कर सकते हैं तो ऑफकोर्स उसके लिए जाएंगे।
0: Fair enough.
1: तो मुझे नहीं लगता कि ये था, राइट? या
0: थैंक यू एफाज, थैंक यू आपके कॉल के लिए। तो आप भी हमें बता सकते हैं, वैसे कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया है जाकर कि जेंजीज जो है ये बेनिफिट करते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो प्रीवियस जनरेशन्स ने उनके लिए क्रिएट किया है। एक कमेंटेटर ने बताया कि मेनी यंग अडल्ट्स हैव पेरेंट बिल्ट होम्स फ्रॉम जनरेशन एक्स और मिलेनियल कोहोर्ट, जिनके पास ऑलरेडी असेट्स हैं और घर वगैरह हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये किसी ने जाकर शेयर किया है। व्हाट्स योर टेक? कैशुअल का मैसेज जो है ये आया है, बाइंग अ हाउस इज नॉट एवरीवन्स प्रायोरिटी, इज इट्स नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू देम। ये भी सही है। तो व्हाट्स योर टेक? जैसे राज शमानी ने जाकर लिखा है एक्स पर या जो शेयर किया है, द रीजन जेन जी स्पेंड्स कंफर्टेबली ऑन स्मॉल लग्जरीज लाइक हाई एंड कॉफी इज दैट लॉन्ग टर्म माइलस्टोन्स लाइक बाइंग अ होम फील्स कंप्लीटली आउट ऑफ रीच इन दिस इकोनॉमी। किसी भी कंट्री को भी आप अभी ले सकते हैं, न्यूजीलैंड को ही आप ले लें। सो दे प्रायोरिटाइज इमीडिएट क्वालिटी ऑफ लाइफ over distant financial milestones. Ye unhone kaha. What's your take? 0800-004866. ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. किसी ने कहा है पार्शियली ट्रू, बाइंग होम डजंट मेक सेंस दीज डेज ड्यू टू चेंज इन वर्क प्लेसेस. ओनिंग अ कार फील्स लाइक हेडेक ड्यू टू हाई ओनरशिप कॉस्ट. यही उन्होंने लिख दिया है. गुड मॉर्निंग. हेलो.
2: मॉर्निंग विजय जी. एक फैक्टर है यस, इंडिया के हिसाब से तो उसको ट्रू कह सकते हैं क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली द पॉपुलेशन बेस इज मैसिव. पर अगर उसको आप न्यूजीलैंड कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें तो यस, अगर एक फ्रेश स्टार्टर को न्यूजीलैंड ऑकलैंड में घर लेना है दैट कुड बी चैलेंजिंग बिकॉज ऑब्वियसली द प्राइस इज हायर. बट यू डोंट हैव टू ऑलवेज लुक एट बाइंग द हाउस फॉर योर ओन कंजम्पशन. आप उसको सपोज करें किसी छोटे शहर में ऐसे इन्वेस्टमेंट ले लें क्योंकि न्यूजीलैंड में इन्वेस्टमेंट्स आपके काफी सेफ है एज कम्पेयर टू इंडिया. अगर आप वहाँ पर सपोज करें घर लेते हैं तो आपको आता है कोई कब्जा ना मार ले, देयर इज लीगल रिगमराज, लोग अब्यूज करते हैं उस चीज को. बाकी ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये चीज न्यूजीलैंड में अप्लाई की जाए इट्स वेरी सेफ. तो फॉर इंस्टेंस अगर फ्रेश स्टार्टर है, इवन पेरेंट्स की हेल्प नहीं भी हेल्प हो तो अगर वो थोड़ा सा सेव करके गो आउट ऑफ ऑकलैंड और एनी वेयर इन द कंट्री उनको छोटी सी प्रॉपर्टी कहीं भी मिल जाती है एंड दे कैन रेंट इट आउट. तो एटलीस्ट इट्स अ फर्स्ट स्टेप होल्ड जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा इक्विटी बना सकते हैं ओवर द टाइम एंड वंस दैट गेट स्टेबलाइज्ड वो जहाँ पर भी अपना ले सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है तो ले सकते हैं.
0: बिल्कुल सही भाई.
2: ऑलवेज अ वे टू लुक अराउंड इट. तो न्यूजीलैंड के कंटेस्ट में आई थिंक जेन जीज के लिए यहाँ पर ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. यू नॉट लिमिटेड टू जस्ट योर स्टीरियोटाइप टिपिकल वो 5-6 फील्ड. यहाँ पर आप कुछ भी करते हैं अगर आप लगन से करेंगे the success is yours.
0: And do you think ki Gen Z's kar rahe hain? I've seen some stories jahan par, you know, 19, 21 years ki umr mein yahan par logon ne apni properties wagaira jo hai ye khareed li hain.
2: Haan ji, kafi hai jo log motivated hain wo karte hain. We know families jinke bachon ne ye kiya, yes parents ki taraf se thodi support ya help thi but bacche kafi motivated the to they did do that. So in a way ye cheez aapki परवरिश में भी आ जाती है कहीं ना कहीं. जब आप ग्रोइंग अप यू सी व्हाट योर पेरेंट्स आर डूइंग एंड यू नो एंड दे हैव बीन सेविंग स्मॉल मनी एंड इन्वेस्टिंग इनटू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट. तो कहीं ना कहीं अगेन आई एम नॉट जजिंग अदर पीपल हु व्हाटएवर लाइफस्टाइल दे हैव बट कहीं ना कहीं वो इनकल्केट हो जाती है उस लाइफस्टाइल के अंदर.
0: थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए एंड शेयरिंग व्हाट्स योर टेक. एंड Samhita ne kaha, I don't agree to this. Many Gen Zs who spend on expensive coffees and small luxuries are often from families that already have homes or financial support. So it's more about lifestyle inflation and social media influence than the economy making big goals impossible. Interesting takes jo hai ye aa rahe hain. Abhi to utna time nahi hamare paas. Aap chahe to 5599 par jo bhi aapki raaye hai, whatever your take is, wo aap hame text zarur kar sakte hain.
3: Hollywood's most wanted.
4: Gundi kar dao. Ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 28 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा द रश शो आपके लिए जारी है और एवरी थर्सडेज को हमारी बातें जो हैं लॉजिक फाइनेंस के गुरु से भी होती हैं. गुरु वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो.
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई, थैंक यू.
0: और आज हमने सोचा कि आपसे बातें कर लेते हैं फर्स्ट होम बायर्स के बारे में. काफ़ी दिन हुए इनके बारे में कुछ खास बातें हमने नहीं की एंड हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ खबर जो है ये आती रहती है हाउसिंग मार्केट के बारे में. आज सुबह भी मैं पढ़ रहा था कि जो रेजोल्यूशन हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच, उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स का क्या हो सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स. तो फर्स्ट होम बायर्स का सिचुएशन अभी क्या है, ये प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं या फिर उनके लिए अभी हालात कैसे हैं?
1: विजय भाई, आज की मार्केट में जो सबसे बड़ा शेयर है वो फर्स्ट होम बायर्स का ही है. फर्स्ट होम बायर्स की जो मार्केट है प्रीटी फुल ऑन. जो आप बोल रहे हैं कि अभी मार्केट में कौन खरीद रहा है फर्स्ट होम बायर्स, सबसे ज्यादा हाउसेज जो अभी मार्केट में बिक रहे हैं वो फर्स्ट होम बायर्स ही खरीद रहे हैं. और फर्स्ट होम बायर्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जो उनको अभी जो प्राइजेस मिल रहे हैं बड़े शार्प मिल रहे हैं. दिस ऑल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट होम बायर्स की, जहां पर कुछ कुछ फर्स्ट होम बायर्स को तो जो ब्रांड न्यू घर ले रहे हैं उनको तो 1% ऑफ द लोन अमाउंट उनको कैशबैक भी मिल रहा है अगर वो फर्स्ट होम बायर अपना ब्रांड न्यू घर ले रहे हैं. अगर वो एग्जिस्टिंग घर ले रहे हैं और विद यू नो लेस देन 20% डिपॉजिट ले रहे हैं, लेट्स से 10% ले रहे हैं, तो उनको $5,000 डिपॉजिट मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है. अगर वो 15% डिपॉजिट के साथ ले रहे हैं तो सम बैंक्स आर ऑफरिंग 1% इवन ऑन द ओल्ड हाउस एज वेल. अगर आप लेते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द फर्स्ट होम बायर्स, बट ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ डिक्लाइंस इन दैट स्पेस फॉर द फर्स्ट होम बायर्स. इन लास्ट 3 वीक्स मैंने 3 डिक्लाइन डील्स जो आदर थ्रू अनदर बैंक और थ्रू द ब्रोकर मेरे पास आई. आई हैव रिव्यूड इट, गॉट इट थ्रू एंड वो ही डील्स को मैंने प्रेजेंट किया टू बैंक एंड वी गॉट दोज डील थ्रू अप्रूव्ड. सो बेसिकली देयर इज ऑल्सो आई वुड से लॉट ऑफ आदर लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ प्रेजेंटेशन आउट इन द मार्केट, कि जहां पे जो डील अप्रूव हो सकता है उसको जैसे प्रेजेंट करना चाहिए और वही डील डिक्लाइन हुआ है, विच इज अगेन शोज की अगर आपका डिक्लाइन डील हो रहा है तो डजंट मीन दैट इट इज डिक्लाइन. डेफिनेटली पिक अप अ फोन, हैव अ चैट टू मी एंड विल डेफिनेटली फाइंड अ सॉल्यूशन. क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी देन आई विल स्टिक टू इट एंड आई विल गेट दिस अप्रूव्ड. तो या वो जो फर्स्ट होम बायर्स है डेफिनेटली इट इज वेरी हॉट मार्केट. और अगर आपको कहीं से भी नाराजगी मिली है, डिक्लाइन मिला है या नहीं होने का एक वर्ड मिला है, तो डेफिनेटली पिक अप फोन, हैव अ चैट. क्योंकि अगर मैंने हाँ बोली तो वो लोन होगा, लेकिन अगर मैंने ना बोल दी तो देन दैट्स या देन वी कैन डू एनीथिंग. सो बट आई विल लेट यू नो स्ट्रेट अवे ऑन द फोन.
0: ओके, तो अगर कोई चाहता है कि मुझे गुरु से बातें करनी है एंड देखने हैं कि क्या मेरा लोन अप्रूव हो सकता है या नहीं, हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू?
1: विजय भाई, सिंपल लॉजिक लगाना है. लॉजिक फाइनेंस आप सर्च करोगे गूगल पे, यू विल गेट माय डिटेल्स और वहां से आप रिव्यूज भी पढ़ सकते हो मेरे. मेरा 0800 नंबर फ्री नंबर है, विच इज 0800 लॉजिक जी. आप जब 0800 लॉजिक जी टाइप करते हो अपने फोन पे, इट कम्स टू मी, विच इज 0800-564-424. 0800-564-424 इज द नंबर टू गेट इन टच विद मी.
0: गुरु थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. अब नेक्स्ट वीक आपसे और बातें जरूर करेंगे.
1: थैंक यू विजय भाई.
0: थैंक यू. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ. हम
2: Accurate traffic.
3: Auckland Airport Park and Ride.
4: A high of 16, quite a cloudy one today. Coming in on the Northern Motorway, couple of issues. Got a breakdown at Dome Valley and closer to the city, a crash blocking a couple of lanes just after the Tristram on-ramp. 37 minutes in from Constellation, we are heavy from Greville. Northwestern, 44 minutes in from Massey, slow from Upper Harbour, heavy spots frequent. Southern, 58 in from Manukau, slow from Papakura, heavy from Otahuhu.
3: Park and Ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
2: TradeDepot.co.nz. Get 299 deals this week only at Trade Depot. Fridge freezers, 299. Washing machines, 299. Dishwashers, 299. Ovens, 299. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: Stretch your budget further this winter at Mitre 10. Get toasty for less with 20% off convection heaters. And let the savings flow with 20% off Aquatica tapware. T's and C's apply. Shop these great deals and more in-store and online at Mitre 10.
6: Beating pump prices is easy when you take a bus. And you won't even have to wait long. There are 45 bus routes around Auckland that run at least every 15 minutes from 7am to 7pm, 7 days a week. And a whole bunch that keep running till midnight with reduced frequency, so you can spend your money on a night out instead of just getting there. Chances are, there's a frequent or late night bus that's going your way. Check the AT Journey Planner, then just turn up and go.
7: Ma, ek chapati aur dena.
8: Haan, ek chapati mujhe bhi.
9: Jab Kashish Desi Ghee se khana banega, to yahi to hoga. New Zealand mein most advanced technology se bana. Grass-fed danedar cow ghee. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
10: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: 20 मिनट रह गए हैं 9 बजने में और जो मैच खेला जा रहा है अभी प्रथम हिस्से में जारी है एंड द स्कोर्स इंग्लैंड 1 एंड क्रोएशिया 1
11: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स गूगल PFSL टुडे

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Stay out with the family, explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
4: तो आज का थ्रोबैक आपके लिए इस घंटे पेश करने से पहले चलिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका आपको हम देना चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप जीत सके करण औजला इनसे मिलने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मतलब फिजिकली मिलने का नहीं लेकिन इनको जाकर देखने का इनका परफॉर्मेंस जो है ये विटनेस करने का मौका आपको मिल सकता है. आपने शायद सुना ही होगा बिकॉज इतनी बड़ी खबर ही ऑलरेडी बन चुकी है न्यूजीलैंड में जहां पर द ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड. इकलौता शो न्यूजीलैंड में ये करने जा रहे हैं स्पार्क एरिना में ऑन द 25th of August. एंड आप भी अगर एक करण औजला पगलू है करण औजला फैन है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास जरूर है कि आप इनको देख सके परफॉर्म करता हुआ. तो टिकट्स जरूर ग्रैब कर लीजिएगा. आप हमारा वेबसाइट hum.roba.nz विजिट कर सकते हैं या livenation.co.nz से भी आप टिकट्स जो है ये ले सकते हैं बिकॉज दिस इज अ शो दैट यू शुड नॉट मिस एट ऑल. इट्स हैपनिंग ऑन द आई थिंक ऑन
5: 25th of August.
4: यस इट्स अ ट्यूजडे
5: 25th of August को लाइव नेशन का प्री सेल आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट होने जा रहे हैं और करण औजला अकेले नहीं उनके साथ हिट मेकर इक्की भी आ रहे हैं. सो रिमेंबर इनका पी पॉप कल्चर टूर ये आपकी खातिर अब शुरू हो रहा है. डबल पासेस जीतने के मौके भी हम आपको दे रहे हैं. ऑल यू गॉट टू डू इज जंप ऑन टू आवर फेसबुक पेज. ऑलमोस्ट 300 पीपल आई थिंक कल जब मैंने देखा था इसमें रजिस्टर हो चुके थे और अभी आपके पास भी मौका है. आप जाकर फीचर्ड फोल्डर में पोस्ट देखें एंड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड या फिर हमारे साथ ही आप शामिल रहें और आपको एक डबल पास जीतने का मौका अब हम देने जा रहे हैं.
4: तो ये डबल पास अगर आपको जीतना है एक छोटा सा सवाल हम आपसे करेंगे और फिर उसका जवाब आपको हमारे पास सेंड करना है अपने नाम के साथ. कीवर्ड क्या लिखना है वो भी आप बता दो जल्दी से.
5: KA करण औजला का शॉर्ट फॉर्म. सबसे पहले KA लिखना है. K और A के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. KA टुगेदर. उसके बाद जो भी सवाल है उसका जवाब और अपना नाम लिखकर 5599 पर आप हमें भेजें.
4: तो आपको बताना है आज करण औजला का जन्मदिन किस रोज पड़ता है मतलब द डेट ऑफ बर्थ बेसिकली.
5: ओके तो इनका डेट ऑफ बर्थ ये आपको टेक्स्ट करना है. सो के आई अपना आंसर और अपना नाम अब 5599 पर आप हमें भेजें.

0: accurate traffic.
1: Wardrobes Direct 30th birthday sale on now.
2: Find it time, some cloudy patches, 16 hour high. Coming in on the northern motorway, a crash has been blocking the right lane just after Tristram. Slow at Silverdale and quite heavy still from Greville to the bridge, 36 minutes in from Constellation. Southern 43 in from Manukau, slow patches from Papakura, heavy Otahuhu to the city. Northwestern 37 in from Massey, slow from Te Aratu, heavy from the causeway to Grey Lynn.
1: Mega savings this month only at Wardrobes Direct 2 showrooms, Mount Wellington and Silverdale.
3: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
4: मुझे भी।
3: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: Turn winter into progress at Rebel Sport. Save up to 40% on selected Nike, New Balance and Puma. From training gear to winter layers, score epic savings on some of the biggest brands in sport. Hurry, these deals and more only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
11: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
12: Home. Time check.
13: Good morning, it's 9 baj rahe hain.
12: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Small businesses are being encouraged to embrace tech as their productivity lags behind Australia and the UK. Xero's first database measure of this finds a lack of growth. Country manager Bridget Snelling says there are practical levers.
15: Particularly AI tools and improving their confidence in the uptake of those tools to begin to embrace those efficiencies and those productivity gains that are possible.
14: Northland authorities are having to dispose of an average of one boat a month, many brought as cheap doer-uppers. It's prompted a warning now from the Harbour Master's office to think carefully about the effort and costs involved so they're not left to rot. The financial climate is being blamed for a big jump in prices at a popular restaurant. Broke Boy Tacos is copping flack from angry customers over a 50% increase in just 3 years. But owner Sean Yarbrough says increasing costs means there is no other choice.
16: All this anger and stuff is directed to the wrong sources here. It's not the small business owner's fault.
14: The death of a man whose body has been recovered on the shore of Lake Tekapo is not believed to be suspicious. It follows a reported sighting early yesterday and will be referred to the coroner. The man is not believed to have family in New Zealand. In sport, it's 2-2 at halftime of the FIFA World Cup game between England and Croatia. Captain Harry Kane has scored both goals for the English. Football updates brought to you by Hisense. And the knives are out for New South Wales coach Laurie Daly after last night's 44-24 State of Origin Game 2 defeat to Queensland at the MCG.
17: Yeah, I think I'm pretty good at putting distractions to the side. But coaches have to have a look at ourselves too, make sure that we're better.
14: The series decider is in Brisbane in 3 weeks' time.
12: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari koi branch nahi hai.
12: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
13: 11.5 degrees temperature abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 16 overnight, kam se kam 9 degrees rahega. Badal chhaye rahenge. Reh reh kar kuch halki barish hogi. Sunset aaj ka sham 5:12 par hoga.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
19: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home.
0: own the fortune. What's going on? Kya bakte ho?
19: Arre kehna kya chahte ho?
20: Aaj ka kya bakte ho? It's something not weird but very very interesting. तो एक 20-year-old शख्स हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये दिल्ली से है, इंडिया से, और रिसेंटली ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं एंड ऑल द गर्लफ्रेंड्स आउट देयर, ये अपने अपने बॉयफ्रेंड से अब शिकायत करने इन्होंने शुरू कर दी है कि दिस पर्टिकुलर गाय हैज सेट द स्टैंडर्ड सो हाई कि आपको ये करना ही पड़ेगा, मतलब यू हैव टू मीट दैट स्टैंडर्ड. अपेरेंटली ये कहा गया है कि इनके इस शख्स के बारे में, इनका नाम तो खैर अभी रिवील नहीं किया गया है इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी दैट आई एम रीडिंग, और ना ही तो इनकी गर्लफ्रेंड का नाम रिवील किया गया है. पर ये एक बात सामने आई है कि जब इनकी गर्लफ्रेंड ने इनसे ये कहा कि मेरे पास पहनने को कपड़े है ही नहीं, मतलब अच्छे कपड़े हैं ही नहीं, इनको कहीं फंक्शन में जाना था इनकी गर्लफ्रेंड को, एंड दैट सेम प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा कपड़े हैं लेकिन फिर भी पहनने लायक कुछ नहीं है. तो व्हाट ही डिड वाज ही टुक द मैटर्स इन हिज ओन हैंड्स.
21: और खुद पहन लिए?
20: नहीं रे,
21: पहन
20: नहीं लिए. फिर इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज किया विद अ डिलीवरी. And in that delivery, what was there for her was 365 traditional outfits.
21: My God! ये कहानी नहीं बतानी थी.
20: मैं बता रही हूँ फिर भी. For a reason, मैंने बोला ना, standard high करना पड़ेगा लोगों को. So 365 traditional outfits इसीलिए इन्होंने भेजे क्योंकि लड़की को एक भी नहीं पहनने लायक रख रहा था, और इन्होंने पूरे साल का बंदोबस्त कर दिया. हर एक रोज के लिए एक आउटफिट.
21: हाँ, ये स्टैंडर्ड उनको ही मुबारक हो.
20: इनफैक्ट ये ये जो स्टोरी है, इट्स समथिंग सो इंटरेस्टिंग, सो अमेजिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल सोशल मीडिया पर अपना अपना रिएक्शन जो है ये दे रहे हैं. एंड जैसे कि मैंने कहा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, और ये अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को, अपने अपने पतियों को सुनाना चाहिए. तो जितने भी पति लोग हैं, जितने भी बॉयफ्रेंड्स अगर आप सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए आज का क्या बकते हो.
21: अभी सुनना बाकी है कुछ?
20: बता दिया ना कि सुन लीजिए जो मैंने बताया है वो.
21: 365.
20: तो अगली बार अगर आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड भी ये शिकायत करे कि मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, तो आप भी ऐसा सरप्राइज उनको दे सकते हैं. पूरे साल का बंदोबस्त कर दो, साल भर सुनना नहीं पड़ेगा.
21: आप भी बताओ, मेरे पास भी नहीं है.
20: किसको बोल रहे हो?
21: पतियों
20: को बोल रहे हैं.
21: हाँ, आप भी बताओ, मेरे पास भी नहीं है.
20: उनके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज मेजोरिटी केसेस में आई थिंक द वाइव्स विल अग्री विद मी, आफ्टर गेटिंग मैरिड द हस्बैंड्स जो होते हैं ना, वो खुद के लिए शॉपिंग करना बंद कर देते हैं. और उनके लिए भी कपड़े जो है उनकी बीवियां ही खरीदती है, उनके बीवियों के पसंद का होता है वो, क्योंकि हस्बैंड्स को तो इंटरेस्ट होता नहीं है ना.
21: क्या इंटरेस्ट लेना ऐसी चीजों में?
20: तो बोलने का मतलब ही क्या बनेगा, मेरे पास भी कुछ नहीं, वैसे भी तो बीवी खरीद के देंगी. बट एनीवेज, आप भी हमारे साथ अगर ऐसे कुछ अनोखी अनयूजुअल सी कहानियां हैं शेयर करने के लिए, तो जरूर भेज सकते हैं buzz@hmfm.com पर, और आपके लिए ऐसे किस्से कहानियां क्या बकते हो इसमें हम जरूर लेकर आएंगे. बिफोर मूविंग ऑन, हमने पिछले घंटे सवाल पूछा था थ्रोबैक से पहले कि करण औजला जो है ये आ रहे हैं अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर, सुपर सिटी ऑकलैंड न्यूजीलैंड ऑन द 25th of August को ये परफॉर्म करेंगे, और पासेस आप ले सकते हैं hum.rova.nz विजिट करते हुए या फिर livenation.co.nz, जिनका प्री सेल आज 10 बजे के बाद से ओपन हो जाएगा, एंड आप भी ये जरूर ग्रैब कर सकते हैं. और इसके लिए आपको बस ये टिकट्स जो है ये ले लेने हैं. बट अगर आप पासेस जीतना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी है जीतने के लिए. और सवाल क्या पूछा था हमने?
21: उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, करण औजला का?
20: सो करण औजला का डेट ऑफ बर्थ इज 18th of January 1997. काफी लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं, और सबका नाम पढ़ना तो विड नॉट बी पॉसिबल राइट नाउ, बट जितने भी लोगों ने अपनी एंट्रीज हमारे पास भेजी हैं, थैंक यू सो मच. 18th January 1997 अगर आपका जवाब आया है तो बिल्कुल सही, आपका नाम हम ड्रो में जरूर शामिल कर रहे हैं.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास कम्युनिटी में. फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशन जो है ये रहेगा वेंसडे 24th से लेकर फ्राइडे 26th जून तक, और ये नेक्स्ट वीक होगा. दिन में 12 बजे से रात 8 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलेगा. मैंग्री सेंटर पार्क 101 रॉबर्टसन रोड मैंग्री में आप जाकर इसमें रजिस्टर हो सकते हैं. और आप अगर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर आपको ओरिजिनल या सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और फिजी पासपोर्ट जो है ये आपके लिए ज़रूरी होगा. ओवरसीज बॉर्न फिजी सिटीजन्स जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वैलिड फिजी पासपोर्ट, आपके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. एक वैलिड फ़ोटो आईडी के साथ अपना सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप या फिर कन्फर्मेशन लेटर डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की ओर से, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ सिटीजन ऑफ फिजी, ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए ज़रूरी है. अगर रिप्लेसमेंट आपको चाहिए वैलिड फिजियन पासपोर्ट या फिर वैलिड फ़ोटो आईडी विद सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप कन्फर्मेशन लेटर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है. तो ये नेक्स्ट वीक रहेगा वेंसडे से लेकर फ्राइडे तक, दिन में 12 से रात 8 बजे तक सेंटर पार्क मैंग्री में. और उसके अलावा अगर देखें तो और भी कई चीज़ें हो रही हैं जिनकी जानकारियां जो है ये हम आपको देते रहते हैं इस प्रोग्राम में. और जैसे मैंने आपको पहले बताया

0: है मुस्कान केयर ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्पेशल अवेयरनेस ब्लड ड्राइव और ये इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन इसी सैटरडे को रहेगा मेनिकाओ एनजेड ब्लड सेंटर में। आप जाकर ये डोनेशन कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए muskancaretrust.org.nz आप विजिट करें या उनका फेसबुक पेज भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं कि सहजा योगा ग्लोबल मेडिटेशन आपके लिए फ्री वीकली मेडिटेशन सेशंस जो है ये लेकर आ रहे हैं एंड द ओनली एम इज टू बेसिकली सपोर्ट मेंटल वेलबींग। और आजकल की भागदौड़ की दुनिया में जो रिड्यूस कर सके स्ट्रेस जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, जिसकी वजह से आपको भी मौका मिलेगा टू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड लर्न कि कैसे आप मेडिटेशन वगैरह जो है ये करते हुए अपने आप को काम और साथ में यू नो अपना मेंटल वेलबींग जो है ये अच्छा रख सकते हैं। तो चार डिफरेंट लोकेशंस हैं विच मीन्स फोर डिफरेंट सेशंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। मरीज बे आउटरूम हॉल 478 बीच रोड मरीज बे में एवरी मंडे को 7:15 PM से 8:15 PM ये रहता है। मारिया को 022-303-9918 पर आप कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। माउंट एल्बर्ट में अविरा का सीख स्काउट्स हॉल रेंज व्यू रोड मरी हॉलबर्ग पार्क माउंट एल्बर्ट में एवरी सैटरडे को 10 AM टू 12 PM आरती से 022-404-8386 पर आप बातें कर सकते हैं। हॉविक में द ग्रीन रूम वर्क्स ब्रिज सेंटर 35 वर्क्स ब्रिज रोड हॉविक एवरी ट्यूजडे 7 PM टू 8 PM और 022-566-9445 पर आप कॉल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। नॉर्थ कोर्ट में 27 लेक रोड नॉर्थ कोर्ट एवरी ट्यूजडे 7 PM टू 8 PM ओमकार को 022-107-4452 पर या मोहन को 022-657-7266 पर आप कॉल कर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट ला रहे हैं श्री राम लीला, ये 8 अगस्त को रहेगा इसी साल और तैयारियां इसके लिए चल रही हैं। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टीम में शामिल हो सकें एज अ क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर। अगर आपको लग रहा है कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप ये कर सकते हैं, मास्टर अशोक से आप बातें कर सकते हैं 021-179-5459 उनका नंबर है।
1: माँ दुर्गा टेम्पल 4x3 ऑन स्लो एफ पापा टोयोटो यहाँ पर माँ भगवती जागरण जो है सैटरडे 20 जून को रहेगा 7 PM से आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं।
0: आपके पास अभी कम्युनिटी की खबर है तो buzz@humfm.com पर अपने ईमेल्स आप हमें जरूर भेजें।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: देखो माँ आ गए।
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
6: अच्छा तो
5: आए आए बताओगे
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colors, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects. Save कीजिए at Mitre 10 Mega Westgate or Henderson with 50% off selected Systema, including deals on Karcher 18-volt Power Garden skins and Max Rack shelving. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
7: Reliance Ventilation System.
8: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: Moisture और ventilation का problem लगता है।
8: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
7: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
9: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
10: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
11: And who Tejal Vyas?
10: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
11: exchange offer.
2: Friday 3rd July Victory Convention Center par Learning HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni exchange offer. Hasi hasi ne lotpot thewa taiyar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.
12: Oh my, oh my, Brace of Road, greater than ever, South Auckland's buses just became a lot better.
13: Weymouth Road? Way better buses.
12: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
13: Woody? No worries. MIT? A-OK.
12: Search AT Better South Auckland Buses for details.
13: Airport? Got your transport.
12: Then turn up and go.
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 23 मिनट हुए हैं अभी 9 बजकर और आज हो चुका है 18th of July और या जून सॉरी और 3rd of July को विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में तो हंसी के जो ठहाके हैं ये गूंजेंगे क्योंकि सिद्धार्थ रंडेरिया परफॉर्म करेंगे यहां पर अपना लेटेस्ट जो ब्रांड न्यू कॉमेडी है गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर ये आपके लिए होने जा रहे हैं और क्या इनको अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर मिलता है जिस और उसके बाद किस तरह से बहुत ही हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं ट्विस्ट एंड टेंस ये सब कुछ आप एंजॉय कर सकेंगे यू नो एकदम विटी डायलॉग्स फैमिली मोमेंट्स जो बेसिकली है ये क्लासिक गुजराती ह्यूमर आप एंजॉय करेंगे और टिकट्स premierticketscom.nz पर आपके लिए अवेलेबल हैं जल्द से जल्द टिकट्स इसके लिए आप ले लें एंड बी देयर ऑन 3rd of July 7:30 PM से सो दैट यू कैन एंजॉय सिद्धार्थ रंडेरिया और उनका गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर
3: तो टिकट्स एक बार आप ग्रैब कर लेंगे तो आपको भी एकदम यू नो आसानी हो जाएगी टू नो दैट ओके माय टिकट्स आर डन माय सीट इज ऑल डन एंड जस्ट ऑन द 3rd of July आराम से जाना है शो का मजा जो है ये उठाना है क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी सिद्धार्थ रंडेरिया का जो गुज्जू भाई प्रोडक्शन है ये कोई भी शो लेकर आते हैं तो ये हमेशा सोल्ड आउट ही होता है एंड यू डोंट वांट इट टू बी सोल्ड आउट बिफोर यू ग्रैब योर टिकट्स ऑन द अदर हैंड चलिए आज आपको एक और एक चीज के बारे में हम जल्दी से याद दिला दें क्योंकि आज है 18th of June 21st June को जो फिनाले है ये होने वाला है एंड द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप जो नॉर्थ हार्बर में हो रहा है 21st of June द फाइनल्स आर हैपनिंग एंड यू आर देयर टू सपोर्ट द वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वुमेन्स टीम तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस वर्ल्ड क्लास हॉकी टूर्नामेंट का हिस्सा बनने का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स जो न्यूजीलैंड में इतने सालों में हुआ है तो अगर आप भी इसे सपोर्ट करना चाहते हैं और वेंटेज ब्लैक स्टिक्स को अपना जो सपोर्ट है दिखाते हुए उनके होम ग्राउंड में उनकी होम कंट्री में बेसिकली उनको आप इनकरेज करना चाहते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट hockeynz.flickr.co.nz से अपने टिकट्स आप जरूर ग्रैब कर लीजिएगा
2: और इन मैचेस को आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इंडिया और वेंटेज ब्लैक स्टिक्स दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स और अभी 10:45 AM से आज जो फाइनल राउंड ऑफ मैचेस शुरू हो जाएंगे फिक्सचर्स तो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं अगर नहीं पता है तो इंडिया वर्सेज यूरुग्वे फॉलोड बाय 1 PM USA वर्सेज जापान ये क्रूशियल मैच होगा कोरिया वर्सेज चिले ये 3:45 PM पर और वेंटेज ब्लैक स्टिक्स वर्सेस फ्रांस ये मैच भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है फॉर फ्रांस ये खेला जाएगा शाम को 6 बजे से तो इन मैचेस पर अपडेट्स भी आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आने वाले हैं और अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू गो आउट देयर एंड एंजॉय द मैचेस
3: सो रिमेंबर टिकट्स ग्रैब करने के लिए फिनाले अगर देखना है या सेमीफिनाले में आप ब्लैक वेंटेज ब्लैक स्टिक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो hockeynz.flickr.co.nz यहां से टिकट्स जल्द से जल्द ग्रैब कर लीजिएगा
2: एंड साथ ही में जो मैच अभी खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप में सेकेंड हाफ में इंग्लैंड की जीत क्रोएशिया के खिलाफ 3-2 से हो रही है
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
0: Bollywood's most wanted.
4: Gundi khad jao, ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
3: You know, 2012 में फिल्म आई थी कॉकटेल और इस पर्टिकुलर फिल्म के जो म्यूजिक है इसके बारे में तो क्या कहने मतलब आज भी इस फिल्म के गाने जो है ये हम डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करते हैं और जब भी गाने सुनते हैं तो मजा आ जाता है एंड वन पर्टिकुलर सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वॉज तुम ही हो बंधु इफ यू रिमेम्बर
2: यस यस यस
3: It's a very different kind of song. It's a song that people love to enjoy, people love to dance on and friendship as far as that is concerned. So, इसे भी enjoy करने का जो बड़ा अलग सा अंदाज है इस गाने के साथ ये definitely prove हुआ है with this song, तुम ही हो बंधु जिसे compose किया है none other than प्रीतम ने और इसे गाया था मेरे ख्याल से कविता सेठ और नीरज श्रीधर ने इरशाद कामिल had written the lyrics for the song and now तुम ही हो बंधु का जो 2.0 बंधु 2.0 ये कॉकटेल टू में आपको सुनने को मिलेगा. द बेस्ट पार्ट, इसे अगेन कंपोज किया है नन अदर देन प्रीतम ने, और इसे गाया है अगेन कविता सेठ एंड नीरज श्रीधर ने. तो आज पहली बार ऑन हम आपके लिए इस गाने को हम पेश कर रहे हैं. द सॉन्ग रिलीज जस्ट यस्टरडे, एंड लेट्स सी कि आपको ये गाना कैसा लगा. ओरिजिनल आपको याद होगा अगर तो डेफिनेटली ये आप इंजॉय करेंगे. एंड द वे दे've प्रेजेंटेड द सॉन्ग, द वे दे've लॉन्च्ड द सॉन्ग ना, इनफैक्ट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. सो एंजॉय फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2.
6: You should have done this song, yeah.
7: Dance नहीं, पागल है क्या?
6: क्यों?
7: What? Troll हो जाएंगे हम लोग, troll.
6: But why? It's iconic.
7: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का, छोड़ दे. आजकल जनता ना बहुत
6: dangerous हो गई. You know, but imagine how the song would look if Ali, Kunal and Diya did it. Our version. That's what I'm saying, now you're getting me.
7: You guys want to audition? Yeah? Troll हो जाएंगे, मत करो.

0: Yes! We killed it!
1: आगे ले गया ट्रोल हो जाएंगे
2: या
1: नॉट एट ऑल
0: डीनो डाल दे ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

0: हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. और वैसे द ग्रेट कॉमेडी नाइट इसके लिए भी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इसको भी अब ज्यादा टाइम बाकी नहीं रह गया है.
1: बिल्कुल, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपने टिकट्स जो है ये जल्द से जल्द ग्रैब कर ले फॉर द ग्रेट कॉमेडी नाइट, क्योंकि ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं अ नाइट ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट विद लाफ्टर, फन, मस्ती, मजाक, सब कुछ जो आपको हंसने पर मजबूर कर दे. कृष्णा, अभिषेक एंड राजीव ठाकुर आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू न्यूजीलैंड टू परफॉर्म ओनली वन शो हैपनिंग इन ऑकलैंड ऑन द 18th ऑफ जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. तो टिकट्स आप bookmyevent.co.nz से जरूर ले सकते हैं. और अगर कोई भी डिफिकल्टी हो इन बाइंग द टिकट्स और बुकिंग द टिकट्स फॉर योरसेल्फ 0210432720 पर आप जरूर कॉल करते हुए गाइडेंस जो है ये ले सकते हैं.
0: आफ्टर पे ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं. एंड आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप शो के लिए एक डबल पास जीत सकें. हमारा फेसबुक पेज आप विजिट करें, फीचर फोल्डर में आपको एक पोस्ट मिलेगा और उस पोस्ट में जो फोटो है उसको आपको कैप्शन करना है टू गो इनटू द रो. इट्स दैट सिंपल. लेट्स सी हाउ फनी कैन यू बी वाइल कैप. जब आप इस फोटो का कैप्शन देते हैं, कृष्णा, अभिषेक और राजीव ठाकुर हैं इस फोटो में, सो आप हमारा फेसबुक पेज विजिट करें एंड गेट इट डन. साथ में अपने टिकट्स bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए जल्द से जल्द ले लें.

0: हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। ईट बेटर लिव बेटर नाउ विद कशिश चक्की फ्रेश आटा एंड मल्टीग्रेन आटा, अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नेशन वाइड। www.kashishfoods.co.nz।
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
6: I know my sales team really well, but not how to give them the tools to manage every lead.
7: When you're a Spark Business customer, you get a hub full of local tech experts to advise you on the best solutions. Spark, the best bench in business.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
13: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
14: What's going on?
15: 20 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में। डेली राउंडअप में सबसे पहले तो 2024 में एक पुलिस ऑफिसर पर एक मशीटी से हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को जेल की सजा जो है ये दी गई है। और 30 सितंबर को वेमा नॉर्थलैंड में एक शख्स ने पुलिस को बुलाया जब आरोपी जो है तनियोरा पेरी ये मशीटी लेकर घूम रहा था और फिर वो एक प्रॉपर्टी के पास पहुंचा जहां पर लोगों के साथ उसकी अनबन हुई। लोगों को उसने धमकाया और लोग वहां से निकल गए और पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक पेरी जा चुका था। उसी दिन शाम को कई 111 कॉल्स किए गए कि पेरी के घर के एड्रेस से काफ़ी डिस्टर्बेंस के साउंड जो है ये आ रहे हैं। चार पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँचे और पेरी अपने घर से बाहर आया और ड्राइववे में आया मशीटी लेकर। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनको सरेंडर करने को कहा, अपना जो वेपन है उसे नीचे रखने को कहा, लेकिन उसने पुलिस व्हीकल पर मशीटी जो है ये चलाया जिससे गाड़ी को क्षति पहुँची और उसके बाद उसने अपना जो निशाना है एक पुलिस ऑफिसर को बनाया। चार टेजर कार्ट्रिजेस जो है ये फायर किए गए, लेकिन पेरी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर एक ऑफिसर्स जो है आर्म्ड थे विद पिस्टल्स और पेरी ने एक सीनियर सर्जेंट को चैलेंज किया टू शूट हिम, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई, लेकिन पेरी को टैकल करके ग्राउंड पर गिराया। उस समय पर पेरी ने उन पर मशीटी से हमला किया जिसकी वजह से सीनियर सर्जेंट के सिर और हाथ में चोट जो है ये आई थी और उसके बाद चलकर इनको गिरफ्तार किया गया था और 3 साल और 9 महीनों की जेल की सज़ा उन्हें दी गई।
16: दूसरी ओर न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च में एक स्कूल की जो प्रिंसिपल है इनके बारे में कुछ बातें जो है ये आई है और इनका नाम मेलिसा वाइटोआ पाकी जो है ये बताया गया है। इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने आफ्टर सम एलिगेशंस रिजाइन कर दिया है। ये बात सामने आई है कि शी फेल्ड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन सेफ्टी एंड डिड नॉट प्रॉपरली मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। Her resignation has come after she voluntarily agreed not to teach and follow as Education Review Office ne report kiya tha ki kuch serious concerns raise kiye gaye hain with the school's employment practice, including staff being hired without completing required police vetting and safety checks. Jo Teaching Council of Aotearoa, New Zealand hai, इन्होंने कंफर्म किया है कि इट वाज अवेयर ऑफ द कंसर्न्स और उन्होंने कुछ सेफ्टी स्टेप्स जो है ये लिए थे टू सेफगार्ड चिल्ड्रन बट हैज नॉट प्रोवाइडेड डिटेल्स ड्यू टू ऑनगोइंग प्रोसेस. एजुकेशन रिव्यू ऑफिस ने वैसे स्कूल के कमिटमेंट को लेकर काफी प्रेज किया है टू द माओरी वैल्यूज एंड लर्निंग, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि गवर्नेंस, इंटरनल इवेल्युएशन और साथ में ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस जो है उसमें काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो है इसकी जरूरत है.
15: और ऐसे राउंड अप स्टोरीज हर दिन आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं. 17 मिनट रह गए हैं 10 बजने में.

0: दो बातों का वक्त अब हो चुका है और दो बातों में आज सबसे पहले कहते हैं कि हो सके तो थोड़ा तार्किक बनिए, हो सके
1: तार्किक मतलब
0: तर्क लगाना ना, जैसे अपनी दलील रखना, बहस करना, डिबेट करना, वो सारी
1: क्योंकि बेसिकली स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ।
0: हाँ, क्योंकि भावुक हृदय बड़े जल्दी छल लिए जाते हैं।
1: ओके, इंटरेस्टिंग।
0: और दूसरी बात गौर करें इस पर, सबको पार लगाने वाली नाव नदी में ही रह जाती है।
1: वेरी ट्रू। तो उम्मीद है कि इन दो बातों से कुछ सीख आपको भी मिले और आप भी कुछ बदलाव करें अपने जीवन में, अच्छा रिजल्ट जो है ये हासिल करने के लिए अच्छा बदलाव करें ताकि आपकी भी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन जो है ये हो जाए। इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कल एक बार फिर मिलते हैं ठीक सुबह 6 बजे।

0: ये सिम्टम्स जो होती हैं ये साइलेंटली चेंज होती चली जाती हैं, और ये एक मेटाबॉलिज्म जो होता है, हार्मोन्स का जो चेंज होता है, आपकी लाइफस्टाइल का चेंज जो होता है, धीरे धीरे ये रिजल्ट करने लग जाता है। और ऐसे में साइंस ऑफ एजिंग ऑल्सो स्टार्ट। ये चैलेंजेस कुछ सीरियस कंडीशंस में भी डेवलप हो जाता है। सो एक प्रिवेंटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है अबाउट हार्ट डिजीज़, जहाँ पे इट अनाउंसेस लाफिंगली एंड लाउडली दैट प्लीज बी स्ट्रेस फ्री। यस यू शुड बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ हमारे कोलेस्ट्रॉल को हमें चेक करना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ब्लड प्रेशर का आप मॉनिटर ज़रूर कीजिए। आप किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, एक डायबिटीज़ का जो एक स्क्रीनिंग होता है, चेक कीजिए कि कहीं आपका हिडन ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रोस्टेट स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई एंड डू दैट, बी वेरी डिलिजेंट अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड साथ साथ विटामिन डी, विटामिन बी 12, बोन हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बार बार आप टायर्ड होना शुरू हो जाते हैं, भाई इंडियन अडल्ट जो होते हैं हम लोगों के, उसमें डेफिशेंसी होती है विटामिन डी विटामिन बी 12 की। सो कितनी सारी सनशाइन, इनडोर लाइफ स्टाइल, पोल्यूशन, डाइटरी पैटर्न, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे बढ़ती चली जाती हैं, मगर ये विटामिन जो हैं डी खासतौर पर बोन की स्ट्रेंथ पे कितना ज़्यादा काम करती हैं। तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट ज़रा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने लिवर किडनी के जो आप फंक्शन हैं इनको भी टेस्ट कर सकते हैं। एंड साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने जीपी के पास जाइए, क्योंकि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, प्रोस्टेट डिसऑर्डर्स, विटामिन डेफिशेंसीज, लिवर किडनी प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी सीरियस हेल्थ कंसर्न बढ़ा सकती हैं।
1: Time with Kashika. आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं।
2: Ladies and gentlemen,
3: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: ऑफिस शाउट आउट की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई एश फ्रॉम वेलिंगटन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेरी हैप्पी क्लाउडी एंड मूल्यवान समय के फूल और कांटों वाली गुड मॉर्निंग कौशिका जी. आई ऑनेस्टली लव इट व्हेन आप पकड़ लेते हैं कि मैं किस बात पे कॉन्सेंट्रेट आज करने वाली हूँ. ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, एंड दिस मीन्स अ लॉट टू मी. वैसे इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट टू अस जब हम कह सकते हैं कि अगर हमारी अपनी ब्लैक स्टिक्स जो वुमेन की जो टीम है कि क्या वो किस तरह परफॉर्म करी है, या क्या 8 कंट्रीज जो यहाँ आई हैं वर्ल्ड क्लास हॉकी लेकर, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स एवर इन न्यूजीलैंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ये चल रहा है. और ऐसे में अगर आप इसे देखने जाना चाहते हैं तो hockeynz.flicket.co.nz पर आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन बी देयर वॉचिंग एवरीथिंग गो लाइव. बहुत मज़ा आता है इस तरह की जब चीज़ें होती हैं. बाय द वे, दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि इंडियन इंक थिएटर आपके लिए कंपनी लेकर आ रही है बलून डॉग. अब ये बलून डॉग जो है राजन एंड जस्टिन, यानी कि अगर जेकब राजन की बात करती हूँ, MNZM के, वो स्टेज पर वापस आए विद द प्रीमियर ऑफ बलून डॉग. एक बहुत ही मूविंग कहानी जो रविंद्रनाथ टैगोर की थी, अ बिलवड स्टोरी वेरी क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट, काबुलीवाला, वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं. अब ये परसों तक होने वाला है एट द क्यू थिएटर. अगर आपने टिकट्स अभी तक नहीं खरीदी तो iticket.co.nz के ज़रिए आप जाके फटाफट ये टिकट खरीद सकते हैं. बलून डॉग एक बहुत ही पावरफुल सेलिब्रेशन है जहाँ पर करेज, कनेक्शन और कल्चर, कास्ट, क्रीड, इससे बहुत दूर हटके ये कहानी है. मास्टरपीस है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें ह्यूमर भी है, इसमें दिल से कहानी लिखी गई है दोबारा से, इसमें लाइव ओरिजिनल म्यूज़िक, डांस और बहुत ही थिएट्रिकल मैजिकल एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है. तो डेफिनेटली डोंट मिस आउट इंडियन इंक थिएटर कंपनी का प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर इन न्यूजीलैंड कॉल्ड बलून डॉग.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: एक बात बताऊं, वैसे ये जो एक समर हिट इस समय हमारी कंट्री में चल रही है, एक पर्टिकुलर वार्म स्टार्ट हुआ है फॉर विंटर, इफ यू मे अंडरस्टैंड. अब तक हम ठिठुरने लग जाते हैं कई बार, ऐसा होता है. और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है जून के टेम्परेचर्स में, और वार्म कंडीशंस अक्रॉस द कंट्री पता चल रही हैं. और काफ़ी फॉरेस्ट में भी अगर देखे जाए वार्म टेम्परेचर्स हैं, विच इज़ एक्सटेंडेड टू ग्रोइंग ऑफ द सीजन्स ट्रीज. यूजुअली ये जो पेड़ होते हैं ये विंटर के टाइम पे डोरमेंट होते हैं और कोल्ड में इनकी ग्रोथ नहीं होती है. बट इफ़ यू गो टू सी आउट नाउ, ये ट्रीज ऑफ लेट, यू नो, दे आर ग्रोइंग. दे इज अ स्लाइट चेंज, आई कैन से. ये कुछ भी कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती, कुछ भी हो सकता है. कुछ प्लांट स्पीशीज जो होते हैं ये अपने पत्तियां छोड़ देते हैं विंटर में. बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल माओरी नॉलेज, फ्लावरिंग टाइम हैज़ चेंज्ड एंड फ्रूट बायोमास जो है ये डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि वार्मिंग इन द फॉरेस्ट जो है ये, यू नो, ऑलरेडी ये चेंज होना शुरू हो जाता है. अब इससे क्या हो रहा है कि इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है फॉर द ब्रीडिंग और हेल्थ रीजंस एज वेल. यानी कि नेटिव जो वुड पिजन्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ. इंसेक्ट्स ये बहुत सेंसिटिव होते हैं विंटर टेम्परेचर में, जैसे कि ट्रीज हैं वैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं. ये इस दौरान काफ़ी डोरमेंट होते हैं, मतलब कोल्डर वेदर में आते नहीं हैं बाहर. लेकिन सम इंसेक्ट्स जो वार्म वेदर में आते हैं वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं इन आउटर रुआ. यूजली वो कोल्ड कंडीशंस में रह ही नहीं पाते हैं. बट विंटर जो अभी है वार्म है, इसकी वजह से ये जो है इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं अभी भी. फॉर इंस्टेंस कि जैसे कि जो क्लाइमेट सच एज न्यूजीलैंड है, वॉस्प की कॉलोनी है. अब ये एक स्ट्रॉन्ग सीजनल साइकिल होता है. वॉस्प के नंबर्स इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग समर टाइम्स, जब क्वीन जो बाहर निकल कर आती है वॉस्प की और ये अंडे देती है. उसके बाद फिर ये कॉलोनी इनकी बढ़नी शुरू हो जाती है एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स इन ऑटम एंड मोस्ट ऑफ देम डाई ऑफ. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द वार्मर कंडीशंस आप नोट करेंगे कि ये जो विंटर एक्टिव वर्कर्स हैं ये बढ़ चुके हैं आउटर रुआ में. दिस मीन्स कि वार्मिंग क्लाइमेट जो है इससे हाई वॉस्प के नंबर्स जो हैं इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में. कोल्ड विंटर नाइट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये स्प्रिंग के जो फ्लावरिंग सीजन में हेल्प ज़रूर करते हैं. अभी के लिए पोटेटोज एंड अनियंस आर सेंसिटिव टू दीज कंडीशंस, और हीट स्ट्रेस की वजह से शायद इनके स्मॉलर बल्ब्स निकल कर आते हैं. ओके, ये क्लाइमेट कंटिन्यू हो रहा है टू बी वार्म, इट्स नॉट ऑल दैट ठंडा. ये काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को, हमारे हेल्थी इकोसिस्टम को, फॉर हेल्थी इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द कम्युनिटी एज वेल. नोटिस कीजिएगा,

0: Sabdi ho gayi balle balle.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Eat better, live better. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आप तक पहुंचानी होती हैं, बतानी होती, चाहे वो गॉसिप हो या कुछ भी हो. वैसे एक चीज़ तो है, जब हम बात करते हैं कॉकटेल फिल्म के बारे में. भाई कॉकटेल फिल्म जो है, बस बहुत जल्दी, यानी कि एक्चुअली ये कल फिल्म जो है, हाँ, ये रिलीज़ होने वाली है. मच अवेटेड, क्योंकि कहा जा रहा है कृति सानन की ये पहली फिल्म है जो एडल्ट है एंड मच्योर्ड दिस थिंग. चलो ये तो हो गया, लेकिन एक ख़ास तौर पे चीज़ हमारी फेवरेट सिंगर के साथ हुई है, अब सोनू निगम जी के साथ. रिसेंटली इन्होंने अपने हेल्थ चैलेंज के बारे में बात की है कि इनको एक बड़ी पेनफुल सी नर्व जो है बहुत परेशान कर रही थी. सो उनका एक एक्सटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, काफ़ी डिसकम्फर्टेबल दिख रहा था, लोग परेशान हो रहे थे कि इन्हें हो क्या रहा. तो एक इन्होंने वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पे और इन्होंने अपनी हेल्थ के कंडीशन के बारे में बताया कि डॉक्टर्स किस तरह क्लोजली उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं और काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं उन्होंने किया. उन्होंने कहा उनकी एक नर्व पिंच हो गई है एंड ही हैज़ टेकन MRI एंड CT स्कैन ओवर अ वीक, काफ़ी लिया है इन्होंने एंड ही इज़ बिन टेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस. इन्होंने एक्सप्लेन किया इनकी कंडीशन जो है, ये ऑन गोइंग ट्रीटमेंट है, इनके मेडिकेशन, इनकी फिजियोथेरेपी उससे रिलेटेड है. फिजियोथेरेपी इनके लिए काफ़ी पेनफुल है, पेन किलर्स ले रहे हैं एंड ड्यू टू दैट इनके आवाज़ में भी भारीपन आ रहा है. नाउ फॉर अ प्रोफेशनल सिंगर, कोई इस तरह का इशू आता है, अब मैं बात कर रही हूँ तो मेरा खुद हार्ट सिंक हो रहा है बोलते बोलते, बट लेट्स जस्ट प्रे फॉर हिम. 13th of June मुंबई, और इन्होंने एक अपना फिजिकल डिफ़िकल्टी जो है दिखाई इन्होंने, बट स्माइल भी कर रहे थे. इज इन दैट अ बिग थिंग. अभी कुछ दिन पहले देखो अलका याग्निक के साथ कुछ हुआ, अब ये हमारे सिंगर सोनू निगम जी के साथ हो रहा है. बट डेफिनेटली वी बींग देयर फैंस, यू नो, वी कैन ओनली प्रे फॉर देयर गुड हेल्थ एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि प्रेयर्स एक्चुअली वर्क. ड्रीम बताओ भाई, आपका क्या ड्रीम है? आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere.
4: अच्छा, Hunua west में.
5: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
7: It's cold outside and the couch is on your mind. But you can't relax till you leave hunger behind. Hot pumpkin soup will really help you unwind. It's what you should be.
8: Briscoe's massive midwinter sale is on with jaw-dropping 60% off Winterbusters and peak store-wide savings. Just in time, it's chilly. So hurry in today and snap up winter's hottest savings. Stores open till 9 tonight at Briscoe's. See online for T's and C's.
9: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
10: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
11: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz.
12: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना.
13: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
14: And award goes to Indelible Homes.
13: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
15: Kahani of Indelible Homes.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
2: आज ड्रीम डायरी में बहुत ही फनी सा ड्रीम आया मेरे पास एंड ये है गौरव वर्मा आपका. एंड गौरव वर्मा, आपने कहा ड्रीम टू विन डबल टिकट्स टू करण औजला कॉन्सर्ट इन ऑकलैंड. ऑल राइट, आपने तो ये ड्रीम कर लिया. वैसे आपको बताऊं कि ये ड्रीम ऑफ विनिंग अ कॉन्सर्ट पास, ये आपकी एक सबकॉन्शियस डिज़ायर है to experience joy, self-expression, and of course, it simply is एक तरह का गोल है आपके लिए कि आप किस तरह से फ्री टिकट्स जीतने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं. तो मोस्टली क्या होता है, सबकॉन्शियसली आपका एक डिज़ायर होता है, यू नो, बीइंग इन द क्राउड एट अ कॉन्सर्ट. ये रिप्रेजेंट करता है दैट यू डिज़ायर टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज कम्युनिटी एंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो जॉय और सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके साथ. ये सिम्बलाइज भी कर सकता है कि गुड लक, प्रोग्रेस, और साथ साथ आपके अपकमिंग लाइफ में क्या वेकिंग है, क्या आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है. एंड टू विन अ टिकट और अ पास, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है आप अपने आप को एक परमिशन दे रहे हैं टू टेक अ रिस्क, स्टेप इनटू अ न्यू रोल ऑफ अ विनर, या फिर आप वो क्रिएटिव एनर्जी और फन जो है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें हो गई आपके एक टेक्स्ट के ऊपर, है ना. वैसे एक बात बता देती हूँ, ये ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपने पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर के साथ आ रहे हैं एंड 25th of August के दिन स्पार्क अरेना में परफॉर्म करने वाले हैं. नाउ इज द टाइम आपको बताना है कि करण औजला जो हैं, आपको के ए लिखना है, ओके, याद रखना कि एक कीवर्ड है. डबल पास जीतने के लिए आपको क्या करना है, करण औजला कौन से दिन उनकी कॉन्सर्ट है, आपको यही बताना है. करण औजला की कॉन्सर्ट यहाँ पर कौन से दिन है न्यूजीलैंड में. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. के ए लिखिए गौरव वर्मा. ये देखो ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत पास आ गए हम. तो याद रहे कि इसकी प्री सेल 17 तारीख से, यानी कि कल से शुरू हो चुकी है 19 तारीख तक. एंड लाइव नेशन का प्री सेल जो है आज से शुरू हो चुका है और कल सुबह तक चलने वाला है. डेफिनेटली कोशिश कीजिए हमारे फेसबुक के पेज पे भी पहुंचने के लिए. अगर डबल पास आप यहां से हमारे साथ जीतना चाहते हैं ओवर द टेक्स्ट प्लेटफॉर्म, या फिर लाइक कीजिए करण औजला की पोस्ट, अपने फ्रेंड को टैग कीजिए जिनको आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं. चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कोशिश कीजिए अगर टिकट खरीदनी है आपको तो हम rova.nz या फिर livenation.co.nz के जरिए आप टिकट खरीद सकते हैं. लो कर लो बात. गौरव वर्मा यू आर 100% राइट, मैंने आपका नाम ड्रॉ में डाल दिया. ओके okay?

वैसे मैं थ्रोबैक की तरफ पहुंच चुकी हूं, लेकिन आपको लेके चलती हूं 1995 की फिल्म, 13 जनवरी के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी, 41st फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को 10 नॉमिनेशंस मिले थे. नॉमिनेशंस ओके, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के भी इसमें कैटेगरीज थी. लेकिन अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट एक्शन, एंड द फिल्म गॉट री रिलीज ऑन 22nd of November 2024. मेरे करण अर्जुन आएंगे, ज़रूर आएंगे. भाई ये क्या क्या बात हुई, करण अर्जुन की फिल्म का ये प्यारा सा ट्रैक जो हम सब यूजुअली गाते हैं या सुनते हैं जब हम फैमिली के साथ होते हैं.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
4: Trade Depot is your number one online store for home improvement products. Acoustic wall paneling from $99. Solar panels, just $179. Bed frame and mattress, just $379. Save hundreds on beautiful home improvement products. Only at Trade Depot in Onehunga. Or shop online. Trade Depot.
5: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
6: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
7: Here for your chance to score a share of $250,000 Club Plus dollars. By simply scanning your Club Plus card at Foursquare, you could be a winner, free chicken dinner. Yeah! Foursquare, what'll it be today? T's and C's apply.
8: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
9: Big news for tradies and businesses. Right now at LDV, get free accessories, fuel vouchers, sharp finance offers and deals across our range. LDV, built tough, priced right. Visit ldv.co.nz to find out more. Terms and conditions apply. Offers end 31st July while stocks last.
10: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. New Zealand's economy started the year off relatively strong according to first quarter GDP data. It rose by 0.8%. The latest figures for the 3 months ending to March do not include the fallout of the US-Iran war like rising fuel. Auckland-based record store Fly In Out has announced it's shutting up shop. The business says a pandemic, three festival cancellations, ongoing roadworks and the City Rail Link construction has been an unpleasant and perfect storm. It calls on people to go out and support small locally owned businesses. Health experts are keeping tabs on the spread of dengue fever through the Pacific. Six countries and territories now house the outbreak with more than 3,500 cases. Medicine specialist Matthew Reid says it's a preventative warning for travellers.
12: There's not a risk at the moment of dengue spreading in New Zealand because we don't have the main mosquitoes that carry dengue.
11: And US officials have released details of the agreement with Iran that could be signed tomorrow. The deal includes an end to fighting, a toll-free Strait of Hormuz for 60 days, a $300 billion fund and a lifting of all sanctions. Iran is also never to have a nuclear weapon. In sport, football first, and a 4-2 win for England against Croatia in Dallas to open their FIFA World Cup campaign. Captain Harry Kane scored two goals on TVNZ Plus in a big second half performance.
13: We went full gas and they couldn't live with it. And that's the level we have to set for every game.
11: And in cricket, Glenn Phillips is 49 not out with the Black Caps to resume on 291 for 7 on day 2 of the second test against England at the Oval, starting from 10 o'clock tonight.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
14: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
2: सूचित किया जाता है कि ज्योति रचना और प्रमीत की माँ इलीट सिनेमाज लंबासा के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी रेवा पटेल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0219032555 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, ज्योति रचना और प्रमीत की माँ इलीट सिनेमा लंबासा फिजी के भूतपूर्व मालिक मगन भाई पटेल की पत्नी रेवा पटेल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0219032555 पर आप संपर्क कर सकते हैं। लाउटुका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलैंड ऑकलैंड की स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की माँ सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0216475200 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, लाउटुका फिजी के भूतपूर्व निवासी शक्ति एंड कंपनी के मालिक न्यूलैंड ऑकलैंड के स्वर्गीय शक्ति प्रसाद की पत्नी माला रक्षा और सीमा की माँ सत्यवती प्रसाद की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0216475200 पर आप संपर्क कर सकते हैं। भूरा और जोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहनीश और रोविन जोकिन की माँ हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन क्योला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 21 जून को दोपहर 3 बजे डेविस फ्यूनरल केयर में किया जाने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए 0223326843 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, भूरा एंड जोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहनीश और रोविन जोकन की माँ हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन क्योला की मृत्यु हो गई है। अंतिम दर्शन के लिए आप 21 जून को 3 बजे दोपहर को डेविस फ्यूनरल केयर 400 डोमिनियन रोड माउंट ईडन जा सकते हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार फिजी में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 0223326843 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
15: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 16, overnight temperature of 9. Aaj ka focus bataya ja raha hai. It feels like 14 degrees right now. 5:12 par sunset bataya ja raha hai. Cloudy day rahega. Kuch isolated showers expected hai southwest ki hawaon ke saath saath.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai.
2: My Time with Kashika. Wow.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? 18 जून का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. वैसे पिछले घंटे पर जब मैंने पूछा था कि आप लिख के बताइए कि आप करण औजला के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तो के ए लिखना था आपने एंड द डेट इज 25th of August. बिल्कुल सही, आप लोगों ने जितने लोगों ने टेक्स्ट किया है डेफिनेटली आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर लिया गया है. अच्छा, इसके साथ साथ वैसे एक चीज़ और है जो हम कर रहे हैं. आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं? आप हमें 104.2 FM के ज़रिए सुन रहे हैं या फिर आप हमें रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं? अगर रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं तो थैंक यू, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे और भी मौके हैं. हमारे म्यूज़िक स्टेशंस में आप सर्व कर सकते हैं. हम रिवाइंड 80s का जूक बॉक्स, फीजी भजन, चढ़दी कला, पंजाबी हिट्स, फीजी कीर्तन संग्रह और साथ साथ राहत फतेह अली खान के आप अमेजिंग अमेजिंग गाने सुन सकते हैं. नॉट टू फॉरगेट, आप जब घूम ही रहे हैं रोवा पे तो आपको हमारे पॉडकास्ट भी मिल जाएंगे जो आप डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं. और इस बार जो हमारे विनर्स हैं ऑफ थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली दे हैव वन, सैंडी एंड रूसबे ने अनफिल्टर्ड में जीता है फिर से दोबारा से बेस्ट एशियन पॉडकास्ट में. तो इस बार वो थैलेसमिया के बारे में बात करें, किस तरह से साउथ एशियन कम्युनिटी को ये इम्पैक्ट कर सकती है. तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो 5599 पे ड्राइव लिख के भेजें. ब्रेकफास्ट के कुछ नोक झोंक, कुछ बातें अगर आप सुनना चाहते हैं तो BF भी आप लिख कर हमें टेक्स्ट ज़रूर कर सकते हैं.
0: बचाओ क्या?

0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: ईट बेटर लिव बेटर और ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है हमें पता होनी चाहिए. वैसे लॉट ऑफ पीपल रिकोगनाइज कि स्ट्रेस क्या होती है. दे गेट यू नो ओवरवेल्म्ड, कभी एंग्शियस हो जाते हैं, इमोशनली ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं. व्हाट गोज अननोटिस्ड जो हमें पता नहीं चलता, हमारी ह्यूमन बॉडी यू नो इसमें शॉर्ट बर्स्ट होते हैं स्ट्रेस के, और ये अपने हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके कॉर्टिसोल जो होते हैं ये इंक्रीज़ करते हैं, अलर्टनेस, आपकी हार्ट रेट, और आपकी बॉडी जो है एक फाइट और फ्लाइट मोड के ऊपर डिपेंड करता है. ये चैलेंज टेम्प्रेरी होता है बट ये प्रॉब्लम नेवर एंडिंग होने लग जाता है. एक डिमांडिंग जॉब, एक फाइनेंशियल वरी, या फिर आपकी केयर गिविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, कम नींद आना, इमोशनल स्ट्रेन होना, आपकी बॉडी के अलार्म सिस्टम को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहती है फॉर डेज मंथ्स एंड ईयर्स टुगेदर. और फिर एक बर्नआउट होना शुरू हो जाता है आपका, आपके बॉडी का एक्चुअली अगर देखा जाए तो. और ये आप बर्नआउट इमोशनली हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, बॉडी जो है आपकी इनको फील करती है, और फिर ये अपने जो हार्मोन्स होते हैं इनको रिलीज़ करती है. इससे क्या है, आपके बॉडी की फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, नींद कम होनी शुरू हो जाती है और डिस्टर्ब होने लग जाती है, टूट टूट के नींद आती है, आपका जो खाना पीना है उस पर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बदल सकता है, आपकी ब्लड शुगर के लेवल्स फ्लक्चुएट हो सकती हैं, आपके थायराइड का फंक्शन दैट माइट गेट इफेक्टेड, इम्यूनिटी वीकन होनी शुरू हो जाती है. द साइंस बिहाइंड दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये शॉर्ट टर्म के जो चैलेंजेस होते हैं ये आप इनको लॉन्ग टर्म मत बनाइए, आप अपने ओवर टाइम मत कीजिए अपनी बॉडी पे कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रेस और ये जो प्रेशर है डालने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी की बैटरी भी कम हो सकती है. डेफिनेटली ये बर्नआउट सिम्टम्स जो होते हैं ये आपकी थकावट, वेट की फ्लक्चुएशन, हेडेक पे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर भी फ़र्क दे सकती है. सो आपकी बॉडी जो है इट इज़ नॉट डिज़ाइंड ऑन अ सर्वाइवल मोड. भाई थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉडी मैनेज करेगी, फाइट बैक करेगी, लेकिन नॉट फॉर एवर, रिमेंबर दैट. सो इसी तरह से ये एक्सप्लेन करता है एक सिम्टम्स किस तरह से क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ आपके बढ़ते चले जाते हैं. ये एक वार्निंग है आपके लिए. मोस्टली ये जो बर्नआउट होता है ये आप जब फेस करते हैं आप पता ही नहीं चलता, लेकिन आपके अंदर ये बढ़ता चला जाता है इमोशनली, साइकोलॉजिकली, आपको ये स्ट्रेस जो है क्रॉनिक बनती चली जाती है. फिर ये हाई लेवल आपके इन चीज़ों पे, आपकी बीमारियों पर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है. इरिटेबिलिटी बढ़ने लग जाती है, विड्रॉल सिम्टम्स स्पेशली इन मेन शुरू हो जाते हैं, एंड द चेंज ऑफ बिहेवियर, एंड समटाइम्स दिस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस. मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है दैट डेफिनेटली आपको ये

0: एग्जॉशन आने से पहले पहले शिफ्ट आउट करना है. सो याद रहे, कुछ इंडिकेट की है मैंने चीज़ें आपके साथ. बाय द वे, सिक्स वर्ड स्टोरी मेरे पास आ चुकी है, अगर आपके पास कोई है तो मेरे साथ 5599 पे जरूर शेयर करें.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
3: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 4626 26 26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: Plus. Get game ready at No Leeming.
1: Want $500 to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
2: Otara, oh yeah.
3: South Auckland's buses just became a lot better.
2: Grey South Road, now even greater.
3: With better bus routes, more frequent buses, and more.
2: Weymouth Road, way better buses.
3: Search AT Better South Auckland Buses for more.
4: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
5: So, जब बात करते हैं अबाउट फीफा वर्ल्ड कप तो आपको बता देते हैं इंग्लैंड की जीत हुई ओवर क्रोएशिया आज की ये खबर है और साथ साथ फुल टाइम पर पोर्चुगल एंड कॉन्गो जो हैं ये वन ऑल पर रहे एंड अभी थोड़ी देर में ये मैच जो है ये शुरू हो चुका है घाना वर्सेस पनामा सो इसके अपडेट भी मैं आपके लिए थोड़ी देर बाद लेकर आऊँगी
6: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
5: आज की six word story थोड़ी अलग है, जहाँ पे आपने लिखा strangers, friends, best friends, lovers, strangers. Okay, तो पहले आप रहे होंगे stranger, फिर आप friends बने होंगे, फिर आप best friend बने होंगे, उसके बाद आप lovers बने होंगे. और दोबारा आपका ये सब रिश्ता टूट गया तो आप स्ट्रेंजर्स बन गए राइट आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड इट राइट सो योर स्टोरी इज ब्यूटिफुल स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स लवर्स स्ट्रेंजर्स ब्रिलियंट थैंक यू सो मच आपका टेक्स्ट आ गया एंड आपके लास्ट डिजिट्स हैं 2203 थैंक यू वंस अगेन अब जो गाना मैं लेकर आ रही हूँ आई मीन अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान काफ़ी दिनों बाद एक साथ गा रहे हैं एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी कॉकटेल जो बस कल रिलीज होने वाली है लुकिंग फॉरवर्ड टू इट
6: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: आशिका।
1: वाह,
2: हाँ।
1: अद्भुत।
3: बात तो अद्भुत ये है कि कभी कभी कुछ लोगों को आप जब दूर से टेलीविजन पे बैठे बैठे देखते हो और आपको लगता है पास से ही कैसे दिखेंगे, कितने हम्बल होंगे, कितना इतने ही मजाकिया ये होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन कृष्णा अभिषेक। अब कृष्णा अभिषेक को हमने टेलीविजन पे देखा है, और चाहे वो कॉमेडी नाइट्स हो या कितने सारे कॉमेडी शोज हो, चाहे वो मास्टर शेफ हो कुकिंग वाला, आई थिंक दैट पर्सन हैज गॉट दैट विट। उनके पास वो ऐसा एक है कि ही वॉज सो इम्प्रॉम्प्टू, यू नो, कभी कुछ भी एकदम से वो बोल देते हैं, उनको खुद ही वो नहीं पता कि कितने विटी वो खुद हैं। अब इन्हें अगर हम देखेंगे सामने अपने तो और भी बढ़िया रहेगा, और ये आपके लिए मुमकिन कर रहे हैं नन अदर देन ट्राई विजन्स इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। प्योर एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आने वाले हैं अलॉन्ग विद राजीव ठाकुर। राजीव ठाकुर भी इनके साथ कई बार आते रहते हैं, एंड द ग्रेट कॉमेडी नाइट आपके लिए होने वाली है। फर्स्ट टाइम एवर न्यूजीलैंड में कृष्णा अभिषेक आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए विद राजीव ठाकुर। VIP टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, और 18 जुलाई के दिन ये जो है आपके लिए विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में कन्फर्म्ड है, आ रहे हैं। टिकट्स खरीद लीजिए bookmyevent.co.nz, और साथ साथ हमारे फेसबुक के पेज पे चले जाइए। अगर आप जीतना चाहते हैं एक डबल पास, आप डबल पास जीतने के लिए अपना फन साइड जो हमारा पोस्टर दिखेगा, अपना फन साइड है, और कैप्शन करिए फोटो को, और पोस्ट करने के बाद देखिए क्या क्या आपका उसमें टर्न है, यू नो, आपका ट्विस्ट एंड टर्न क्या कर सकते हैं। तो bookmyevent.co.nz के जरिए टिकट खरीदें, नहीं तो हमारे साथ हमारे फेसबुक के पेज पे पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर आपको ट्रबल हो रही है बुक करने में ऑनलाइन bookmyevent.co.nz, तो आप धर्मेंद्र शाम से बातें करें 02104327200 पे। वहाँ पर आपके पास वो आफ्टर पे के ऑप्शंस भी लेकर आने वाले हैं। सो डोंट मिस आउट दिस अमेजिंग अमेजिंग नाइट। इसके साथ साथ कम्युनिटी में क्या हो रहा है ज़रूर आप हमें बताइए, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत कुछ ऐसा चलता है जो हमें आपके थ्रू ही पता चलता है। एंड ऐसे में ऑकलैंड फीजी इलेक्शन वोटर रजिस्ट्रेशन जो है ये 24 से लेकर 26 जून तक 12 से 8 बजे मैंगरी सेंटर पार्क में होने वाला है, एट 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी। सो 23 जून से लेके 2nd वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव होने वाली है, एंड ये 23 जून से 4 जुलाई के दिन। सो फीजी इलेक्शन ऑफिस जो है ये कंडक्ट करने वाले हैं 2nd वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव, और ये आपके लिए मुमकिन है। फांगरे में है, ऑकलैंड में, हैमिल्टन में, रोटोरुआ, नेपिया, पामिस्टन नॉर्थ और वेलिंगटन में भी हो रहे वाले हैं। जो भी मेम्बर्स हैं फीजियन डायस्पोरा एंड So definitely you are definite go, required to go there, bring your identification documents, register कीजिए, update कीजिए अपने voter details, और अपने family friends को भी आप encourage कर सकते हैं।
0: Driving you home. The drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a smart shopping buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
8: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben. Feed your mission.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket on the 25th of June from 5 p.m. with grand opening specials for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket, Thursday, 25th June, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
11: Drumroll, please. From 7 a.m, it's price plummet day today at Gull. Get 18 cents off per litre and spend your hard-earned cash on things you actually want, like, I don't know, hot chippies at the beach, anyone? Gull, fuel savings for all Kiwis. Terms and conditions apply.
12: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
13: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
14: Award goes to Indelible Homes.
13: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
15: Kahani of Indelible Homes.
16: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
17: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5k savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
18: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
19: Rescue me, recycle me.
3: So, very big thank you आपने जो लिख के भेजा, I totally agree with you. अब होता ये है कि हम एक अपने घर पे सिंगल पेपर यूज़ के जो हैंड टावल्स होती हैं ना, आई मीन जो पेपर टावल्स होती किचन टावल्स, उनका इस्तेमाल करते हैं. तो उन्होंने कहा कि कभी कभी आप क्या कर सकते हैं कि आप जो वॉर्न आउट आपकी कॉटन टी शर्ट्स हैं, टावल्स हैं, बेडशीट्स हैं, इनको क्लीनिंग और डस्टिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर दैन किचन टावल्स का आप इस्तेमाल करें. थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस मेक्स सो मच लाइफ ईजी. इससे मुझे एक बात और याद आ गई कि आई रिमेम्बर ये किचन टावल्स वगैरह तो खैर अब आए हैं, अब हमने देखे हैं इनको, बट आई थिंक हमारी मम्स वगैरह भी यही करती थी ना. जब पोछा लगाती थी तो हम लोगों का कोई टी शर्ट उठा लेती थी, उसी से उसको या तो पोछा या उसको झाड़न जो होता डस्टिंग करने के लिए उसको बना देती थी. तो इस तरह की चीज़ें वो डेफिनेटली करती थी. और गाड़ियों के लिए भी टी शर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था कि पतला कपड़ा है तो भाई सुबह सुबह उठो तो देखो गाड़ियों में हमारी टी शर्ट से सफाई हो रही है. ऐसा हुआ है क्या? कैन यू रिलेट टू दिस? आई कैन रिलेट टू दिस डेफिनेटली. सो थैंक यू.

थ्रोबैक में जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि मेरा थ्रोबैक इस समय का वो है जहाँ पर जब सिद्धार्थ रंदेरिया पहले आए थे और उनको शायद एक ब्लफ मास्टर उनका प्ले था वो देखा था. लेकिन अब ये एक सुनहरा मौका है जो मिस आउट बिल्कुल मत कीजिएगा. मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं मिस आउट ना करूँ. और ये 3 जुलाई के दिन होने वाला है 7:30 बजे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ ऑकलैंड दोबारा से तैयार होने वाला है टू वेलकम द फेवरेट, द वेरी वेरी फेवरेट गुजराती कलाकार. और जे कमाल का गुजराती ह्यूमर लेकर आते हैं. पूरी फैमिली के साथ आप इनके शो को बैठ के देख सकते हैं. तो सिद्धार्थ रंदेरियाज गुज्जू भाई प्रोडक्शंस जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर. अब क्या एक्सचेंज करने वाले हैं ये लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया, ये तो हमें पता चलेगा जब हम जाकर वहां पे इस प्ले को देखेंगे. premierTickets.co.nz पे आप जरूर जाएं, क्लिक करें और फटाफट जाके ये टिकट खरीद सकते हैं. कोई लास्ट मिनट के लिए इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं इनके शोज. सो 3 जुलाई 7:30 PM at the Victory Convention Center. Do not miss this out. Now, do not miss out lunch box, क्योंकि आपके लिए केतन बिल्कुल तैयार है लंच बॉक्स लेकर आ रहे हैं थोड़ी देर बाद. तो यहीं से मैं कह सकती हूँ कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार. 18 जून है आपका बर्थडे एनिवर्सरी. सो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी. दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज. अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ. लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्टे वार्म, बाय.

0: पास गूंजेगी।
1: बचाओ क्या,
2: here we go again.